0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पे असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रहे, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पूरे रियावास 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों का अपना महत्व है। उनमें से एक त्योहार है होली का त्योहार। होली हमारे जिंदगी में अनेक रंग लेकर आती है। बड़े छोटे सभी बड़े खुशी से होली का त्योहार मनाते हैं। होली के पहले दिन होलिका दहन भी किया जाता है। परमात्मा कहते हैं ये होलिका दहन हमारे अंदर के दुश्मनी, नफरत, विकार आदि संस्कारों के दहन का प्रतीक है। जिस प्रकार होली में हम अपने अपने मतभेद भूलकर सभी को रंग लगाते हैं, उसके पहले दिन होलिका दहन करके हम अपने अंदर के नफरत को, नाराजगी को, अपने अंदर के हर एक कमी कमजोरियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे दिन सभी को अपने समान समझ खुशी से रंग लगाते हैं। होली के दिन ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई अपना है ना कोई दुश्मन है, सभी होली के रंग में रंग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जब अपने अंदर की नाराजगी को, नफरत को, दुश्मनी को भुलाकर सच्चे रूप में होली मनाएंगे तभी वास्तव में हम होली हंस बन जाएंगे। होली भी होली हंस बनने का ही प्रतीक है। परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे होली हंस बनो। जैसे हंस मोती चुगता है कंकड़ नहीं, ऐसे हमें हंस बुद्धि बनना है। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रत्न धारण करने वाले। परमात्मा कहते हैं पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले बनो। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले नहीं बनो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना है। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना जिसको भाव स्वभाव कहते हैं, जो व्यर्थ है उनको बदलना है। परमात्मा कहते हैं अपनी वृत्ति को हंस वृत्ति बना लो। हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो, उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। अर्थात कोई कैसे भी वृत्ति से आपके पास आए लेकिन आपके मन में उसके प्रति कल्याण की ही भावना हो, आप अपनी भावना से उसके मन के भाव को भी बदल दो, ये है हंस वृत्ति।
2: श्रुते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि अपनी दृष्टि को होली हंस दृष्टि बना लो। होली हंस दृष्टि अर्थात सदा हर मनुष्य आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। कैसा भी हो लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण कर लो। परमात्मा कहते हैं कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसके कर्म कैसे भी हो, लेकिन कभी भी उस आत्मा के प्रति हमारे मन में नफरत घृणा ना हो। हम उसे नफरत के दृष्टि से घृणा के दृष्टि से ना देखें, बल्कि उसे शक्तिहीन कमजोर अपने संस्कारों के परवश निर्बल आत्मा समझकर उस पर रहम करे, उसे आत्मिक दृष्टि से स्नेह की दृष्टि से ही देखे। इसे ही कहते हैं होली हंस दृष्टि। परमात्मा कहते हैं अपने आप को हंस मुख स्थिति में स्थित कर लो, अर्थात अपने मुख से कभी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल या नकारात्मक बोल ना निकले। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी का दिल दुखाया जाए या किसी भी आत्मा को दुख का अनुभव हो। हमारे मुख से ऐसे कोई भी बोल ना निकले जिससे किसी को दर्द हो। परमात्मा कहते हैं हमारा हर एक बोल दूसरों को सुख देने वाला हो। इसी को कहते हैं हंस मुख स्थिति। परमात्मा कहते हैं कि जब हम होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख ये सब जब होली हंस की तरह पवित्र बन जाते हैं श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देने लगता है। परमात्मा कहते हैं कि साधारणता को छोड़ हमें होली हंस की तरह श्रेष्ठता को ही चुनना है। परमात्मा कहते हैं होली हंस बुद्धि बनाने के लिए परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तभी ही ज्यादा व्यर्थ समय जाता है, और व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ सही सोच रही हूँ।

जो मैंने कहा वही सही है, इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सभी चली जाती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले क्या सही है क्या गलत है इसे परखना सीखो, तभी ही होली हंस बुद्धि बन पाओगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो आप यह नहीं सोचो कि ये तो है ही बुरा, ये तो है ही ऐसा। परमात्मा कहते हैं गिरे हुए को और नहीं गिराओ, उसे आधार देकर ऊपर उठाने की कोशिश करो। इसी को ही कहा जाता है कल्याण की भावना, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करना है। परमात्मा कहते हैं जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, स्वपरिवर्तन करने की कोशिश करते हो, तब आपका प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा और वो भी खुद को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलने के लिए प्रयत्न करना है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली मनुष्य आत्मा। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध, सर्म में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल के और स्वच्छता स्वरूप होंगे। परमात्मा कहते हैं तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ रहे। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर ही परमात्मा राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात पवित्रता है। परमात्मा कहते हैं जो तन मन संबंध से पवित्र है वही वास्तव में होली हंस है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस मूर्ति से इस शरीर को स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना है।

तो इसको भी संपूर्ण स्वच्छता पवित्रता नहीं कहेंगे। मन को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा हमें मंत्र देते हैं, मन मना भव, अर्थात अपने मन को एक परमात्मा में लगाना। इसी से ही हमारा मन पवित्र बनेगा। परमात्मा कहते हैं, और अगर किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता है, इसे पवित्रता नहीं कहेंगे। परमात्मा हमें दिल की स्वच्छता रखना भी सिखाते हैं। दिल की स्वच्छता अर्थात सभी के प्रति कल्याण की भावना हो। जब हम औरों के कल्याण की भावना से उन्हें परमात्मा का परिचय देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इसी को दिल की स्वच्छता कहा जाता है। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। सेवा में भी सच्चाई सफाई हो। हमारे दिल में औरों के कल्याण की ही भावना हो। परमात्मा कहते हैं कि संबंध में भी स्वच्छता पवित्रता हो। हमें स्वयं से भी संतुष्ट रहना है और औरों से भी। अगर हम खुद से नाराज रहेंगे या औरों से भी नाराज रहेंगे तो ये भी स्वच्छता नहीं है, ये भी संबंधों में पवित्रता नहीं है। नाराजगी अस्वच्छता का प्रतीक है और संतुष्टता स्वच्छता का पवित्रता का प्रतीक है। परमात्मा कहते हैं खुद से भी संतुष्ट रहो और औरों से भी संतुष्ट रहो। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही

0: नहीं आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट right? वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा, होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट right? अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकर दोनों को परखता है फिर निर्णय करता है, उसके बाद ही मोती ग्रहण करता है और कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया गया है। परमात्मा कहते हैं परमात्मा ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। परमात्मा कहते हैं पवित्रता को धारण करने के लिए पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकर दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस में सबसे पहली विशेषता है परखना अर्थात पहचानना। परमात्मा कहते हैं आपको भी हर मनुष्य आत्मा को परखना है और उसके अंदर की विशेषताओं को धारण करना है, कमी कमजोरी रूपी कंकड़ को छोड़ देना है, अर्थात हमारा ध्यान हर मनुष्य आत्मा के विशेषताओं पर हो, ना कि कमी कमजोरियों पर। परमात्मा कहते हैं जब विशेषताओं को परख लोगे तभी तो अपने अंदर धारण कर पाओगे और वही वास्तविक अर्थ में होली हंस बनना है। परमात्मा कहते हैं परखने की शक्ति यथार्थ होगी, श्रेष्ठ होगी तो निर्णय भी यथार्थ होगा। परमात्मा कहते हैं अपने मन में उठने वाले हर संकल्प को भी परखना है कि ये संकल्प सही है या रॉन्ग है। जो समर्थ संकल्प होंगे वो आत्मा की शक्ति बढ़ाएंगे और जो निगेटिव व्यर्थ संकल्प होंगे वो हमें शक्तिहीन बनाएंगे। परमात्मा कहते हैं सबसे पहले अपने संकल्पों को परखना सीखो। परमात्मा कहते हैं जो समर्थ संकल्प होंगे उन्हें अपने जीवन में धारण करो अर्थात अपने कर्मों में लाओ, और जो व्यर्थ निगेटिव संकल्प होंगे उन्हें रिजेक्ट करना सीखो अर्थात उन्हें ज्यादा महत्व ना देते हुए उन्हें

नकारना है। परमात्मा कहते हैं, एक सुंदर बगीचे का निर्माण करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और उसी जगह जंगल का निर्माण करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप उगाते हैं। परमात्मा कहते हैं, इसी प्रकार मन में श्रेष्ठ संकल्प चलाने पड़ते हैं, उनका निर्माण करना पड़ता है। साधारण और व्यर्थ संकल्पों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हमें अपने व्यक्तिमत्व का निर्माण करना है तो हमें रचयिता बनना होगा और श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करना होगा। परमात्मा हमें होली हंस बनने की शिक्षाएं देते हैं। श्रुति हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जहां अवेकनिंग की बात होती है वहां हर बार कहते हैं कि खुशी बहुत नेचुरल है, लेकिन इन दिनों हम बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है, यानी खुशी का जो लेवल है हमारे जीवन में दिन भर में वो कहां पर है। और जो इन दिनों हमने बात की है, जो श्रृंखला को शुरू किया है, बहुत सी बातें सामने आई हैं। एक बात जो बहुत क्लियरली दिखी है वो ये कि मेरी खुशी अभी तक जो मैं सोच रही थी कि सिचुएशंस पर, लोगों पर या वस्तुओं पर, चाहे वो गाड़ी थी, चाहे वो साड़ी थी, कुछ भी था, उस पर डिपेंड करती थी, तो वो चीजें थी, वो लोग थे, वो सिचुएशंस थी, क्रिएशन हैप्पीनेस की या सैडनेस की मेरी अपनी थी। एक ये बात हमें समझ में आई। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो हमने बात की थी कि जो मैं सोचती हूं वो मेरी एक डेस्टिनी क्रिएट करती है, यानी कि मेरी सोच, जो मैंने थॉट क्रिएट किया, वो अल्टीमेटली मेरे भाग्य तक लेकर जाता है। ये बात कैसे हमारे सामने आएगी वो हम बार बार ये कहते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर अनुभव जो है वो सबसे बड़ी मिसाल होता है। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और शुरू गहरे से देखते हैं और देखते हैं कि कैसे जो थॉट से लेकर डेस्टिनी तक की पूरी साइकिल है कैसे वर्क करती है। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। बड़े बड़े चैलेंजेस लेकर आते हैं हम आपके सामने, और बहुत से जो दर्शक हैं वो भी इस पूरी सीरीज में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि जहां हैप्पीनेस की बात आती है वहां हर कोई चाहता है और उसके बारे में बात भी करना चाहता है। तो अगर पिछली कड़ी को देखें, आपने कहा था मेरी सोच, मेरा एक विचार या मेरा थॉट मुझे अल्टीमेटली मेरे भाग्य तक लेकर जाता है। थोड़ा सा रिकैप करना चाहेंगे कि कैसे ये संभव है, ताकि अगर हम सबको भी अपनी लाइफ में इसे इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे।
1: जब हम भाग्य कहते तो व्हाट डू वी मीन बाय डेस्टिनी? डेस्टिनी इज द एनर्जी व्हिच इज कमिंग टू मी। व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी इज मेरे साथ जो होता जा रहा है, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे वो व्यवहार है किसी का, दैट इज माय डेस्टिनी। सो व्हेन वी से डेस्टिनी, इट इज क्वालिटी ऑफ एनर्जी व्हिच इज कमिंग टू मी। अभी तक हम सोच रहे थे जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी मेरे को मिलेगी दैट विल क्रिएट द

0: Ability of energy insight. See, this is how I was working before I came to the Brahma Kumaris. This was my thought pattern.
1: कि मेरे भाग्य में है तो मुझे मिलेगा, उस लड़के से शादी होनी है, ये नौकरी मिलनी है, ये मेरा प्रोफेशन होगा, बच्चा जो भी बच्चा होगा क्या वो होगा, तो ये मेरे भाग्य में है तो होगा.
0: अब चाहे आप उसको बड़े लेवल पर लो, इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों में, या सारा दिन की छोटी छोटी परिस्थितियों में लो, इट वॉज जो मेरे साथ होगा वो मेरी सोच क्रिएट करेगा. सो द एनर्जी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड विल क्रिएट एनर्जी इनसाइड. दैट वॉज द इक्वेशन ऑफ लाइफ. कि अगर एनर्जी अच्छी आ रही है बाहर से तो अंदर भी एनर्जी कैसे क्रिएट होगी, अच्छी होगी. एंड दैट्स व्हाट यू समटाइम्स से कि सिचुएशन makes me feel good or situation makes me feel low. Yes. That is what we are trying to say. Energy comes from outside, energy makes me feel inside. Now, spirituality changes the equation for me and says, jo energy main andar create karti hun, that is the energy which goes outside, and jo energy I send outside, that is the energy then which comes back. जिसको आज दिन तक हम लॉ ऑफ कर्म भी कहते थे, या सिंपल साइंस भी है कि जो एनर्जी आप बाहर भेजेंगे वही एनर्जी आपको वापस आएगी. अब क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस में नहीं है, हम ज्यादा अवेयर ये हैं कि बाहर क्या हो रहा है, तो आई एम नॉट लुकिंग एट द एनर्जी व्हाइल इट इज गोइंग लाइक दिस, आई एम लुकिंग एट द एनर्जी व्हाइल इट इज कमिंग लाइक दिस.
1: तो मैं लॉ नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसको रियलिटी में देख रही हूँ.
0: राइट.
1: यू नो अभी क्या हुआ है कि मैंने ये कहा कि मेरे भाग्य में ही नहीं है. कई बार हम कहते हैं उसका भाग्य बहुत अच्छा है, उसे सब कुछ घर बैठे ही मिल गया.
0: yes.
1: तो उसका भाग्य अच्छा है, इट मींस उसने पहले वो एनर्जी क्रिएट की.
0: एब्सोल्युटली. अब हमें वो वाला प्रोसेस तो नहीं पता ना कि क्या क्रिएट किया था,
1: खुद
0: क्या
1: तो नहीं पता होगा मुझे.
0: नहीं, सो दैट्स बिकॉज वी आर नॉट अवेयर. तो हम अपने जो भाग्य को किस रूप से देख रहे हैं, जो मेरे पास बाहर से आ रहा है, तब हमने सोचा कि जो बाहर से आ रहा है दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल. जब हमने ये समझा कि जो बाहर से आ रहा है इट्स अ रिटर्न ऑफ जो यहां से गया है, नाउ इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग इट दिस वे व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम हियर आई कैन कंट्रोल इट व्हेन
1: गिविंग
0: इट इज गोइंग.
1: अच्छा, इट इज नॉट इवन यू नो इट मस्ट बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस.
0: सारा दिन
1: है तो तभी तो जा रहा होगा, या अब कौन गया पहले?
0: अगेन यू आर गोइंग इन द अदर वे राउंड. आप कह रहे हो जो आता है तभी तो फिर वो बाहर जाएगा.
1: अगेन
0: इट्स द अदर वे राउंड. जो बाहर जाएगा वो ही तो फिर वापस आएगा. अभी हम ज्यादा अवेयर इसके साथ हैं कि बाहर से क्या आ रहा है. लेट्स स्टॉप लुकिंग एट दैट बिकॉज दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल. इन माई कंट्रोल इज क्या जाता है, एंड जाता क्या है, एवरी थॉट इज एनर्जी. वाई वी सेड थॉट क्रिएट्स डेस्टिनी, बिकॉज एनर्जी दैट आई एम सेंडिंग आउट इज एनर्जी ऑफ थॉट्स.
1: बट अगेन यू नो इफ यू आर सेइंग दैट कि जो मैं जो जा रहा है वही आएगा ना वापस, तो फिर इसका मतलब अल्टीमेटली यू आर गिविंग मी द पावर.
0: यस.
1: कि मेरे पास जो आना है उसको भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ.
0: उसको ही तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन कंट्रोल कब करेंगे,
1: जब मैकेनिज्म
0: से जब बाहर जा रहा था. इट्स लाइक सिंपल तरीका है कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या आप मेरे से कैसे बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट एनर्जी आई सेंट आउट टू यू फर्स्ट.
1: अबाउट माई सेल्फ और अबाउट यू?
0: अबाउट यू. व्हाट एनर्जी आई सेंड आउट टू यू इज द एनर्जी दैट यू विल सेंड बैक टू मी. बट आई डोंट लुक एट इट व्हाइल आई एम सेंडिंग इट टू यू. आई लुक एट इट व्हेन आई सी यू टॉकिंग बैक टू मी. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से ठीक से बात नहीं की. उसका पास्ट क्या है छोड़ो, अभी अभी इस पल आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की. दिस इज अ सिचुएशन विच हैज जस्ट हिट मी. नाउ माई थॉट्स विल स्टार्ट कि ये मेरे से ठीक से बात नहीं की, क्या हुआ, नाराज है, ये तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनके लिए कितना भी करो ये खुश नहीं होते. आई एम क्रिएटिंग माई डेस्टिनी. क्योंकि एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग लाइक दिस तो वो किस क्वालिटी की है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ी अनप्लेजेंट है, नेगेटिव है, तो वो पहले मुझे कैसा फील कराएगी, वेरी वेरी लो. एंड देन बिकॉज दैट कम्स आउट इन टू माई एक्शन. क्योंकि इफ आई एम नॉट थिंकिंग वेरी नाइसली अबाउट यू माई एक्शन विल ऑल्सो बी, एंड एक्शन मीन्स राइट फ्रॉम हियर. तो विच एनर्जी एम आई सेंडिंग आउट टू यू? नेगेटिव. तो आपसे क्या रिटर्न में आएगा? नेगेटिव. तो ये मैंने अपनी डेस्टिनी क्रिएट की कि आपका और मेरा रिश्ता अभी और थोड़ा थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा.
1: और वो जो पहले जो मैंने नेगेटिव किया था आपके साथ, जो उसी पल जब अभी तक कोई इंट्रैक्शन भी नहीं हुआ था, एंड आई क्रिएटेड अ नेगेटिविटी, इट मींस वो भी कहीं आपका ही लिया हुआ था.
0: यस. हमारे साथ जो भी हो रहा है, दिस इज द वेरी फंडामेंटल. सारा दिन जो हमें

0: याद रखना है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है इट्स ओनली अ रिटर्न ऑफ
1: What I've given out. Oh my God, that makes me feel bad. But then,
0: no, that makes me feel powerful.
1: On the other hand, yes, you know, right now if I say कि मेरा जो क्योंकि अभी तक तो मैंने बहुत सारे अपने बना रखे थे outlets थे मेरे पास कि उसके कारण है या वो responsible है, मेरा husband responsible है, मेरा boss responsible है, सारी दुनिया responsible थी. मेरी मदर इन लॉ रिस्पॉन्सिबल है, यू नो, लाइक एवरीवेयर एवरी वन वॉज रिस्पॉन्सिबल. बट टूडे अगर मैं ये देखती हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कारण है, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ.
0: पास्ट में भी मैंने कुछ किया था, मैंने कुछ सोचा था जिसकी वजह से ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है. चलो दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल. लेकिन अब प्रेजेंट सिनेरियो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लॉट ऑफ अस आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स टुडे. चाहे वो प्रोफेशन में इनसिक्योरिटी है, चाहे वो बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन है, वो एक परिस्थिति है जो मुझे हम कहते हैं हिट की है कि मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को इस सिचुएशन ने हिट किया है.
1: देयर इज एन इनसिक्योरिटी.
0: देयर इज एन इनसिक्योरिटी, नॉट ओनली एन इनसिक्योरिटी, देयर इज अ स्लम्प. एक डाउन तो आया ही है. हो सकता है कि मैं शॉप पे हूं तो मेरी शॉप आज नहीं चल रही, मेरा बिजनेस एकदम ही, मेरी सेविंग्स एकदम खत्म होने को आ रही है, वट एवर. सो इट्स नॉट जस्ट एन इनसिक्योरिटी, इट इज एन एक्चुअल फाइनेंशियल स्लम्प. नाउ दिस इज वन सिचुएशन जो आई है सामने. अब मैंने किस प्रकार की थॉट्स क्रिएट करनी है. इफ आई एम नॉट अवेयर कि इन दिस सिचुएशन ऑल्सो मैं ही अपने थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ.
1: अच्छा, ये स्लम्प जो आया मेरी जिंदगी में या मेरे जिंदगी में इनसिक्योरिटी आई, ये भाग्य है ना एक तरह से, ये भी मैंने ही तय किया हुआ.
0: हाँ, ये भी मैंने ही तय किया हुआ. इसको फिर हम थोड़ा सा आगे के एपिसोड्स में देखेंगे क्योंकि ये बहुत डीप है कि ये भी मैंने ही किया था. चलो उसके बारे में अभी हम नहीं कुछ कर सकते.
1: अब जहां खड़े हैं
0: अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ अस टुडे, क्योंकि हमने कहा ये स्लम्प आया, हम फियर में चले गए, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये कभी ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. जब इस तरह की थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दी तो मन की स्थिति कैसे हो जाएगी. अब ये जो फाइनेंशियल स्लम्प है कोई एक को तो नहीं अफेक्ट हुआ, इट हैज मोर और लेस अफेक्टेड ऑल ऑफ अस इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. लेकिन हम ही प्रैक्टिकल में आज देख सकते हैं कि उसी सिचुएशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से सोचते हैं. आज उसी परिस्थिति में कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं एंड दे हैव गॉन इन टू अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस कि अब कुछ नहीं हो सकता, आई कांट कम आउट ऑफ दिस. देयर हैव बीन सर्टन केसेस जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है. देयर हैव बीन दोज रेयर केसेस जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी फिनिश कर दिया और फिर अपने आप को भी फिनिश. क्यों? इट मस्ट हैव बीन एब्सोल्यूट होपलेसनेस ना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता.
1: सिचुएशन आई तभी तो मेरा थॉट क्रिएट हुआ.
0: यस, बट उसी सिचुएशन में क्या मैं एक अलग थॉट भी क्रिएट कर सकता था? वन थिंग इज कि सिचुएशन आई के फाइनेंशियल लो है, दिस इज द सिचुएशन ना, और तो कोई सिचुएशन नहीं है, ये सिचुएशन है. अगर मैं इस समय एक ये थॉट क्रिएट करूं कि हाँ ये फाइनेंशियल लो है, लेकिन इस समय भी मुझे अपना ध्यान रखना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है.
1: ठीक द सिचुएशन कि मैंने फाइनेंशियल मेरा काम काफी रुका हुआ है, मैंने बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं. ठीक है, मेरे पर बहुत ज्यादा कर्जा है और अभी काम बिल्कुल नहीं चल रहा है. घर चलाना है, कर्जे की किस्तें देनी है और आगे अपने स्टेटस सिंबल मतलब अपना जो कुछ भी है. अब मैं कौन सा ऐसा, क्योंकि कई बार कहते हैं कि फिर क्या हम सिचुएशन से आंख बंद कर लें, सिचुएशन तो है ही. तो
0: ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है कि अगर मैंने इतना कुछ लिया हुआ है और मुझे इतना कुछ रीपे करना है, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है कि मुझे बहुत एफर्ट करके अब अर्न करके वो रिटर्न करना है. लेकिन वो एफर्ट करने के लिए पहले किसको स्ट्रांग होना पड़ेगा. द मिनट आई गेट डीमोटिवेटेड एंड आई लूज होप इन माई सेल्फ एंड आई लूज फेथ इन माई सेल्फ एंड आई से अब कुछ नहीं हो सकता, कोई जॉब नहीं है बाहर, मैं कुछ भी करूं चलने तो वाला ही नहीं है क्योंकि सारी मार्केट ही डाउन है. विद दिस क्वालिटी ऑफ थॉट मैं कोई भी बिजनेस कर लूं, मैं कोई भी ऑफिस भी रोज अगर चले जाऊं, विद दिस क्वालिटी ऑफ थॉट, पता नहीं आज जॉब रहेगी कि नहीं, पता नहीं आज शाम तक ये क्या कह देंगे, अगर इन्होंने ये ऐसा कहा तो मैं घर कैसे जाऊंगा, घर जाकर क्या करूं. नाउ विद दिस थॉट इफ आई वर्क इन द ऑफिस, तो देन डेफिनेटली माई नेम विल बी नेक्स्ट ऑन द लिस्ट बिकॉज आई माई सेल्फ अपनी एफिशिएंसी को मैं लो कर रही हूँ
1: जैसे सिचुएशन आई उसका उसी वक्त कोई डिसीजन नहीं ले रहता कि मेरे को अपनी जान खत्म करनी है या कुछ करना है वो एफर्ट करता है
0: टेकन अ लॉट ऑफ टाइम लेकिन जब अगर आप अपने आप को ये थॉट उस टाइम दोगे कि भले नहीं चल रहा है ना चाहिए क्या जीने के लिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता लेकिन ये जो डर हम क्रिएट कर देते हैं ये हमारे को इतना नीचे ले जाता है कि हम समझते हैं कि कुछ है ही नहीं जीवन के अंदर इफ आई क्रिएट अ थॉट इट डजेंट मैटर दिस इज अ पासिंग फेज ये पास हो जाएगा आई एम स्टिल गोइंग टू पुट इन माई बेस्ट एफर्ट
1: यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ मैंने सपोज ये भी किया जैसे एक सिचुएशन मेरे सामने आई मैंने कहा नहीं इट्स ओके मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मैं आगे काम करता जाऊंगा मैं एफिशिएंट हूं ठीक है लेकिन मैं काम करता गया उसके बावजूद भी सिचुएशन लो मैं सारी मेहनत करता गया अपने ऊपर ये सोचे बिना कि अंदर क्या हो रहा है एफर्ट्स मेरे बाहर रहते रहे कि मैंने एक एक प्रयास किया दूसरा प्रयास किया तीसरा प्रयास किया और सिचुएशन और खराब होती जाए तो देयर कम्स अ पॉइंट मेरी पूरी हिम्मत टूटती है मेरे को कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा होता पूरा ब्लैंक हो जाता है और तब मेरा अपना जो मनोबल है वो बिल्कुल डाउन होता है
0: जैसे वो डाउन होगा तब सब कुछ डाउन होता है
1: हाँ
0: जब मार्केट डाउन है बिजनेस डाउन है कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन सब कुछ ठीक होते भी अगर अगर ये जो एंथुजियाज्म है ये जो पॉजिटिविटी पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड है जिस दिन ये डाउन होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा आई मेट वन पर्सन जिनके मॉल्स हैं मतलब उनके पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे मॉल्स हैं इतने दे आर सो वेल टू डू कि इवन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड जनरेशंस डोंट वर्क ना इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस लेकिन वो आज भाई डिप्रेशन में है एंड एक्चुअली मेडिकेशन ले रहे हैं साइकाइट्रिस्ट से तो वो सेंटर पर आए आई सेड आर यू हिट सो बैडली कि आपको यू नो यू आर हैविंग टू डू दिस ही सेइंग मी सिर्फ फर्क क्या है कि जितना पहले था इनकम उससे थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन है तो अभी भी बहुत ना सो इट्स नॉट यू नो इट्स नेवर द क्वेश्चन ऑफ कि बहुत कम बचा इट्स जस्ट दैट पहले जितना था उससे थोड़ा सा कम हो गया वो इतना सा जो वो इनकम कम हुआ उसका जो इफेक्ट मन पर पड़ा वो ज्यादा आज डैमेज कर रहा है वो मॉल्स आज चल रहे हैं नहीं भी चल रहे बंद भी पड़ गए कल फिर ठीक हो जाएंगे दैट्स नॉट द पॉइंट इज अगर आई स्टार्ट गोइंग टू द साइकाइट्रिस्ट टुडे फॉर डिप्रेशन वो कब ठीक होगा तो एक तो थोड़ा सा इनकम तो कम हुआ लेकिन मन का ध्यान नहीं रखा उस टाइम अपने आप को अच्छे थॉट्स देकर उसमें से बाहर नहीं निकाल सके तो मन का भी नुकसान धन का तो नुकसान थोड़ा सा है मन का नुकसान हुआ मन के लेवल पर ठीक नहीं किया कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी पर आ गए इतने फ्रस्ट्रेशन की हालत में रोज घर पर गए रिश्ते
1: बिल्कुल खत्म
0: अब रिश्तों के सामने शरीर की बीमारी के सामने एंड माइंड की बीमारी के सामने ये धन का लॉस कितना बड़ा लॉस था कुछ भी नहीं था
1: वेरी ट्रू
0: कुछ भी नहीं था
1: शिवानी एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ मेरे को अब यहाँ बात करते करते आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मन की शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है लेकिन कई बार ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि वो जैसे वो भी थे कि डिप्रेशन मेरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा जैसे ही मेरी फाइनेंशियल पोजीशन
0: नहीं ठीक होगा
1: इट
0: विल नॉट बी
1: ये गलत फहमी
0: एंड इवन इफ इट इज चलो लेट्स से कि हमने कहा कि जैसे ही वो फाइनेंशियल ठीक हो जाएगा मेरा डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा सिक्स मंथ्स वन ईयर टू ईयर्स अगर वो फाइनेंशियल लो रहा तो इज इट ओके कि इतना टाइम आप डिप्रेशन में रहेंगे उसका कितना इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा आपको कितना वो कमजोर बना देगा आज आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए या हाइपरटेंशन की हो जाए वो ठीक हो जाएगा अगर आप कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगा इम्पैक्ट छोड़कर गया या नहीं छोड़कर गया आपके रिश्तों में जो थोड़ी सी दूरी आ जाएगी तो जैसे ही सेंसेक्स ऊपर होगा वो रिश्ते ऐसे ठीक हो जाएंगे नो इट विल नॉट ये जो सारे इम्पैक्ट पड़ के जाएंगे ये तो इम्पैक्ट डाल ही दिया इनको हम ये हम क्यों कहें कि इनको भले बिगड़ने दो जब वो ठीक होगा तो ये भी ठीक हो जाएंगे क्या ये नहीं हो सकता कि भले वो मार्केट डाउन है लेकिन इन सब का तो हम फिर भी ध्यान रख सकते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएट एट दैट टाइम समवन कैन से इट डजंट मैटर आज मेरे पास जॉब नहीं है सेम सिनेरियो आई मेट अनदर पर्सन ही सेज नो इनकम फॉर द लास्ट वन ईयर I said, in fact, I was a little concerned and I said, really? And aapko to dekhkar aisa kuch nahi lagta ki aisi koi problem hai. He said, theek ho jayegi, aaj property ki market hai hi nahi bilkul. To main usme kuch nahi zyada, main soch nahi raha. He's saying, I am spending this time with my family. He's saying, he has three daughters. He said, main puri life mein unke saath itna time spend nahi kiya, main unke itna close aa gaya hu. I am really enjoying my relationships. But why is he being able to enjoy that? Because mentally, he's not disturbed. Kai baar hum ghar mein baithe honge by default kyunki mere paas shayad job nahi hai ya business nahi hai lekin andar hai. To ab jaise kisi ne usi situation mein parivar walon se door ho gaye and koi usi situation mein actually parivar walon ke aur nazdeek

0: इस पर मैं जानना चाहूंगी दोनों की डेस्टिनी कैसे बनी। उससे पहले एक मैं और मिथ को बहुत स्ट्रांगली क्लियर करना चाहती हूँ। लोग ये अपने मन पे इसलिए काम नहीं करते हैं उस वक्त कि वो सोचते हैं कि ये किया नहीं जा सकता, ये तो सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए सबसे पहले जो सिचुएशन मुझे बचानी है उस पर काम कर लूं। वन, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इट इज इम्पोर्टेंट अपने मन पे काम करना। टू, वी थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ये दोनों जो बातें हैं वो अगर आप आज हमारी मिथ क्लियर करें कि कैसे वो संभव है।
1: एक है तो मन पर काम हमेशा करना है, जब सिचुएशन फेवरेबल है या नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जब सिचुएशन कुछ डिस्टर्बिंग हो तब अपने पर काम करना, क्योंकि तब काम करने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। अगर नॉर्मल जब सब ठीक चल रहा है तब करें तो इट विल बी वेरी इजी, सिचुएशन आकर चली जाएगी। लेकिन अगर पहले नहीं किया है और अभी भी अगर सिचुएशन अनफेवरेबल हो गई है, इफ एवरी डे इफ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आप अपने साथ थोड़ी देर बैठते हैं एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। जब आप कॉन्शियसली बैठकर अपने आप को ये थॉट्स दें, सपोज आपका बच्चा या आपका भाई या बहन की जॉब चली जाती है, आप उनके साथ कैसे बात करेंगे? जस्ट टॉक द सेम वे टू योर सेल्फ। हमें पता है नो वन नीड्स टू लर्न कि उस टाइम कौन सी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करनी होती है, लेकिन हम वो वाली पॉजिटिव थॉट्स दूसरों को बताते हैं कि कोई बात नहीं है ना, जॉब आ जाएगी, आप अपना ध्यान रखो। अगर हम दूसरों को ये बोल सकते हैं कि आप अपना ध्यान रखो, आप उदास मत हो, Why can't I do this for myself? But for myself, I say, परेशान होना तो natural है, इस समय पर मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ, तो जो thought create करेंगे वो ही फिर होता जाएगा। अगर आप अपने आप को कहेंगे इस समय कैसे मैं stable रह सकता हूँ, situation इतनी बड़ी है, तो आप स्टेबल नहीं रहेंगे। अगर आप इस समय अपने आप को भी उतने ही प्यार से बात करें, वी गेट वेरी हार्श विद आर सेल्व्स व्हेन सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। अगर हम रोज थोड़ी देर अपने आप से बात करें, कुछ बिजनेस में गए, बाहर गए, ऊपर नीचे हो रहा है, टेक आउट टू मिनट्स, टॉक टू योर सेल्फ, ओके सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल, ठीक है वो मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहे, आई एम स्टिल गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं फिर भी स्टेबल रहने वाला हूँ, मैं रह सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ पावरफुल बींग, दिस डजेंट नीड मनी टू बी हैप्पी, आई नीड टू नो दैट, दिस जस्ट नीड्स द राइट थॉट, द राइट सिग्नल। इसके ऊपर तो धन का कोई असर नहीं हो रहा है, इसको क्या चाहिए स्टेबल रहने के लिए, जस्ट द राइट इनपुट, जस्ट द राइट थॉट, एंड हु इज गोइंग टू गिव दैट टू मी। एक टाइम पर सारे लोग भी बैठकर मुझे बोल दें कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, It doesn't have an impact. Oh, yes. लेकिन अगर मैंने एक बार अपने आप को ये बोल दिया कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेट्स मूव अहेड, यू हैव टू सी हाउ इट क्रिएट्स द पावर, ओनली आई शुड बी एबल टू से दैट टू माई सेल्फ, एंड फॉर दैट व्हाट डू आई हैव टू डू, गेट अप इन द मॉर्निंग, सिट विद योर सेल्फ फॉर सम टाइम, औरों के साथ बात करने के लिए इतना टाइम निकालते, अपने साथ बैठो, बिकॉज जो आप थॉट अभी क्रिएट करोगे वो आपकी डेस्टिनी आज सारा दिन की है। लेट्स नॉट लुक एट अ लॉन्ग टर्म डेस्टिनी, लेट्स लुक कि आज सारा दिन मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मैं ये थॉट क्रिएट करूं कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरे परिवार वाले भी उदास हो जाएंगे, आगे पता नहीं क्या होगा, तो वही एनर्जी मैं बाहर भेजूंगी, मेरा क्या उमंग उत्साह रहेगा उस बिजनेस में, थॉट्स नेगेटिव है। लेकिन अगर आई सेट माई सेल्फ फॉर द डे, I am the being, I am the powerful creator, and chahe kuch bhi ho jaye, dhan kis liye chahiye tha, khush rehne ke liye na, but I can still be happy, even if there is no money, talk to yourself like this, 2 minutes of talking to yourself makes you feel all the better.
0: तो खुशी की एनर्जी हमने फिर बाहर भेजी,
1: बाहर
0: तो हमें वापस
1: रिटर्न में क्या आएगा,
0: वेरी ट्रू। लेकिन बहुत सुंदर आपने बात कही है, कहीं ना कहीं एक बहुत एश्योरेंस मिलती है, बहुत यू नो एहसास एक ऐसा होता है कि इट इज पॉसिबल। लेकिन जो थॉट से लेकर डेस्टिनी वाला पूरा हम एक साइकिल लेकर चल रहे थे,
1: लेट्स लुक एट टू शॉप्स, आई वाज जस्ट थिंकिंग, दो शॉप्स एंड दो शॉपकीपर्स एंड दोनों उसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। एक ने थॉट क्रिएट किया, व्हाटएवर हैपेंस आई एम गोइंग टू cross this thing and everything will be okay. वो उसको cross करने के लिए कोई गलत practice नहीं करता, कोई cheating नहीं करता, ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए stable रहता है। उसके पास जो भी client आएगा उसके shop पर, उसको कैसी energy मिलेगी उससे, आप खुश हैं, आप जो आपसे मिलेगा आप उससे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। एंड दूसरा है परेशान है, डर में है कि पता नहीं क्या होगा, वो उसी प्रोडक्ट को हो सकता है थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा और, चलो कोई तो क्लाइंट मेरे पास आया, तो उस क्लाइंट के साथ वो ऑनेस्टी नहीं यूज करेगा,
0: इनसिक्योरिटी,
1: वो इनसिक्योर है। इफ यू हैव कम टू

0: वो है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ. ये होगी आपकी जो कहते हैं ना यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपकी, वो होगी. चाहे वो आप एक बिजनेस में है, चाहे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है. सपोज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक लिस्ट लेकर बैठे हैं कि किन किन लोगों को आज यहां से शॉर्ट लिस्ट करना है, तो वो कौन से लोगों को रखेंगे जो बहुत सारे प्रेशर के अंडर भी
1: स्टेबल
0: रहकर काम कर सकेंगे. क्योंकि वो कंपनी जो 300 लोगों के साथ काम कर रही थी, आज वही काम 100 लोग करने वाले हैं. तो उन 100 लोगों के ऊपर क्या आने वाला है? बहुत प्रेशर आने वाला है, डबल अमाउंट ऑफ. तो उन व्यक्तियों को क्या चाहिए उसको क्रॉस करने के लिए? लॉट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ. कहीं भी पीपल आर ओनली गोइंग टू लुक फॉर इमोशनल स्ट्रेंथ. लेकिन उन्होंने अगर हमें देखा कि ये तो बहुत कमजोर है, ये तो छोटी सी बात में इतने डरे हुए हैं, इनसे तो काम ही नहीं हो रहा ठीक से, तो योर नेम विल बी फर्स्ट ऑन द लिस्ट. कम ऑन, यू आर आउट, यू आर नॉट फिट फॉर हैंडलिंग प्रेशर राइट नाउ. लेट्स फोकस ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ, डेस्टिनी विल चेंज.
1: दिस इज अमेजिंग कि मेरा भाग्य अपने ही हाथ में है. और अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि भाग्य, बहुत अच्छी बात शिवानी बहन समझ में आई कि जो भाग्य था वो ये था कि जो मुझे मिल रहा है, जो बाहर हो रहा है, वही भाग्य था ना. तो इसका मतलब मैं ये सोच रही थी जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरे जीवन को तय करेगा. लेकिन आज आपने पूरा रिवर्स कर दिया और इनफैक्ट हमारे सामने ये क्लियर लेकर आए कि होता भी ऐसे ही है कि जो मैं तय कर रहा हूं वो मुझे मिलने शुरू हो जाता है, वो मेरा भाग्य बन जाता है. अमेजिंग. एंड इट्स जस्ट वन थॉट अवे. लेकिन आप ये कहना चाहेंगे कि आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठती है, खुला मंच है, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. मेरा भाग्य मेरे अपने हाथ में, मेरी अपनी सोच में छिपा है. तो जैसी सोच वैसा भाग्य. बॉल इज इन योर कोर्ट. अब एक निमित ब्राह्मण कुमारी समय आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुणे आवाज में 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हम सभी के जीवन में अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट शक्ति है तो वो है हमारी निर्णय शक्ति, क्योंकि हमारे निर्णयों पर ही तो हमारा जीवन निर्भर करता है और ये निर्णय हमारे एक्यूरेट होते हैं तब जब हम किसी परिस्थिति, समस्या या व्यक्ति विशेष के प्रभाव से मुक्त हो, डिटैच होकर निर्णय लेते हैं, क्योंकि एक प्रभाव मुक्त डिटैच्ड आत्मा ही एक्यूरेट डिसीजंस ले सकती है। प्रभावित आत्मा अर्थात जो आत्मा अटैच्ड है, उसका कोई भी डिसीजन एक्यूरेट हो ही नहीं सकता।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ, ये है

पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज में। अभी तक जो हम ये सफर तय कर रहे हैं उसमें खुद को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि मंजिल तक पहुंचना ही हमारा मकसद नहीं, बल्कि जो सफर हम तय कर रहे हैं उसे भी खुशी से गुजारना है। तो इस सफर में हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की और हमने ये भी जाना कि जागरूकता अगर शुरू में ही आ जाए, अगर जिंदगी की शुरुआत में ही आ जाए, अगर हम जल्दी अवेक हो जाएं, जाग जाएं, तो कहीं ना कहीं वो मंजिल जो है, जो सफर की हम बात करते हैं, मंजिल भी पा लेंगे और वो सफर जो है वो भी हंसी खुशी गुजर जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस की बात हम कर चुके हैं, उस एस्पेक्ट को जिंदगी में शामिल करने का प्रयास कर चुके हैं। सेल्फ एस्टीम यानी कि हमारा जो आत्मसम्मान की हम बात करते हैं, जो हम अपने बारे में बात करते हैं, वो जब कभी लो हो जाता है, हॉलोनेस की फीलिंग होती है, उससे कैसे अपने आप को बचाएं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सेल्फ एस्टीम को लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। आज इसी सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत है।
1: शांति।
0: हमने बात की लो सेल्फ एस्टीम की, अगर पिछली कड़ी को याद करें तो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो जाने अनजाने ही हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, बचपन से रहते हैं। सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें जो हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, जो हमारे पास मेल्स आए थे, और वो हमारे जो ये लो सेल्फ एस्टीम है, जो हॉलोनेस की फीलिंग है, एम्प्टीनेस की, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। एक बार दोबारा उनको दोहरा लें, उनसे गुजर लेते हैं।
1: सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमने देखा कि हम बहुत ज्यादा जो अपने बारे में फील करते हैं वो उस पर आधारित है कि हम दिखने में कैसे हैं। अंदर खालीपन होने के कारण उसको बाहर से भरपूर करने की कोशिश करते हैं, परफेक्शन बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक परफेक्ट शरीर, यू नो, एक परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस,
0: खूबसूरती का जो एक पूरा आवरण ओढ़ा हुआ है,
1: क्योंकि हम सब खूबसूरत होना चाहते हैं, लेकिन वो हमने ये भूल गए कि मैं कौन हूँ जो खूबसूरत है। तो मैंने सोचा ये शरीर हो, तो फिर शरीर को खूबसूरत बनाने का पुरुषार्थ लग गया। जब ये रियलाइजेशन आती है कि आई एम अ ब्यूटिफुल सोल, मैं तो हूँ एक एनर्जी एंड दैट्स ऑलरेडी ब्यूटिफुल, देन आई डोंट रियली नीड टू वर्क ऑन ब्यूटिफाइंग द बॉडी, इट्स मोर टू डू विद माई सेल्फ। सेकेंड चीज जो हमने देखी वो है कंपैरिजन या दूसरों की तरह बनने का एक प्रयास, कि जब मैं इनकी तरह बन जाऊंगी तो आई फील गुड, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, यू नो, तो मैं जब तक आपके जैसे नहीं बन जाऊं आई एम नॉट लाइकिंग माई सेल्फ, मुझे पसंद नहीं है मैं जैसी हूं। तो ये एक एम्प्टीनेस, ये एक लो सेल्फ एस्टीम, और फिर वो बाहर एक प्रोजेक्शन के रूप में आ जाता है। यू नो, वो खालीपन हम बाहर से जोर से बोलकर, शोर मचाकर, डिफेंड करके अपने आप को, ये सारे जो बाह्य बिहेवियर है ये अंदर ये खालीपन की वजह से प्रोजेक्ट हो जाते हैं। और तीसरा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं,
0: पब्लिक ओपिनियन
1: ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारी सारी जीवन वैसा बनने में चली जाती है जो लोग हमें बनाना चाहते हैं। यू नो, लोगों को ये अच्छा लगता है इसीलिए मुझे करना है, मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
0: सिस्टर शिवानी, इस जंक्चर पे मैं एक मेल लेना चाहूंगी, ये मुंबई से हमें भेजा है विजय कुमार ने, और इनका अगर केस अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा आम होता है। ये कह रहे हैं कि राइट नाउ आई एम एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन, और ये मेरे अपनी चॉइस से था। मेरे पेरेंट्स और मेरे जो पीयर ग्रुप वाले थे वो, क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड था, बहुत इंटेलिजेंट था, तो वो चाहते थे कि मैं IIT करके आगे अपनी इंजीनियरिंग पूरी करूं और सिविल सर्वेंट बनूं, लेकिन मैंने आर्ट को चुना और आर्टिस्ट बन गया हूं। लेकिन अभी भी मेरे पेरेंट्स खुश नहीं हैं क्योंकि मैं उतना नहीं अर्न कर पा रहा हूं, मैं सैटिस्फाइड हूं। लेकिन अब इनकी समस्या ये आ रही है कि सी दिस इज अ कंफ्यूजन ऑफ लाइफ एक्चुअली, व्हाट ही सेज इज कि जब मेरे आसपास के

0: साथ के जितने भी लोग जो अब सिविल सर्वेंट्स हैं या कुछ कुछ काफी बन गए हैं, उन्हें देखता हूं जब वो मुझे आके बताते हैं कि हम विदेश यात्रा करके आए, हम इतना अर्न कर रहे हैं, तो मुझे कहीं सेल्फ डाउट आने लगते हैं कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। और दूसरी तरफ अभी भी मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि देखो वो कहां पहुंच गया, वो क्या बन गया। और मुझे ये सेल्फ डाउट, अंदर से तो मैं खुश हूं कि मैं आर्टिस्ट हूं, मैं आर्टिस्ट ही बनना चाहता था और मैं अपने रास्ते पर, मुझे वक्त लगेगा सक्सेस मिलने में, लेकिन मुझे टाइम मुझे पता है कि वक्त लगेगा, पर फिर भी मुझे ये डाउट्स जो हैं कि क्या मैं अब चेंज कर लूं अपने आप को, उस प्रोफेशन में चले जाऊं जो लोग कह रहे हैं, या मैं इसी को परस्यू करूं।
1: ये अगेन पब्लिक ओपिनियन वाली बात होगी।
0: अच्छा, ये बहुत लोगों के साथ होता है,
1: ये हम सबके साथ है। दिस वुड अप्लाई टू मेजोरिटी, और इसीलिए मेजोरिटी का सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम आज आधारित ही उस पर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
0: मैं अपनी भी बात कहूं कि एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद मैं मीडिया में हूं, किसी से भी बात करूं अगर, तो इट्स अ मेजर थिंग एट टाइम्स आई डू ऑल्सो, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि मेरी बात जैसे कह रहे, आई डू हैव दीज सेल्फ डाउट्स, क्या मैं सही हूं।
1: सही बात है,
0: तो ये अब क्या रही क्या है?
1: सी, इट्स इम्पोर्टेंट अपने आप से पूछना, एम आई हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। यू नो, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है जीवन की यात्रा में खुश रहना, इन्जॉय करना जो हम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ डेफिनेटली ये कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभा रहे हैं।
0: सिस्टर शिवानी, ये कॉन्फ्लिक्ट तब और गहरा हो जाता है जब हम जिस प्रोफेशन को हमने अपनी बाय चॉइस दिया है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, उसमें हम डिप्रेशन में होते हैं। आई थिंक यही लव मैरिजेस वाली बात भी है,
1: जब अपनी चॉइस से किया और फिर भी प्रॉब्लम आ रही
0: है। हाँ, तो तब लगता है कि क्या हम गलत हैं, क्या हमें वो करना चाहिए था जो हमारे जो बाकी लोगों ने हमें सजेस्ट किया था।
1: नहीं, वही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो इस पर्टिकुलर केस में आ रहा है इनके साथ, लो सेल्फ एस्टीम जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उनके जो साथ वाले कोलीग्स थे या जो उनके फ्रेंड्स थे वो शायद आज एक बहुत हाई सैलरी ले रहे हैं, एक बहुत हाई डेजिग्नेशन पर पहुंच गए हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में पहुंच गए हैं, तो उनके पास वो स्टेटस, वो पोजिशन और वो पे पैकेज आ गया जो समाज ने डिसाइड किया कि दिस इज सक्सेस।
0: लेकिन वो भी मायने रखता, मतलब उससे निकलना आज के वक्त में शायद
1: विच इज ओके, दिस इज मटीरियल सक्सेस, वो ठीक है, लेकिन हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन भी तो कुछ और हो सकती है ना। आई विल हैव टू एक्सेप्ट कि मेरी चॉइस कुछ और है,
0: मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैं अपनी मर्जी का काम कर पा रही हूँ,
1: मेरी पर्पज ऑफ लाइफ कुछ और है। आफ्टर ऑल पर्पज ऑफ लाइफ क्या है? इट कैन नॉट बी जस्ट टू अर्न 50,000, 1 lakh, 2 lakhs per month. That cannot be the purpose of life. क्योंकि and it's not necessary कि 1 lakh per महीने कमाने के बाद भी I'm feeling good. बिकॉज मैं अपनी सेल्फ एस्टीम मेरे पैसों पर एक्चुअली आधारित नहीं है। ये हम समझते हैं कि जो उतना कमा रहे होंगे दे फीलिंग वेरी गुड, बट इट्स नॉट ट्रू।
0: इसी से जोड़ दें अगर हम तो सेल्फ वर्थ की बात आ जाते हैं।
1: हाँ,
0: मेरी कीमत क्या है?
1: राइट,
0: आप मेरी कीमत क्या लगाते हैं? कहाँ समझते हैं आप मेरी कीमत?
1: क्योंकि हम सैलरी के साथ उसको जोड़ रहे हैं, हम अपनी पोजिशन के साथ जोड़ रहे हैं। मेरी वर्थ तो मेरी अपनी इनेट क्वालिटीज है, मेरी शक्तियां हैं, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरी वैल्यूज हैं। आज हम वो एक पैसा अर्न करने के लिए अपनी वैल्यूज को भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं, बिकॉज हमने प्रायोरिटाइज उसको कर दिया। एंड हाउ आई एम फीलिंग अबाउट माई सेल्फ कि जब सैलरी बढ़ जाएगी आई विल फील गुड, दैट्स नॉट ट्रू।
0: लेकिन यहां मैं ये जानना चाहूंगी कि जब मैं अपनी वैल्यूज पे खड़ी हुई हूं, जब मैं अपनी ही बात या किसी की भी और बात करूं, तो तब एक और चीज जो कहीं ना कहीं हमें कचोटती है, जो परेशान करती है, अगर हम सेल्फ वर्थ सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, वो ये कि मुझे इसकी पहचान तो कि कम से कम मैं अपनी वैल्यूज पे खड़ी हूँ, लेकिन पहचान भी फिर मैं उन्हीं से मांग रही हूँ,
1: उन्हीं से नहीं,
0: तभी परेशानी है।
1: हाँ, क्योंकि खुद अपने आप को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे, खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, तो औरों से रिस्पेक्ट चाहिए। सो यू नो, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल टू रिस्पेक्ट मी, लेकिन दूसरों से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जब तक खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे इस केस में भी सबसे पहले इवैल्यूएट किया जाए कि ये डिसीजन मेरा अपना था। जहां तक चेंज करने की बात आ रही है, दूसरों के कहने पर चेंज करना, आई डोंट थिंक सो। पहले अपने आप से पूछा जाए, इफ आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम हैप्पी, देन इट डजंट मैटर व्हाट पीपल से। हाँ, आप अपनी जिम्मेवारी, अपने परिवार को संभालने की जिम्मेवारी से नहीं दूर भागेंगे, उसको संभालेंगे, लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं कि ये स्टेटस है तो आपको वो स्टेटस अचीव करना है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप उसमें भी खुश नहीं होने वाले हैं। इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फील

0: गुड एंड टू बी हैप्पी अबाउट योर सेल्फ एंड वो तभी होगा जब आप अपनी चॉइस की चीज कर रहे हैं. बट मोर इम्पोर्टेंट इज आप करते हुए अगर फ्रस्ट्रेटेड है, यू नो, आप उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं, आप अपनी चॉइस का कर रहे हैं और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी कही हुई बात आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है. दूसरे का कमेंट, दूसरे की इंसल्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है. तो सबसे पहले फिर से वही बात याद करनी पड़ेगी, वो मुझे इंसल्ट नहीं कर सकते.
1: मेरी इनस्टेबिलिटी एक्चुअली दिस इज एक सूत्र पकड़ने की जरूरत.
0: इट्स इन माई हैंड हाउ टू गेट अफेक्टेड. आई नो वट आई एम डूइंग. इट्स लाइक दिस, मैंने ये लाइफ स्टाइल चूज किया. आई हैड फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन और माई व्हाटएवर क्वालिफिकेशन एंड माई बिजनेस. आज उसको छोड़ के आई हैव अडोप्टेड सम अदर लाइफ स्टाइल. तो डेफिनेटली पीपल हैव अ लॉट टू से, यू नो, पीपल हैव टू लॉट टू से अबाउट अ वाइट साड़ी. पीपल हैव अ लॉट टू से एंड नॉट वेरी नाइस थिंग्स टू से एट टाइम्स, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, यू नो, आपकी फैमिली जिसने आपको एक बहुत अलग रूप से देखा है, एंड उनके लिए ये चॉइस कई बार इमिजिएटली एक्सेप्टेड नहीं होती है. लेकिन अगर ये आपकी अपनी चॉइस थी और आपने सोच समझ कर इसको अडॉप्ट किया है कोई भी डिसीशन को, तो फिर जो दूसरे कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट बिल्कुल भी.
1: और मुझे लगता है कि जो आपने चॉइस की है उसे कुछ वक्त देना चाहिए.
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि कोई भी चीज आप चूज करेंगे, कोई भी लाइफस्टाइल, कोई भी प्रोफेशन, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे. आज आप किसी बड़े से बड़े कंपनी के भी सीईओ बन जाएं, तो उसमें भी यू विल गो थ्रू योर फेजेस. इट कैन नॉट बी, जैसे आपने कहा लव मैरिज, उसमें भी यू विल गो थ्रू फेजेस. अरेंज्ड मैरिज, उसमें भी यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ये नहीं हो सकता है कि इट विल बी, यू नो, परफेक्ट. वो अपने उतार और चढ़ाव से गुजरेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि मेरा डिसीजन है, ये मैंने चूज किया. अब उसके बारे में दूसरे क्या सोचते वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. एज लॉन्ग एज आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, धीरे धीरे दूसरे लोग भी उसको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे.
1: द मोमेंट वी एक्सेप्ट,
0: द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी डोंट एक्सेप्ट.
1: यानी कि खुद की एक्सेप्टेंस जो है, अगेन सेल्फ वर्थ की बात अगर हम करते हैं कि मेरी क्या कीमत है मेरी अपनी आंखों में, यू नो, मेरे अपने ही एहसास में.
0: क्योंकि वो फिर हमने अपनी सैलरी पर आधारित कर दिया, अपने पोजीशन पर आधारित कर दिया. आई एम सक्सेसफुल इफ आई अर्न 50,000 एंड अबव. अगर मैं उससे कम, मतलब वट एवर जो भी बार हम अपने लिए रखते हैं, क्योंकि अगर मेरा फ्रेंड्स अर्न कर रहे हैं उतना, अगर उससे कम है तो देन मैं आई एम नॉट वर्दी. बट दैट इज नॉट ट्रू.
1: सिस्टर शिवानी, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ ठीक चल रहा है जैसा चाहिए होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली या लोगों के अकॉर्डिंगली वैसा चल रहा है, तब अचानक अकेलापन या यू नो लोनलीनेस जैसे हम कह रहे हैं, या खालीपन की बात कर रहे हैं, एम्प्टीनेस, वो एहसास, और उसमें हम फिर अपने आप को खुद ही यू नो ऐसे डूबते चले जाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल, जैसे हम डिप्रेशन कहने लगते हैं. व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स?
0: तो वही, अपने आप को उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकालने के लिए फिर से अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूं आखिर. ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं था. और ज्यादातर ये जो खालीपन आ जाता है या एक सब कुछ लेने के बाद भी, क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे तो खुशी तब मिलेगी जब हम देते हैं. हैप्पीनेस इज इन गिविंग. Now we are so used to just getting and सब कुछ ले बटोर ले बटोर कर फिर फाइनली क्या.
1: लेकिन जब शिकायत करते हैं तो जब किसी से शिकायत करें कि मुझे लग रहा है कि मैं खाली हूं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए. तो क्या वो मुकाम आ गया है कि अब मैं दे सकती हूँ?
0: वो वी डोंट हैव टू वेट फॉर दैट. क्योंकि सबसे पहली चीज है देना. मतलब क्या, हमने बहुत सारी बाह्य चीजें इकट्ठी कर ली, इकट्ठे बटोरने के प्रोसेस में हमने अपनी आंतरिक स्थिति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. खुशी गायब हो रही है, शांति गायब हो रही है, कोई बात नहीं, बटोरते जाएं, एग्जॉस्टेड हो गए. बाह्य से सारा कुछ इकट्ठा हो गया, अंदर एग्जॉस्टेड हो गए. रियलाइज कब किया? जब पूरा अंदर
1: खाली हो गया था.
0: खाली हो गया, अब उसको भरना शुरू करना चाहते हैं. यू सी, इट शुड हैव हैपेंड, स्टिल हैपेंड, बट देन इट शुड हैव हैपेंड ड्यूरिंग द जर्नी.
1: वही जो हम सफर तय करते हैं.
0: क्योंकि क्या हुआ, आपने जिस चीज के लिए सारी मेहनत की, आज आप उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे. फिर सारा कुछ आ गया, फिर भी उसको एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो संतुष्टता जो आनी थी वो बाह्य चीजों से नहीं आनी थी, लेकिन हमने उनको इकट्ठा करने में हम लगे रहे. वो आनी थी अपनी आंतरिक जो फीलिंग है, वो जब भरपूर होगी, आई नो हु आई एम कनेक्टेड टू दैट सुप्रीम पावर, आई हैव दैट स्टेबल, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, सब कुछ करते हुए हर परिस्थिति में हम इतना उतार चढ़ाव से बीतते हैं कि

0: एक्सटर्नली बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाते हैं. कुछ उसमें भी ये नहीं कि अंदर हमें शांति इकट्ठी करनी है या खुशी इकट्ठी करनी है, लेकिन लीकेज बहुत हो गई है, डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो गया.
1: और इसमें पूरे प्रोसेस में जब अगर हम लो सेल्फ एस्टीम में हैं, उस खालीपन की बात करते हैं, तो कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद पे ही हमें गुमान नहीं रहता, खुद से ही हम ऐसा लगता है कि हम यू नो बेजार हो जाते हैं, अपने खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता, खुद से ही बार बार हम जो हम कह रहे हैं कि खुद को ही हम डांट जब बात भी कर रहे हैं तो खुद को गलत ही ठहरा रहे हैं कि आप ही गलत हो.
0: बिल्कुल, पावर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो है ना वो भी सेल्फ एस्टीम पे बहुत क्लोजली कनेक्ट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं. हमें किसी ने सिखाया ही नहीं अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे करना, किसी ने नहीं सिखाया. हमें ये सिखाया जाता था रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स. नोबडी टॉट मी रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड वी स्टिल नॉट लर्नड इट कि अपने आप को रिस्पेक्ट करना क्या है. अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, नॉट एवरी टाइम ट्राइंग टू बी रूड एंड हार्श ऑन योर सेल्फ. चेंज योर सेल्फ इज फाइन, लेकिन पहले प्यार से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. मैं जो हूं अभी जैसे हूं ठीक हूं, इसमें मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ एक वो भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन फर्स्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ, लव माई सेल्फ, हील माई सेल्फ, अपने आप को ठीक करें. ये जो बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं जो हमने सोचा दूसरों ने दी थी,
1: हमने खुद ही दी हुई,
0: हमने खुद ही दी हुई, इतने सारे वूंड्स लग गए हैं, उनको पहले हील करते हैं. रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर दैट. और खुद को रिस्पेक्ट करने के लिए सबसे ईजी साधन है औरों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें. सबसे सिंपल है.
1: अच्छा,
0: खुद को कैसे रिस्पेक्ट करें? बिकॉज कोई भी व्यक्ति, जैसे आई से आई रिस्पेक्ट कनुप्रिया, व्हाट डज इट मीन?
1: इट मीन्स यू रिस्पेक्ट मी.
0: हाँ, मतलब उसका दो मीनिंग है. आप दो रूप में हो, एक तो आप फिजिकल रूप में हो और एक आप मेरे माइंड में हो.
1: सोल
0: नहीं, आप मेरे माइंड में हो. कनुप्रिया फॉर मी इज एन इमेज, इज अ थॉट. एक आप फिजिकल हो, एक आप मेरे लिए एक थॉट हो. फिजिकल में भी आप बाद में आते हो, पहले आप मेरे लिए एक थॉट में हो. तो व्हेन आई से आई रिस्पेक्ट यू, इट इज नॉट कि आपको फिजिकल पहले मैं रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट कोई ऐसे देने वाली चीज नहीं है. आई कैन गिव यू फिजिकल थिंग्स, लेकिन रिस्पेक्ट आपको इस तरह से नहीं दी जा सकती है ना, वो एक फीलिंग है. तो आपको रिस्पेक्ट देना मतलब सबसे पहले इंटरनली माइंड में जो इमेज है आपकी, उसको रिस्पेक्ट देना. मतलब आप जो हो जैसे हो उसको एक्सेप्ट करना.
1: रिस्पेक्ट इज बेसिकली एक्सेप्टेंस.
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आई एक्सेप्ट यू कि आप जैसे हो मुझे बहुत अच्छा लगता है.
1: इसका मतलब मैं आपको चेंज नहीं करूंगी.
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज द मोमेंट आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर, आई रिस्पेक्ट यू, इट मीन्स आई विल नॉट चेंज.
0: एब्सोल्युटली, आई कैन स्टिल शेयर विद यू. देखो ये एक मतलब, फिर लोग सोचते हैं फिर इसका मतलब हम उन्हें कुछ नहीं बताएं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जब हम आपको एक्सेप्ट पहले कर लेंगे, फिर अगर आपके साथ कोई बात शेयर भी होगी तो यू विल टेक इट इन द राइट स्पिरिट
1: एंड दैट विल नॉट बी क्रिटिसाइजिंग.
0: बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल क्रिटिसिजम नहीं होगा, वो एक बहुत हेल्दी शेयरिंग होगी. लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद
1: लव के साथ होगा, यू नो,
0: एक्सेप्टेंस इज लव. तो सबसे पहले इंटरनली माइंड में जो आपकी इमेज है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करती. इनको ऐसे होना चाहिए, इनको ऐसे होना चाहिए, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए,
1: ऐसे क्यों करता है, ऐसे क्यों करती है,
0: इनको मेरे साथ ऐसे बात करनी चाहिए. दिस इज नॉट रिस्पेक्ट. आप जैसे हैं बहुत अच्छे, लेट बी, उनको वैसा ही रहने दे. तो जैसे ही मैंने आपको माइंड में रिस्पेक्ट दी, इंटरनली रिस्पेक्ट दी, मैंने अपने अंदर रिस्पेक्ट जनरेट किए. इट्स जनरेटिंग दैट फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट. तो वो सबसे पहली रिस्पेक्ट की फीलिंग मुझे ही मिल जाती है. मैं आपको रिस्पेक्ट दी, फिर नेक्स्ट जो आया उन्हें उसी तरह से रिस्पेक्ट दी, थर्ड आया उन्हें रिस्पेक्ट दी. वो तीन तो अलग लोग थे, लेकिन तीन लोगों को रिस्पेक्ट, वो सम्मान देने के प्रोसेस में मैंने अपने अंदर सम्मान की भावना जनरेट की. और जैसे ही सम्मान की भावना जनरेट की, उसका सबसे पहला बेनिफिट
1: मुझे हो गया,
0: मुझे होता.
1: ओके,
0: दिस इज वेरी डीप. और जितना मैं दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करूं, इसका मतलब बदलने की कोशिश करो या क्रिटिसाइज करो, आपको किया, सेकंड को किया, थर्ड को किया, फोर्थ जो आया उसको किया, जितना नेगेटिव हरेक के लिए क्रिएट किया, तो वो नेगेटिव एनर्जी सारी कहाँ क्रिएट हो रही है?
1: मेरे अंदर. इट मीन्स मैं अपने आप को ही सम्मान नहीं दे पा रही हूँ.
0: बिल्कुल, तो वो सम्मान की एनर्जी जनरेट करना या अपमान वाली एनर्जी जनरेट करना, ये मेरी चॉइस है. वो एनर्जी जनरेट होती है मेरे ये याद रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम दूसरे को दे रहे हैं वो पहले मुझे मिल रहा है फिर दूसरे को मिल रहा है. वट एवर आई गिव समबडी एल्स आई एम फर्स्ट गिविंग इट टू माई सेल्फ. सो बी केयरफुल. बी केयरफुल
1: कोई भी तरह की चीज,
0: कोई भी.
1: अगर हम एंगर दे रहे हैं, अगर हम हेट दे रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: अगर हम लव दे रहे कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, ब्यूटीफुल,
0: वो पहले हम अपने आप को दे रहे हैं. तो आज हम सारा कुछ जो दूसरों को दे रहे हैं उसी की इमेज पहले खुद बनते जा रहे हैं. तो इसलिए अगर दूसरों को जैसे रिस्पेक्ट देते जाएंगे तो खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, और फिर जितना दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे उनसे इन रिटर्न
1: रिस्पेक्ट मिलेगी.
0: दैट्स नेचुरल.
1: This is what again another factor is. I want them to accept me, you know, the people around. तभी तो मेरे को सेल्फ एस्टीम मेरी डिपेंड करती है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो मुझे रिस्पेक्ट करें. सो वो हाउ विल आई गेन दैट? वन इज लाइक दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज नॉट.
0: हाँ, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है जितना हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना दूसरे हमें एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे. ये हमारी अपनी ब्लॉकेजेस होती है जो फिर हमें दूसरों से भी दूर लेती जाते
1: हैं, साथ का कंफर्ट लेवल आ जाता है,
0: तो वो हमें बहुत इजी लगता है. और एक और जो बहुत बड़ा कारण बन जाता है लो सेल्फ एस्टीम का, वो है जैसे हमने पहले बात की कि पेरेंट्स हमें जो कहते हैं बाल्यकाल में, बचपन में, आप ये नहीं कर सकते, आपको तो बिल्कुल नहीं आएगा,
1: ये कांस्टेंट हमारे साथ कुछ कुछ बातें,
0: आपके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आ सकते. ये जो हमारे अंदर फीड किया जाता है, और बचपन में पेरेंट्स हमारे के लिए भगवान की तरह, यू नो, एंड भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, तो पेरेंट्स झूठ नहीं बोल रहे, तो जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल संपूर्ण सत्य है. उस संपूर्ण सत्य को मैं बिल्कुल सही रूप में स्वीकार कर लेती हूँ, सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है बहुत देर तक आगे, कई बार जीवन के अंत तक वो अंदर चलता रहता है. वो आवाजें अंदर गूंजती ही रहती है.
1: तभी पेरेंट्स होना है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
0: एक्चुअली आप नहीं कर सकते हो, कुछ भी करने लगेंगे अंदर वो आवाज गूंजेगी, आप नहीं कर सकते हो, ये आपके बस की बात नहीं है, वो कर सकता था, आप नहीं कर सकोगे. तो इन आवाजों को भी हमें धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा. हम उस परिस्थिति को तो चेंज नहीं कर सकते, जो हुई वो हुई, दैट्स ओके, फुल स्टॉप. लेकिन हम अब अपने वर्तमान को चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले वो जो आवाजें अंदर से आ रही हैं, आवाजें मतलब ये थॉट्स जो अंदर से हमारी चल रही हैं, उनको एक्सेप्ट करो. ठीक है कि हाँ ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, कोई बात नहीं, वो अपनी तरफ से सही थे, लेकिन मैं उस बात को अब स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं समझता कि ये सत्य है. फिर वो आवाजें आती रहेंगी, उनको पहले एक्सेप्ट करो, उनको रिजेक्ट नहीं, उनको स्टॉप नहीं करो. रोकेंगे तो वो बिल्कुल और भी ज्यादा जोर से आएंगे. ऐसा कहा, कोई बात नहीं कहा, कोई बात नहीं कहा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूं, अब मैं ऐसा हूं. एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने, उसको एक्सेप्ट करना मतलब लेना, पकड़ना और उसको चेंज कर देना. रिजेक्ट कर देंगे तो वो वहीं की वहीं ऐसे ही रह जाएगी, अंदर ब्लॉक रह जाएगा,
1: वो बार बार आएगी. फिर
0: बार बार मुझे उसको चेंज करना है, तो पहले उसको पकड़ना तो पड़ेगा. तो पहले उस थॉट को कैच कर लो, हाँ मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं हूँ. ठीक है, वो ऐसा समझते थे, लेकिन अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, अब मैंने अपने आप को पहचान लिया, अब मेरे अंदर वो शक्ति है. तो धीरे धीरे वो आवाजें परिवर्तन हो जाएंगी, एंड द न्यू थॉट पैटर्न विल बी सेट, एंड माई सेल्फ एस्टीम विल again build up to a very high level. Makes a lot of difference.
1: Again, you know, like ये जो पूरा हमने आज की अगर हम इस कड़ी को देखते हैं, इसे फिर से गुजरे, तो कई बातें जो है वो सामने आती हैं. सबसे बड़ी बात जो हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं, उसके बीच एक बहुत थिन लाइन है. और कहीं ना कहीं वो सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सम्मान करना, आत्मसम्मान बहुत जरूरी हो जाता है जिस भी दौर में हो हम. एक
0: लेकिन ईगो नहीं, अगेन वो ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट के
1: बीच ही हम बात कर चुके हैं कि भाई मैं ही सही हूं, क्योंकि कहीं ईगो के साथ अटैचमेंट जुड़ जाती है. और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने खुद का, अगेन एक्सेप्टेंस.
0: और हमेशा जब हम ये सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम याद कर रहे हैं, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा वो सेल्फ कौन है.
1: आई द सोल.
0: नहीं तो फिर सारी बातें बेमायने हो
1: जाएंगी, से जुड़ जाएंगी,
0: सारी बॉडी से जुड़ जाएंगी. आई द सोल को पहचान कर, फिर उसकी क्वालिटीज को पहचान कर, उसकी विशेषताओं को पहचान कर, फिर वो इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है.
1: तो ये जो पूरा हमें बात ये समझ में आई कि एंड अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई थिंक वी ऑल लर्न टूडे, इज सेल्फ रिस्पेक्ट. ये आत्मसम्मान कब आएगा? जब हम दूसरे का सम्मान करेंगे. और सम्मान कब कर पाएंगे? जब हम एक्सेप्ट करेंगे. ये बहुत मुश्किल होता है सिस्टर शिवानी, कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते.

0: कोशिश करके देखना।
1: हाँ,
0: इट्स लाइक मुश्किल तब लगता है जब तक करके नहीं देखा।
1: हाँ,
0: कोई भी चीज को ऐसे रिजेक्ट नहीं करे, आप आज ट्राई कीजिए। जितना आप देखिए ना, डिटैच हो जाइए, देखिए दूसरे को करते हुए जो वो कर रहा है, और ट्राई कीजिए मैं इसको कंट्रोल कर लूँ, मैं इसको चेंज कर लूँ। नहीं हो पाएगा, क्यों ना मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ
1: कि वो जो है,
0: हाँ, क्योंकि वो तो फिर भी वैसे ही रहने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट लाइफ बिकम्स इजी फॉर मी।
1: तो कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट मैं उसको दे रही हूँ वो मेरे अंदर से होते हुए जाएगी,
0: दूसरे को मिलेगी,
1: सेल्फ रिस्पेक्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। सिस्टर शिवानी, ये जो पूरी हमारी श्रृंखला है उसमें हर कदम पर, हर कड़ी में हम कुछ नया तलाशते हैं और खुद को पहचानने के सफर में हम और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारी ये जो खुद को पहचानने की जर्नी है उसमें सेल्फ वर्थ यानी कि खुद को कैसे हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे अपनी कद्र कर सकते हैं, आत्मसम्मान की बात की। दूसरे का सम्मान करेंगे तो स्वयं अपना सम्मान भी करना सीख जाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके दिल में भी उठ रही होंगी, हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हों जिनका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो आपका स्वागत है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें फोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन खुद को पहचानने का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आगे फिर मुलाकात करेंगे, अब दीजिए इजाजत।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, मैंने, आपने और मैं समझता हूँ हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ये बात सुनी है कि सेवा जैसा सुख किसी और चीज में नहीं। सेवा में जो सुख है वो ऐसा कौन सा सुख है जो आत्मा में ऐसी तृप्ति लाता है जो कि किसी और चीज से नहीं प्राप्त होता। दरअसल दोस्तों, वो है दूसरों की खुशी। जब हम सेवा करते हैं किसी और की, तो उसे जो खुशी प्राप्त होती है वो खुशी दुआओं जैसा काम करती है, और मुझे या आपको जो वो सेवा को कर रहा है वो दुआ प्राप्त होती है, जिसके वजह से हमें बड़ा अच्छा फील होता है, बड़ा ही सुकून महसूस होता है। और यही अनुभव जो है हमें और भी सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के हमारे एपिसोड में हम एक ऐसे ही सेवक को आपके बीच में लेकर के आए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना NSS नेशनल सर्विसेज थीम के तहत कई युवा जो है भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में NSS से जुड़ करके बहुत सेवा आदि करते हैं। उनमें से एक छत्तीसगढ़ के भोथली गांव की कुमुदिनी साव है, जिन्हें हाल ही में भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया उनकी सेवाओं के लिए। आइए मिलते हैं कुमुदिनी जी से। कुमुदिनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत सारा स्वागत है, एंड सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और हमारे बीच में आए। नमस्कार।
3: नमस्कार सर, जय हिंद आप सभी को।
2: जय हिंद। सो कुमुदिनी जी, जैसे कि हम सब ने अभी सुना आपके बारे में कि आप महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा हाल ही में पुरस्कृत की गई हैं आपके सेवाओं के लिए। NSS कहते हैं जिसे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना या नेशनल सर्विसेज स्कीम। तो हम जानना चाहेंगे कि सोशल सर्विस में, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे शुरू हुआ, क्या आपकी स्टोरी है वो आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, आपकी कहानी।
3: जी सर, पहले तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद जो आपने मंच प्रदान किया कि मैं अपनी बात जनता तक, बाकी लोगों तक पहुंचा पाऊं। जी, मेरा नाम कुमुदिनी साव है, मैं ग्राम भोथली जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे इसी साल 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना उत्कृष्ट स्वयं सेवक पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से प्राप्त हुआ है। जी, इसके बारे में मैं संक्षेप में बताऊं कि मुझे इसे यह अवार्ड पुरस्कार क्यों मिला है। तो हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना एक संस्था होती है, ये हर पूरे देश में हर शिक्षण संस्थानों में ये योजना होती है। ये 11वीं-12वीं से लेकर के उच्च जो संस्थान है, उच्च शिक्षा, उसमें ये एक इकाई है जो मेनली उनका मोटो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, कि समाज सेवा के द्वारा हमको अपना व्यक्तित्व निखारना है। तो इस संस्था में मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी कॉलेज से। मैंने श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनवानी भिलाई से 2022 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। तो 2018 में मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना ज्वाइन किया। वहाँ हम जब बैठते थे, वहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ हम जमीनी स्तर में काम करने से लेकर के हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के मंच प्रदान होते हैं। तो इंडक्शन प्रोग्राम में, पहले तो मुझे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, कॉलेज के इंडक्शन प्रोग्राम में हमें ये बताया गया कि हम पढ़ाई के साथ साथ जो हमारा खाली टाइम बचता है उसमें हम समाज सेवा कर सकते हैं। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हम बचपन से गांव में रहते हुए ऐसा परिवेश था कि हम कुछ न कुछ संस्था से जुड़े होते थे, जैसे स्काउट गाइड हो गया, रेड क्रॉस हो गया, और अदर होते हैं गायत्री परिवार हो गए, ये बहुत सारे संस्था से मिलकर हम काम करते थे। तो बचपन से अंदर में एक था कि कुछ तो करना है, और कॉलेज में पढ़ाई के अलावा ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मुझे दिखी। तो मैंने 2018 में NSS ज्वाइन किया। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि इसमें समाज सेवा होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं जो हम गांवों तक पहुंचाते हैं, ऐसे गांवों को हम इसमें गोद लेके वहाँ का डेवलपमेंट वर्क करते हैं।

0: ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगी और मैंने इसमें काम करना शुरू किया। हमारी पूरी यूनिट बहुत 2010 से काम कर रही है, 2010 में हमारी यूनिट बनी हुई थी। पूरी यूनिट हम मिलकर सोशल एक्टिविटी करने, रेगुलर एक्टिविटीज हमारी डिफाइन होती है, जैसे प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन और मतलब गांवों में ये शिविर लगाना, चिकित्सा शिविर, ये सब रेगुलर वर्क पे आते हैं। तो ये करने के साथ साथ हमें एक अलग चीज करनी होती है, अलग एक फील्ड चूज करना होता है। तो मेरा फील्ड था बच्चों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। तो ये दो फील्ड मैंने चूज किया। जब ये मेरे अंदर तब जागा जब कोविड का दौर था। कोविड के दौर में जब हम सब घर पे थे तो ये एक ऐसी संस्था थी जो युवा वर्ग था, वही ये सब कामों में, सोशल वर्क में एक्टिव हुए। तो उस दौरान मैंने अपने गांव में पहले एक मास्क बांटने का अभियान चलाया था। मेरे पापा जब खेतों में जाते थे तो वहाँ वर्कर्स आते, और गांवों में स्टार्टिंग फेज में कोविड के टाइम पे किसी को आइडिया नहीं होता था कि कैसे क्या होता है कोविड, ये तो ऐसी है बीमारी है या क्या चीज है, कुछ आइडिया नहीं होता था। तो मैंने अपने गांव में अपने खेत में काम करने वाले वर्कर्स के लिए 10-15 मास्क मिले और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस चीज के लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, मेरे यूनिट ने बहुत सराहा कि हाँ आप मतलब अवेयर कर रहे हैं, आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये मैंने अपने फैमिली के लिए किया था कि मुझे मेरे पापा को कोविड ना हो। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, हाँ गांव में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह गैदर होते हैं, मनरेगा वगैरह चलता है, इसमें कोई वो नहीं है, तो बाकी लोगों की तो फैमिली है। तो हमने 4-5 सहेलियों ने मिलकर ये सोचा कि हम पूरा मास्क सिलते हैं बहुत सारे और पूरे गांव में जाके बांट के उनको अवेयर करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे 250 से ज्यादा मास्क घर पे सिले, हमारे 4-5 सहेलियों ने मिलकर गांव के सरपंच से बात करके डोर टू डोर कैंपेन चलाया, उनको अवेयर किया कि हाँ कोविड क्या होता है, उनको मास्क के बारे में बताया। तो वहां से मेरा अंदर एक और कम्युनिटी सर्विस का वो जागा कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, एक अलग से भाव आया कि और कुछ कर सकते हैं। तो पूरे कोविड के दौरान हमारी पूरी यूनिट के जितने भी वॉलंटियर्स है सब एक्टिव रहे, और हमने वैक्सीनेशन ड्यूटी और जितने भी वर्क होते हैं कोविड से रिलेटेड, अवेयरनेस कैंपेन, वैक्सीनेशन ड्यूटी, ये सब किया। तो ये एक फेज था। वैसे ही हम लोग गाँव में जब कैंप वगैरह में जाते थे तो हम देखते थे कि महिलाएं थोड़ी संकोची स्वभाव की होती थी, और मैं खुद गाँव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता होता है कि घरेलू हिंसा एक चीज होती है जो गांव की महिलाओं को बहुत काउंटर करती है, वो अपना आवाज नहीं उठा पाती है। तो हम लोग, हमारी पूरी यूनिट एक काम करती थी जिसमें कैंपों में जब हम कल्चरल प्रोग्राम करते थे तो बहुत सारी महिलाएं गैदर होती थी रात के टाइम पे। तो उस टाइम हम दुर्ग पुलिस रक्षा टीम को इनवाइट करते थे, वे रक्षा टीम आके पूरी महिलाओं को जागरूक करती थी, पूरे बच्चों को बैड टच, फुट टच और हेल्पलाइन नंबर, ये सबके बारे में अवेयर करती थी। तो ऐसे उनके महिलाओं में थोड़ा आत्मविश्वास आया गांव की महिलाओं में, क्योंकि हमारा कैंप हर साल अलग अलग गांव में लगता है। तो ये हर साल हम दुर्ग पुलिस हमारी आती थी, अलग अलग गांव में ये कैंपेन चलाती थी, तो इससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस आया। तो ऐसा हमारा सोशल सर्विस करने का वो जगह, और इन्हीं दो मेन काम के वजह से मुझे महामहिम जी से राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जिसमें मैं मानती हूँ कि इसमें हमारे पूरे यूनिट का हाथ है, हमारे सब एक एक वॉलंटियर का हाथ है, और जिन्होंने मुझे गाइड किया उनका भी हाथ है। ये तो मेरी जर्नी थी।
1: तो कुमुदिनी जी, जो आपने कहानी सुनाई आपकी, वो कहानी मैं समझता हूँ कोविड के पहले से शुरू हुई होगी, लेकिन जो उसमें एक्सेलरेशन है या उस गाड़ी में जो स्पीड पकड़ी वो कोविड के दौरान पकड़ी, लेकिन उसकी कहानी की शुरुआत शायद बहुत बचपन में हुई होगी, जब आपके माता पिता ने आपको ऐसे संस्कार दिए होंगे जहाँ पर खुद से ज्यादा किसी और के बारे में सोचना, किसी और के लिए कुछ कर पाना, उसके लिए समय निकालना, ये सब आपके अंदर पहले से था। तो आपका बचपन कैसा रहा?
0: जी बिल्कुल, ऐसा बोलते हैं कि अपने आसपास का परिवेश जैसा होता है, जैसा माँ बाप का संस्कार होता है, वैसा बच्चों में कौन दिखता है, ये तो आप बिल्कुल आपने जो कही बात में मैं मानती हूँ। जी मेरा, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, हम 8 लोग हमारे परिवार में रहते हैं। तो हमारा परिवार शुरू से ही मतलब शिक्षित परिवार था, हम गांव में रहते हैं, तो वहाँ जब भी कुछ एक्टिविटी होती थी तो घर वाले कभी ऐसा सोचते नहीं थे, कि वो बोलते थे कि जाओ जो करना है समझो, समाज को वो करो। हमारे घर में भी सब सोशली एक्टिव है, मेरी बड़ी मम्मी जो है वो टीचर है, तो उनसे भी

0: कुछ सीखने मिला। मेरी मम्मी जो भी है वो भी थोड़ा बहुत कम्युनिटी सर्विस घर के आसपास करती थी, तो उन सबको देख देख के मैंने सीखा कि हाँ दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सब चीजें करनी चाहिए। और पापा भी बहुत सोशली एक्टिव रहते हैं, तो उनसे भी मैंने नेतृत्व करने का गुण सीखा कि हाँ समाज के बीच जाके कैसे उनकी हेल्प करते हैं, ये सब चीज करते हैं। तो बचपन मेरा वही गुजरा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव के आसपास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ, हमारे गांव में सिर्फ पांचवी तक की कक्षाएं हैं, तो मैंने तीसरी से पांचवी कक्षा गांव के सरकारी स्कूल में की है। उसके बाद फिर मिडिल स्कूल के लिए मैंने हमारे गांव से 2 किलोमीटर की दूर शासकीय माध्यमिक विद्यालय रूदा में मैंने अपना पूरा मिडिल स्कूल बिताया है। उसके बाद फिर 9वीं से 11वीं के लिए फिर तीसरे गांव जाना पड़ता था, वो भी गांव से 2 किलोमीटर दूर ही था, वहां से मैंने हायर स्टडीज की है। तो मेरी पूरी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए हम सब सहयोग की भावना, मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि गांव में रिसोर्सेज बहुत कम होती है, तो हम आपस में साझा करके रहना, आपस में एडजस्ट करके रहना और आसपास से मेलजोल में रहना, ये अपने आप अंदर आ जाता है गांव में रहते हुए। इसके बाद मैंने हायर स्टडीज के लिए जो तकनीकी शिक्षण संस्थान शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस जुनानी की लाइन में एडमिशन लिया और वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो प्रारंभिक शिक्षा तो मैं मानती हूँ कि हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं उनका भी ये योगदान है कि उन्होंने हमको ये परस्पर मेल जोल ये भावनाएं हमारे अंदर विकसित की।
1: ये जो आपने बात कही कि गांव में भले ही साधन कम होते हैं लेकिन लोगों के दिल में एक दूसरे के साथ मिल बांट करके रहना या साझा जीवन जीने की जो कला है वो गांव में सीखने को बहुत सहज प्राप्त होती है। जब आप ये आपने जब अपना उच्चतम शिक्षा के लिए जब आप शहर की तरफ गए, जैसे आपने बताया कि आप लाइफ की ओर गई, लेकिन उसके पहले की जो सारी शिक्षा दीक्षा थी आपकी वो गांव में हुई, तो जो परिवेश का जो डिफरेंस दिखा होगा आपको, एक गांव का वातावरण, गांव का व्यवहार या गांव का जो एक माहौल होता है उससे बिल्कुल भिन्न रहा होगा, प्लस पढ़ाई भी डिफरेंट रही होगी, है ना? तो इन दोनों के बीच में आपने तालमेल कैसे किया?
0: जी सर बिल्कुल, जब मैं गांव से निकल कर जब मैं शहर में गई पढ़ने के लिए, तो वहाँ मैं हिंदी माध्यम से थी, मतलब हिंदी मीडियम से मेरा पढ़ाई हुआ है और इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। तो शुरुआती 2-3 महीने तो ऐसा लगा था कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, यहाँ सब बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम हिंदी मीडियम वाले 3 बच्चे हैं पूरे क्लास में, कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे। तो उसके बाद हमने सीखा कि नहीं, कुछ भी चीज सीखने की ललक अगर हो तो कोई भी चीज आपके किसी भी चीज के लिए बैरियर नहीं बनती। तो वहाँ 2-3 महीने लगा एडजस्ट करने में, लेकिन आसपास रहते हुए पढ़ाई करते हुए हमने कॉम्प्लीट किया और अपने मतलब इन्वायरमेंट में ढल गए थे। लेकिन एक चीज हमने देखी कि शहरों में रिसोर्सेज बहुत है, गवर्नमेंट की सारे स्कीम्स चलती है, ये सब अप्रोच है, लेकिन गाँव में हम बच्चों को आइडिया नहीं होता, हम कैरियर गाइडेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने अभी अपने गांव में, मैंने अपने गांव में जाके बच्चों को मतलब देखा ये सब, उनको बताया कि ये स्कीम होती है जितना हो सकता था, और अभी मेरा आगे का ये स्कीम है कि मैं गांव में जितनी रिसोर्सेज होती है वो, मतलब शहरों में जितनी रिसोर्सेज होती है वो अपने गांव में जोड़ सकूँ। तो शुरुआती 2-3 महीने तो एडजस्ट करने में लगा, लेकिन हाँ जब सीखने की ललक हो गई उसके बाद पूरा हो जाता है एडजस्ट।
1: आपने जो ये बात बताई इसमें 2 चीज मुझे समझ में आती है, एक तो ये कि व्यक्ति के अंदर खुद का हौसला होना चाहिए कि चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसका सामना करने के लिए अपने अंदर आत्मिक शक्ति होनी चाहिए कि हम इसका सामना कर सकते हैं और इस परिवेश में भी हम खुद को ढाल सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है और ये जो आत्मिक शक्ति जो है ये बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि चाहे हम कैसी भी परिस्थिति से निकल के आए हैं, अगर हम पहुंच गए हैं तो जरूर उस परिस्थिति ने हमें इतना काबिल तो बनाया है कि हम इस नई परिस्थिति में आ सके। तो ये बहुत पॉजिटिव मैसेज आता है आपके जवाब से, लेकिन मुझे यहाँ ये जानने का मन करता है कि आपके अंदर ये खूबी है कि आप इस माहौल में ढल गए, लेकिन मान लीजिए आज के दिन कोई बच्चा किसी ऐसे परिस्थिति, चाहे वो दक्षिण भारत में हो या उत्तर भारत में हो या किसी भी देश में किसी भी हिस्से में हो, वो जब गांव से शहर की ओर जाता है पढ़ने के लिए या रोजगार के लिए, कई बातों का वो सामना करता है, जैसे कि लोग अलग होते हैं।

0: हैं, थोड़े से उनके मिजाज अलग होते हैं, खान पान रहन सहन थोड़ा अलग होता है, भाग दौड़ थोड़ा ज्यादा होता है शहरों में, ऐसे में आप उनको कौन सी दो तीन बातें बताना चाहेंगे जिससे कि उनको ढलने में आसानी हो?
1: इन इस सिचुएशन के लिए मैं यही कहूंगी कि इंसान के अंदर तीन चीज अगर हो तो वो किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है। पहला है उसको खुद का आत्मविश्वास, जो आपने कहा कि अगर व्यक्ति में खुद का आत्मविश्वास है कि नहीं मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी सबके जैसा हूँ, बस मुझे थोड़ी सी उसकी जानकारी नहीं है, तो आस पास से जानकारी जुटाएं और उस परिवेश को समझने की कोशिश करें तो आप उस परिवेश में ढल पाएंगे। तो ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दूसरा चीज ये है कि हाँ, परिवेश भले अलग हो सकता है लेकिन उनमें सीखने की जो ललक होती है, ये चीज दूसरों से आपको अलग बनाती है, ये आपने भीड़ में सबके साथ रहते हुए आपको ऊपर उठाती है। तो दूसरी चीज सीखने की ललक आप में होनी चाहिए कि आप किसी भी परिवेश में जाएं तो वहाँ से सीखें उसके परिवेश में क्या अच्छा है, वो चीज अपने ऊपर आत्मसात करें और ये भी देखें कि क्या चीज बुरा है उसे ना मना कहें। तो दूसरी चीज मैं कहूंगी कि आत्मविश्वास, दूसरा सीखने की ललक, ये दो चीजें बच्चों के अंदर होनी चाहिए तो वो किसी भी परिवेश में ढल सकते हैं। और तीसरा, अपने आप को कभी भी कमतर ना, अपने आप को निराश नहीं करना कि मैं कम हूँ या मुझे नहीं आएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ ये अलग है वो अलग है। ये जो शिकायत करने वाला जो गुण होता है, मतलब शिकायत करने की जो प्रकृति होती है, ये हमें हताश करती है। तो कभी भी हताश ना होए, क्योंकि भगवान जो भी करता है, ईश्वर जो भी करता है, वो सोच समझ के करता है। तो ये मान के चले कि हाँ, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इससे मुझे क्या सीखने मिलेगा। तो ये तीनों चीज में अगर सामंजस्य बनाकर चले कि आत्मविश्वास, अपना खुद को सीखने की ललक और अपने को निराश ना करना, सब में पॉजिटिव अप्रोच रखना कि सब चीज अच्छा हो रहा है, तो ये तीन चीजें व्यक्ति में हो तो वो दुनिया में कहीं भी जाके एडजस्ट हो सकता है, किसी भी परिवेश में ढल सकता है, मुझे ऐसा लगता है।
0: ये जो तीन बातें आपने बताई, ये इतनी बेशकीमती तीन बातें आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखी है। श्रोता साथी, आप जो भी सुन रहे हैं आज, अगर आप भी इस तरह के किसी माहौल में है जहाँ पर आप नए नए आए हैं और आपको एडजस्ट होने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो ये तीन बातें जो कुमुदिनी जी ने बताई उसको याद रखने की आवश्यकता है कि अपने भीतर आत्मविश्वास होना चाहिए, नया सीखने का ललक होना चाहिए और जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा भला है, ये समझ लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो आगे बढ़ना है वो मुश्किल बिल्कुल ही नहीं होता और ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो जाता है, जैसे कि कुमुदिनी जी के साथ हुआ। आज कुमुदिनी जी अपने आप में न केवल अपने गांव पोथली के कितने ही कन्याओं के लिए, कितने ही युवाओं के लिए एक मार्ग प्रदर्शिका बनी है, लेकिन उनको देख करके कितनों के अंदर ये उम्मीद जगी है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जीवन में जिससे मैं भी, जैसे कुमुदिनी जी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऐसे उन्हें भी सम्मानित किया जाए, चाहे वो कोई सा भी सम्मान। लेकिन व्यक्ति अगर लक्ष्य रखता है तभी उसकी ओर आगे बढ़ता है, और लक्ष्य रखने के लिए अगर उसके आसपास ऐसे प्रेरणादायी लोग होते हैं तो वो लक्ष्य क्रिएट कर पाना उनके लिए बड़ा ही इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। मोदिनी जी, आपके लिए अगर मैं पूछूं वर्तमान में या भूत में कोई ऐसा व्यक्तित्व जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, कौन सा है वो व्यक्तित्व?
1: मैं ऐसे एक व्यक्तित्व तो नहीं बता सकती हूँ, मैं अपने आसपास के लोगों को, जहाँ मैं जाती हूँ या मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, मुझे उसमें जो चीज अच्छी लगती है, ये चीज मैंने अपनी माँ से सीखा है, मम्मी से। वो कहती थी कि बचपन से ये कहती थी, जिस चीज जो चीज अच्छी लगती है वो खुद एक्सेप्ट कर लो। ये एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी कि बचपन में मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब थी, और जब कॉम्पिटिशन होते थे हैंड राइटिंग वाली, तो गाँव में ऐसे वो नकल लिखवाते थे, तो मैं देखती थी सबका राइटिंग अच्छा है, मेरा खराब है, नहीं बनता है, फिर मैं बहुत लिखती भी नहीं बनता था, मैं ऐसा कर निराश हो जाती थी कि मुझसे नहीं बन रहा है। तो उससे मम्मी ने मुझे एक बात कही थी कि जिसका जो अक्षर अच्छा लग रहा है, तेरे को पसंद आ रहा है, वो अक्षर बनाने की कोशिश करो, जिस चीज की जो अच्छा लगता है किसी भी चीज में उसको खुद एक्सेप्ट कर लो। तो ये चीज मैंने गांठ बांधी, और अभी मतलब उसके बाद फिर मैंने जो जो जिसका जिसका जो जो अक्षर अच्छा लगता था मैं उसे बनाने की कोशिश करती थी। इसके बाद मेरी हैंड

0: बहुत ज्यादा अच्छे से सुधरी, तो ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर ली। और अभी भी मेरा कोई एक प्रेरणा स्रोत मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे आसपास से जहाँ किसी से भी कुछ भी सीखने मिलता है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उनसे सीख लेती हूँ। तो सभी आसपास की चीजें, प्रकृति और जो मेरे आसपास लोग हैं, सभी प्रेरणा स्रोत हैं। बस एक नजरिए की बात होती है कि आप उससे अच्छा चीज सीख रहे हैं या बुरा चीज।
1: कौन सी बात मेरी जहन में जगह बनाती है वो डिपेंड करता है हमारी सोच पे, कि हमने हमारी जहन में किस चीज को जगह दी है, किसी की अच्छाई को या किसी की बुराई को, या कौन सी चीज को मैंने जगह दी है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपकी माता जी ने बहुत सुंदर एक प्रेरणा दिया आपको कि जो भी अच्छा नजर आता है उसको ग्रहण करने का प्रयास करो और वही जीवन में सफलता का कारण बनता है। अक्सर ये देखा गया है कि माएं जो हैं वो अपने बच्चों को इस प्रकार के जब संस्कार रखती हैं वो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। चाहे वो शिवाजी का उदाहरण लीजिए या विवेकानंद जी का उदाहरण लीजिए या आपका ही उदाहरण ले ले, आपकी माता का जो संस्कार, जो शिक्षा थी वो आपको आगे बढ़ाती है। ऐसे में आज के परिप्रेक्ष्य में जब शायद माताएं जॉब आदि कर रही हैं या घर का काम संभाल रही हैं, तो शायद बच्चों के प्रति टाइम उतना नहीं दे पाती और बच्चे भी मम्मी पापा का उतना नहीं सुनते क्योंकि वो शायद फोन और बाकी की चीजों में बहुत बिजी होते हैं। तो पेरेंट और चाइल्ड, इसका जो एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप है अभिभावक और बच्चों का, उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, शायद मैं थोड़ा कह रहा हूँ लेकिन सुनने वाले कई सोचते होंगे, बहुत ज्यादा दरार आई है या दूरत्व आया है। और हो सकता है मैं सोचता हूँ बहुत ज्यादा दूरत्व आया है, लेकिन हो सकता है आज भी ऐसा है। आपका क्या मानना है?
0: ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज का जैसा परिवेश बन चुका है, एक ओपन माइंड एक वर्ड यूज होता है हम टीनेज में, जब भी हम कॉलेज जाएं या हम मेरे आसपास जब भी पढ़ने जाएं, जब यूथ इकट्ठा होते हैं तो ओपन माइंड ये एक वर्ड होता है। ओपन माइंड होने का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं, उनको लगता है ओपन माइंड होने का मतलब ऐसे कूल दिखना, जो आजकल रील्स में जो मटेरियल दिखाया जा रहा है या इंटरनेट में जो प्रचलन में चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेने से हम कूल बन जाते हैं। और इसमें क्या है कि अभिभावकों पर बच्चों का दबाव पड़ जाता है। जैसे हम बच्चे हैं, हम आसपास की चीजें ऐसे देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अभिभावक भी वैसे बने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से रहे या ऐसा बात करे। हम नॉर्मल जो घर में बात करते हैं वैसा बाहर बात ना करें। घर में अगर हम अपने मदर टंग में बात करते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ी में बात करती हूँ, तो बाहर जाके ऐसा हो जाएगा कि नहीं मम्मी आप हिंदी में बात करो। ये सब चीजें दिखावा, पूरी चीजों का मतलब है ये दिखावा आवरण आज के परिवेश में आ गया है। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये सब चीजें जो मटेरियल हम सोशल मीडिया जो बोलते हैं इसके कारण आया हुआ है। तो मैं एक ही अपील कर सकती हूँ जो युवा हमें सुन रहे हैं या अभिभावक हमें सुन रहे हैं कि ये जो इंटरनेट में जो प्रचलित हो रही है ये सब दिखावे वाली चीजें वो ना करें। आपसे आपको जो अच्छा लगता है, सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो दिखाएं। अभिभावक से वैसा बात ना करें कि हाँ मेरी अभिभावक कूल है ये है वो। जैसा आपके अंतर में रिलेशन है वैसा ही आप बना के रखें तो ये चीजें थोड़ी कम हो सकती हैं। और युवाओं से भी ये अपील करती हूँ कि वो ऐसा कूल बनने के चक्कर में जो गलत आदतों में पड़ जाते हैं उसमें बिल्कुल ना पाए। जैसे कोई सिगरेट पीने से कोई कूल नहीं हो जाता है, वो बुरी चीजें हैं, तो ये सबसे दूर रहे। ये कूल वो होता है जो अपने लिए खड़ा हो, अपने लिए इज्जत बनाए, अपने समाज में एक जगह बनाए और दूसरों की मदद करे। तो ये दिखावे वाली जो आचरण है उसको हम दूर करने का प्रयास करें, यही मेरी युवाओं से अपील है।
1: श्रोता साथियों, आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम और जिसमें आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे बीच में है कुमुदिनी साहू जी, जो कि छत्तीसगढ़ के खोतरी नाम के छोटे से गांव से आती हैं। लेकिन ये छोटे से गांव की सुपुत्री आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, क्यों? उनके समाज सेवा के सद्भाव के लिए। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं और उसमें उन्होंने अभी बहुत एक बड़ी बात कही कि ओपन माइंड होना, अर्थात एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। ओपन माइंड मतलब ये नहीं कि जो भी आपने टीवी में या फिल्मों में या फोन पे जो भी आप देखते हैं उसको तुरंत ही

0: ही कर लेना। पहले उसको देखिए, समझिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि इससे मेरा और मेरे संस्कृति का क्या होने वाला है, भला या नुकसान, और उसके बाद उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया, स्मोकिंग या सिगरेट पीना या बीड़ी पीना। धूम्रपान जो है उससे कोई भी व्यक्ति कूल या फैशनेबल नहीं बन जाता, ये व्यक्ति की मूर्खता का परिचायक होता है, ये उसकी कमजोरी का परिचायक होता है कि वो कैसे अपने परिवेश में अपनी परिस्थितियों पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस वजह से कुछ ऐसी चीजों का आधार ले रहा है जो उसके लिए ही नहीं अपितु आसपास के लोगों के लिए एवं पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। कुमुदिनी जी, एक चीज मुझे ये यहाँ आप समझाइए कि जैसे युवाओं की आपने बात की, उनके पास पढ़ाई करना है, जॉब करना है, साथ में फिर सोशल लाइफ भी है उनका, टीवी, फोन, व्हाट्सएप आदि आदि, ये सब बहुत कुछ है। ये सब होते हुए आप भी एक युवा है, आपने कैसे अपने लिए समय निकाला कि भाई मुझे समाज सेवा करना है? एक तो है कि आपके माता पिता के लिए संस्कार है जो कि मैं समझता हूँ सभी युवाओं को प्राप्त है, और भारत में तो स्पेशली सेवा ही दान धर्म पुण्य ये सब में सेवा को बहुत बड़ा दर्जा मिला हुआ है। तो सभी युवाओं को ये ज्ञान तो है कि ये करना अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए समय कैसे निकाले, खुद को इसके लिए तैयार कैसे करें?
1: इस सब के लिए मैं जो करती थी पहले, रील हो गया, फोन हो गया, ये सब की वो जब नई नई चीजें आती हैं, मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैं गांव में जब रहती थी तो नेटवर्क का बहुत इशू रहता था, तो इंटरनेट की उतनी पहुंच थी नहीं, तो मैं इन सब चीजों से बहुत बची हुई थी। ये सब चीजें मैं जब कॉलेज में गई तब मेरे हाथ में फोन आया, तो उस टाइम मुझे तो बहुत कम लत लगी थी, लेकिन आजकल का परिवेश ऐसा है कि गांव-गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी है और बच्चे के हाथ में फोन है, तो इस लत से बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये चीज हम ये कर सकते हैं कि बच्चों का एक कम्युनिटी बना के या युवाओं को जो रियल हैप्पीनेस है, जो असली खुशी है, उससे परिचय करें, जो फोन में देख के उनको रील्स देख के या कुछ भी चीजें देख के हाँ ये अच्छा हो रहा है उसको खुशी मिलती है, लेकिन अगर हम उन्हीं युवाओं को उससे बाहर निकालकर मेन समाज में कुछ अच्छा काम करने को कहें, तो उनको जो अंदर से खुशी महसूस होती है उनको जगाने की जरूरत है। हमारे कॉलेज में इतने सारे 4,500 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से एनएसएस में हम करीब 500-600 बच्चे रजिस्टर होते थे। हम जब गांव में जाते थे, वहां का परिवेश देखते थे और उनके लिए कुछ करते थे, तो हमारे अंदर से खुशी होती थी कि हम कुछ अलग कर रहे हैं और हमें ये सब चीजें करनी चाहिए, इसमें असली खुशी है। तो हम मोबाइल के लत से और ये सब दिखावे से बाहर आके जितने युवा ये एक बार भी जिन्होंने किया है वो सोशली एक्टिव हो जाता है। तो युवाओं को बस एक ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनको असली खुशी से परिचय करवाए, और ये तभी हो सकता है जब वो किसी कम्युनिटी से जुड़े या एक साथ वैसा मंच बने, क्योंकि अगर घर में वो रह के फोन वगैरह चलाएंगे तो उससे तो उनको बाहर नहीं लाया जा सकता, उन्हें एक कम्युनिटी के थ्रू उनको बताना पड़ेगा कि रियल हैप्पीनेस क्या है। जैसे मुझे एक फिर से एक इंसिडेंट याद आया है कि हमारे एक दोस्त है, यहाँ मैं जब बिलासपुर में आगे की पढ़ाई करने के लिए आई तो एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ था। हमारे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने कभी ब्लड दिया नहीं था, उनमें से डर का भाव बैठा हुआ था, उनमें कभी भी ऐसा कोई भी सोशल एक्टिव को सोशल अवेयरनेस का काम नहीं किया था। तो मुझे पता चला कि यहाँ हमारी जो एक और नेशनल अवॉर्डी है अलीसा अंसारी, उन्होंने कैंप लगाया था, तो मैंने सभी दोस्तों से कहा कि चलो यार एक बार दे के आते हैं ब्लड, और उन लोग को से क्यों मतलब खून निकाल के देना है, उसमें एक अवेयरनेस ही था, उसको हमने अवेयर किया कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, तुमको कुछ नहीं होगा, दो दिन में ब्लड फिर से बन जाता है। तो वो तो फिर भी कुछ लोग जाने तैयार नहीं थे, तो उसमें एक गिफ्ट वाउचर रखा गया था कि जो भी ब्लड देगा उसको ब्लूटूथ ईयरफोन दिया जाएगा। तो वो ऐसा हमने उनको बोला तो बहुत सारे लोग चले गए, हम गए वहां जाके वो बोले कि नहीं नहीं नहीं दे पाएंगे, डर लग रहा है, खून निकलेगा, ये है। उनको हमने एकदम मोटिवेट किया, बैठाए, उनसे रक्तदान करवाया। एक बार जब उन्होंने रक्तदान कर लिया तो उन्होंने खुद मैसेज करके और सामने भी उनको थैंक यू बोला, और बोला कि पता नहीं अंदर से खुशी हुआ देखे कि हमारे वजह से किसी की जान बच जाएगी, अब हर 3 महीने बाद हम ब्लड डोनेशन करेंगे। तो इससे एक इंसिडेंट याद आता है कि हाँ, हम युवाओं को अब उस चीज से बस एक बार अवगत कराना है, फिर वो युवा खुद ही सोशली एक्टिव

0: जाएगा, तो उनके लिए कम्युनिटी बनाने की जरूरत है।
1: ये आपने कितना प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसको बस थोड़ा सा मदद करने की आवश्यकता है, आगे से वो खुद ही अपनी क्षमता से आगे बढ़ सकता है। जैसे आपने बताया कि युवाओं में ऑलरेडी चाह है, ललक है कुछ अच्छा करने की, केवल हमें एक कम्युनिटी, एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करना है जिसमें कि उनको अपने आप रुचि आए, और वो रुचि एक बार अगर जगा दी गई तो वो रुचि जो है लंबे समय तक उस व्यक्ति का साथ निभाएगी और उसको कई फिजूल चीजों से बचा लेगी। तो मैं समझता हूँ जो भी आज ये सुन रहे हैं, या तो खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए या ढूंढिए कोई एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, उससे जुड़िए। जो भी सामूहिक रूप से किया जाने वाला समाज सेवा है उसमें जुड़िए। अकेले करने का प्रयास करने के लिए अंदर बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। कई बार शुरू में ये डिफिकल्ट हो सकता है, मुश्किल हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर 10 लोग कोई काम कर रहे हैं उसमें जाके थोड़ा सा हाथ बटाने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, और एक बार आपने हाथ बटा लिएगा तो आपका हाथ अपने आप आगे बढ़ता जाएगा औरों की मदद करने के लिए, और आपके लिए एक नया जीवन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसी जीवन के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए कुमुदिनी जी ने कितने ही लोगों तक प्रेरणा पहुंचाई है, कितने ही लोगों की सेवा की है, वृक्षारोपण किया है, रक्तदान कराया है, कोविड में मास्क बांटे हैं। आप जिस प्रकार की सेवा का सोच रहे होंगे हर प्रकार की उन्होंने सेवा की, घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, या उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुई जो भी समस्याएं होती है उनको लेकर के जागरूक करना, ये सब कुमुदिनी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर NSS नेशनल सर्विसेज स्कीम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना के तहत किया। और आज मैं समझता हूँ कि कुमुदिनी जी के पास ढेरों ऐसी कहानियां हैं, ढेरों ऐसे अनुभव हैं जहाँ पर लोगों ने उनसे प्राप्त जो लाभ है, जो खुशी उनको मिली है, उसको ही दूसरों की खुशी जो ओरिजिनल है उसको देख के जो आप खुश होते हैं उसको उन्होंने नाम दिया है रियल हैप्पीनेस, सच्ची खुशी जो कि सेवा से आती है। दोस्तों आप भी रेडियो मधुबन में फोन करके या हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी सेवा में बिजी हैं, कौन सा सेवा करना आपको अच्छा लगता है, क्या वो प्रकृति की सेवा करना है या लोगों की सेवा करना है, बुजुर्गों की सेवा करना है, या कौन सी सेवा, या अगर आप करना चाहते हैं और आपके पास पता नहीं कहाँ से शुरू करें ऐसा उलझन है, तो आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं। और जैसा कि रेडियो मधुबन में अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे कि एक कार्यक्रम ये है यशस्वी भारत, ऐसे ही कितने ही अनोखे प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत आपको मार्गदर्शन मिलती रहेगी। कुमुदिनी जी, आप भारत के एक ऐसे राज्य से आती हैं जिस राज्य का अकेला नाम नंबर से शुरू होता है, राइट? छत्तीसगढ़ जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका नाम 36 है, 36। बाकी भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं जिसका नाम किसी नंबर से शुरू होता है। आप छत्तीसगढ़ के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: जी, आपने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जब भी हम नेशनल कैंप वगैरह अटेंड करने जाते थे वहाँ पूरे भारत के कोने कोने से सभी राज्यों से हमारे वॉलंटियर्स आते थे, तो मैंने देखा है कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक इमेज बना हुआ है पूरे इंडिया के अंदर कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, हम हमारे राज्य में आदिवासी बहुत है, और हम उनके मतलब दिमाग में अभी भी ये चीजें बनी हुई है कि हम पत्ते पहन के घूमते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ही संस्कृति संपन्न राज्य है। हम अपनी संस्कृति को अभी भी संजो कर रखे हैं और बचा कर रखे हुए हैं। आप कभी छत्तीसगढ़ घूमने आए या कभी देखने आए तो आपने इसमें इतनी सारी विविधताएं दिखेगी। ऐसा बोलते हैं घाट घाट में पानी बदलता है, ऐसा माहौल आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ के नाम के बारे में बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा। ऐसा बोला जाता है कि पुराने जमाने में, राजाओं के जमाने में, रतनपुर राज्य में 18 गढ़ और जो रायपुर राज्य होते हैं उसमें 18 गढ़, तो दोनों को मिला के पूरे 36 किले थे। तो 36 किले के नाम पर हमारे राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ऐसा फेमस है, धान के कटोरे के लिए हमारे राज्य में धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उन्हें धान का कटोरा भी कहते हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़

0: बहुत ही ज्यादा संस्कृति से संपन्न है। आप एक बार आइए यहाँ, न युवाओं के प्रतिभाओं की कमी है, न संस्कृति की कमी है, न पर्यटन की कमी है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक संपन्न राज्य है। यहाँ के लोगों में जो प्रेम भाव है वो आपको यहाँ आकर अनुभव करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आप छत्तीसगढ़ आएंगे तो आप छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, तो ये हमारी संस्कृति और हमारे जो लोगों का प्रेम भाव है, इसलिए लोगों के मन में ये भाव आ ही जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। बस हमें अभी प्लेटफॉर्म मंच वगैरह के बारे में बहुत ही कम पता होता है, जिसके कारण हम नेशनल लेवल पे हम अपना प्रतिभा नहीं दिखा पाते हैं। तो बस ये चीज की कमी हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो हम धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। एक बार छत्तीसगढ़ आके विजिट जरूर करिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: और जैसे आपने अभी सुना छत्तीसगढ़ के बारे में, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में भी आप तभी जान पाएंगे जब आप वहाँ खुद जाएंगे। किसी भी राज्य में जाकर के जब आप वहाँ के जनमानस से मिलते हैं तभी वहाँ की संस्कृति का सही पता चल पाता है। केवल स्थूल संस्कृति जो होती है, जैसे कि बिल्डिंग आदि, ये सब मंदिर, महल, किले आदि, ये देखने में आपको जो चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, वो कुछ ही हद तक आपको उस राज्य के बारे में बताती है। दरअसल असल उस राज्य का जो टेस्ट है दोस्तों, वो तभी मिलता है जब आप वहाँ के लोगों के साथ जाके मिलते हैं। तो ये जो हमारा भारत देश है जिसके पास इतनी विविधता है कि आपका कहते हैं ना 13 पर्व है लेकिन 12 महीने हैं, मतलब इतनी विविधता है कि आप कभी भी बोर तो नहीं हो सकते। आप अपने ही राज्य में घूमना अगर शुरू करें तो भी आप उसको कभी पूरा शायद ही कर पाए, तो भारत तो फिर कितना बड़ा देश है। ऐसे में कुमुदिनी जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है भारत में इतनी विविधताएं हैं, चाहे संस्कृति की विविधता हो, भाषा की विविधता हो, लोगों के रहन सहन, पहनावे, हर प्रकार से इतना विविध है, लेकिन आपके नजरिए से कोई एक चीज अगर पूरे भारत को एक बनाती है वो कौन सी चीज है जो हर जगह एक जैसी ही लगती है आपको?
0: जी, पूरे भारत में जो एक चीज है वो है कि देश के लिए निष्ठा। जो हम भारत के कोने कोने में भी जाएं, अच्छा बोलते हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। तो अगर भारत के लिए कुछ चीज होती है तो पूरा देश एक हो जाता है। इसे हमें देश के प्रति निष्ठा कह सकते हैं कि हम भले राज्य अलग होंगे, भाषा अलग होगी, हम सभी की संस्कृति अलग होगी, लेकिन पूरे देश में, जैसे एग्जांपल लेके क्रिकेट जब होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो पूरा देश यूनाइट हो जाता है। तो ये होती है एकता, अपने देश के प्रति निष्ठा। तो ये पूरे भारत में आपको एक जैसी ही मिलेगी, भले इसमें विविधता है लेकिन हमारे में एकता है, अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता, ये हमारे भारत का मेन मोटो है, ऐसा मुझे लगता है।
1: और अगर इसी में एक और कदम आगे जाए तो इस पूरे भारत को अगर आपको यशस्वी बनाना है, ग्लोरियस बनाना है, तो आपके लिए ऐसा कौन सा महामंत्र है, कौन सी चीजें हैं जिनको करने से आपको लगता है हर व्यक्ति भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान दे पाए?
0: सबसे पहले शुरुआत मुझे जैसे लगती कि संदूकों को ना बदलकर स्वयं को बदलना। अगर हम अपने ऊपर काम करें, स्वयं को ऐसा बनाए कि हम कुछ अपने व्यक्तित्व को निखारे, तो ऐसा अगर हर व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि पूरा देश ही बदल जाए। उसमें देश प्रेम और समाज में कुछ करने की ललक, ये सब तो होता है, लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि वो खुद पे भी काम नहीं करते हैं। हमारे आज युवा भारत की सबसे बड़ी यही समस्या है कि वे खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए गलत है। एक मानव संसाधन जो हमें अपने देश को उन्नत बनाती है, वो हम मानव संसाधन कम हो रहे हैं। देश में जनसंख्या बढ़ रही है, देश में युवा भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी क्यों पूरे विश्व में, हमारी जनसंख्या, अब हमें पता चले कि हम चीन को भी काउंटर कर चुके हैं, हमारी जनसंख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक है, लेकिन क्यों हम पिछड़े हुए हैं? क्योंकि हम मानव संसाधन नहीं बन पाए। और मानव संसाधन हम तभी बन पाएंगे जब हम खुद के ऊपर काम करें, खुद को हमें सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, एक हमको टारगेट सेट करना है, खुद के व्यक्तित्व को निखारना है, उस टारगेट को अचीव करना है, तो हम एक मानव से मानव संसाधन बनेंगे। और इस प्रोसेस में अगर एक एक लोग अपने आप को सुधार लेंगे तो समाज भी अपने आप सुधर जाएगा, देश भी अपने आप सुधर जाएगा।
1: दोस्तों, कुमुदिनी साहू जी ने इतनी सुंदर बात कही कि भारत को यशस्वी बनाने के लिए इस स्वयं पर ध्यान दीजिए, खुद को यशस्वी बनाइए, खुद को ऐसा काबिल बनाइए कि आपके योगदान से, आपके हर छोटे कर्तव्य से भारत देश का नाम आगे चमचमाता रहे। दूसरों पे ध्यान देना, दूसरों के मुकाबले, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास करेंगे तो भारत अपनी भारतीयता खो देगा। इसलिए अपनी यूनिकनेस, अपनी जो अनोखी बात है वो यही है कि हम खुद पे आध्यात्म जो है भारत का इतना एक सुंदर कहेंगे भारत की देन है विश्व को, और वह आध्यात्म जो है हमें ये सिखाती है कि पहले स्वयं की ओर हमारा ध्यान जाए। क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे मेरे आसपास के लोगों में भी परिवर्तन आए और मेरे देश के लिए भी ये एक हितकारी कदम। यशस्वी भारत कार्यक्रम के इस अंतिम पड़ाव में कुमुदिनी जी से हम पूछेंगे कुछ रैपिड फायर सवाल और देखते हैं कुमुदिनी जी उनका कैसे जवाब देती हैं। तो आप रेडी हैं कुमुदिनी जी?
0: जी बिल्कुल।
1: पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: तो मेरे हिसाब से सेवा दूसरों की मदद करके खुद के लिए खुशी, खुद को खुशी होना ही सेवा है।
1: दूसरों की मदद के द्वारा खुद को सुख पहुँचाना ही सेवा है, बहुत अच्छा
0: जी।
1: सुख क्या है?
0: सुख ये है कि सुख संतुष्टि है, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम संतुष्ट हैं तो हम सुख हैं, सुखी हैं।
1: बहुत बढ़िया। ज्ञान क्या है?
0: ज्ञान वो है, ज्ञान अनुभव है जो हम आसपास की चीजों से सीखते हैं। ज्ञान एक प्रकार का अनुभव है जो जीवन में काम है।
1: अनुभव ही ज्ञान है दरअसल, कितना भी पोथी पढ़ पढ़ जब मुंह कहते भी है ना, तो अनुभव ही नहीं हो तो वो ज्ञान ही कैसा। तो अनुभव ही ज्ञान है, बहुत सुंदर था आपने। शांति क्या है?
0: जब कुछ कार्य करके आपको सुख का अनुभव हो, ऐसा लगे कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ, सुख का अनुभव, तो वही शांति है जी।
1: घर किसे कहेंगे आप?
0: मेरे हिसाब से घर वो है जहाँ सपना लगे, अपनत्व हो, वहाँ वो घर है।
1: बहुत खूबसूरत, जहाँ अपनत्व की भावना हो, जहाँ अपनापन हो, वही घर है। दोस्तों, फिर चाहे वो पेड़ के नीचे ही हो, चाहे आप जमीन पे भी सो रहे हो, लेकिन अगर अपनेपन के साथ आप जमीन पे सो रहे हैं पांच लोगों के साथ, तो वो भी आपको घर जैसा ही महसूस होगा। बहुत खूबसूरत जवाब दिया है अब तक कुमुदिनी जी ने। अगला सवाल आपसे ये है कि युवा कौन है?
0: युवा वो है जो जीवंत है।
1: जो जीवंत है वही युवा है, तो इसमें शारीरिक उम्र की बात नहीं आती दोस्तों, ये जीवंत की बात है। आप जितने चीयरफुल हैं, एक्टिव हैं, जितने जिंदा दिल हैं, आप उतने ही युवा हैं। तो आप चाहे शारीरिक उम्र से आप 80 साल के भी हो सकते हैं, या शारीरिक उम्र से आप 8 साल के भी हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की जिंदा दिली तय करती है कि आप कितना युवा है। कुमुदिनी जी ने युवाओं का इतना खूबसूरत डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है, जो मैं समझता हूँ आज सारे युवा जो सुन रहे हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे। जो दिल से भी युवा है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आखिरी सवाल है, नहीं आखिरी से थोड़ा पहले
0: जी,
1: देश क्या है?
0: देश वो है जहाँ एकता है, और अपनेपन की भावना जब बहुत से लोगों में हो जाती है तो वो देश कहलाता है।
1: बहुत सुंदर। भारत क्या है?
0: भारत माँ है जो अपने बच्चों को समेटे हुए रखी है अपनी संस्कृति के साथ और अच्छे संस्कार देके।
1: आखिरी सवाल, कुमुदिनी कौन है?
0: जी ये सबसे कठिन सवाल है जी। कुमुदिनी एक इंसान है, एक मानव है जो अच्छे समाज के लिए सोचती है और अपने आसपास खुशी बांटना चाहती है।
1: तो कुमुदिनी जी के इस जवाब से ये पता चलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के बीच में खुशी बांटना चाहता है, इंसानियत को समझता है और मानव धर्म को जानता है, वो व्यक्ति कुमुदिनी के समान है। और कुमुदिनी जी अपने आप को वैसा देखती हैं। बहुत अच्छा लगा कुमुदिनी जी आपसे बात करके, और हम ये उम्मीद करेंगे कि केवल एक यही मौका न हो हमारे श्रोताओं का आपके साथ मिलने का, दोबारा आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत करें, हमसे मिल

0: जैसे कि आपने न्योता भी दिया है सब साथियों को जो सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आ गए, छत्तीसगढ़ देखे जरूर, ऐसे ही मैं चाहूंगा कि आप कोई अगर मैसेज देना चाहते हो लोगों को तो वो एक मैसेज दे दें।
1: जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मंच प्रदान किया। तो मैं इस मंच से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि एक बार खुशी लीजिए, अनुभव कीजिए कि किसी को देने में और किसी की मदद करने में कितनी आंतरिक अंतर से जो खुशी होती है वो एक बार अनुभव जरूर करके देखिए। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये चीज एक बार अनुभव कर लेंगे तो आपको इस चीज की आदत हो जाएगी और आप अपने आस पास सबको खुश रखना चाहेंगे, तो करके देखिए, अच्छा लगता है।
0: जैसे कुमुदिनी जी ने कहा कि एक बार सच्ची खुशी का अनुभव जरूर कीजिए और उसको करने के लिए देने का गुण अपने अंदर धारण कीजिए। जब आप किसी को कुछ भी देते हैं, चाहे वो धन देते हैं, चाहे वो ज्ञान देते हैं, गुण देते हैं या मदद देते हैं, कुछ भी जब हम देते हैं तो जो सुख हमें मिलता है वही सुख जो है सच्चा सुख है। और जैसे कुमुदिनी जी ने बताया कि ये जो रियल खुशी है, ये जो आंतरिक खुशी है, यही व्यक्ति के विकास के लिए असल खुराक है, असल नरिशमेंट है। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी एक दवाई का भी काम करती है। दोस्तों, मैं समझता हूँ आज के हमारे यशस्वी भारत कार्यक्रम के इस एपिसोड से आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं और सीखी भी होंगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे साथ मिल करके कुमुदिनी साहू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे उनके भविष्य के लिए, ताकि वो ढेरों लोगों तक पहुंच सके और अपने जैसे कई कुमुदिनियों को तैयार कर सके, कई युवाओं को तैयार कर सके जो भारत देश के निर्माण में, भारत के अमृत काल में भारत देश को यशस्वी बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम आप सुन रहे थे दोस्तों 107.8 FM रेडियो मधुबन पर। और जैसा कि आज के एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें जानी सेवा के संबंध में, युवाओं के संबंध में, और जाना कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को फिजूल समय व्यर्थ गवाने से बचा सकता है, देश को अपना वो समय दे सकता है। दोस्तों, आप भी अपने आसपास में कोई ना कोई ऐसा कारण अवश्य ढूंढ निकाल सकते हैं जिसमें आप अगर अपना समय दें, अपना सामर्थ्य दें, तो देश की प्रगति में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आरजे शांतनु आपसे लेता हूँ अलविदा। दोबारा मिलूंगा एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नए सुपुत्र के साथ, सुपुत्री के साथ भारत देश की, जिन्होंने भारत को यशस्वी बनाने में अपना जीवन लगाया हुआ है। तब तक सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड में से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों की गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं नीतू जैन हमेशा की तरह आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है कम सोचो धीरे सोचो, कम बोलो धीरे बोलो, कम खाओ धीरे खाओ। चलिए आज मैं आपसे इस विषय पर अपना चिंतन शेयर करूँगी।

0: शैली में कैसे उतार सकती हैं। कम खाओ, इसका रियल अर्थ है कि हमें आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, ना कि लालच या स्वाद के लिए। अधिक खाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखता है। संयमित भोजन आयुर्वेद और योग में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब जानते हैं धीरे खाने का क्या फायदा है। भोजन को शांति और ध्यान पूर्वक ग्रहण करना माना भोजन को धीरे धीरे खाना। भोजन को धीरे धीरे चबाने से पाचन बेहतर होता है, इससे शरीर को अधिक पोषण मिलता है और ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। भोजन को आनंद और कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। चलिए अब हम दूसरे विषय पे बात करते हैं, कम सोचो धीरे सोचो। इसके क्या फायदे हैं और इसका रियल मीनिंग क्या है। कम सोचो, अनावश्यक चिंताओं और विचारों में ना उलझें। अति सोचने से मानसिक तनाव बढ़ता है और मन अशांत रहता है। जीवन में सरलता और संतोष रखना मानसिक शांति के लिए अति आवश्यक है। फालतू और नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मकता को अपनाना ही कम सोचने के फायदे हैं। अब चलिए जाने धीरे सोचो का अर्थ और उसके फायदे। धीरे सोचो माना विचारों को संतुलित और धैर्य पूर्वक रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, बल्कि धैर्य पूर्वक सोच विचार कर करें। मन को स्थिर और केंद्रित रखना जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आवश्यक है। जल्दबाजी के लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। अब चलिए आइए जानते हैं तीसरे विषय में, कम बोलो धीरे बोलो। इसके फायदे और इसका अर्थ क्या है। आवश्यकता से अधिक बोलना कभी कभी समस्याओं को जन्म देता है, इसलिए सोच समझकर और मितभाषी बनकर बोलना चाहिए। धीरे और शांति से बोले गए शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। इससे संवाद बेहतर होता है और हम दूसरों को अधिक सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चिंतन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वाक्य हमें संयम, धैर्य और संतुलित जीवन जीने की सीख देता है। यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। कम खाओ धीरे खाओ, कम बोलो धीरे बोलो, कम सोचो धीरे सोचो, एक गहरी जीवन शैली से जुड़ी सीख है जो संतुलन, धैर्य, आत्म संयम की ओर इशारा करती है। इसका अर्थ अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के चिंतन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए चिंतन के साथ। बने रहे हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। धन्यवाद।
1: प्रिय श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का विषय आपके मन मस्तिष्क में एक नए विचारों का संचार करने में सफल रहा होगा। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगले कार्यक्रम में हम एक और रोचक विषय के साथ लौटेंगे। तब तक अपने विचारों को निखारते रहें और ज्ञान की इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच. हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
1: करायचं.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा.
0: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध.
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा.
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
5: ओम शांती.
4: ओम शांती एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
5: थैंक यू सो मच.
4: हम लोग एक्सेप्टेंस की और टॉलरेंस की बात कर रहे थे शक्ति की ही. तो उसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था एक पॉइंट. उसके लिए कुछ पढ़ना चाहूंगा मैं कि यू नो बचपन से एक्सेप्टेंस को लगता है ना हमेशा वीकनेस. तो ये कहता है डू नॉट सी एक्सेप्टेंस एज अ वीकनेस. एक्सेप्टिंग अ सिचुएशन डज नॉट मीन यू आर गिविंग अप.
5: और
4: ये गिविंग अप वाला इतना अच्छा पॉइंट लगा मुझे क्योंकि मैं हमेशा एक्सेप्ट है तो चलो यार हार गए. Acceptance simply means that you recognize and understand your current situation. Mm-hmm. And this current situation can be just temporarily. Huh?
5: Very true.
4: Haan. So, isliye, ye itna main samjha ki bhai current situation to aage jaake hamesha to rahegi nahi. Acceptance allows to you to be free from the shackles of denial and move forward in life, creating a new path and a new life for yourself.
5: See, this is exactly what we were discussing last time. Iski itni gehrai hai is line ke andar ki acceptance doesn't mean ki aap give up kar rahe hain kisi cheez par. Acceptance just means ki jo denial mode mein aap chal rahe the, ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, इसको चेंज होना ही पड़ेगा इस बात को.
4: या मैं क्यों मानूं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, ये मेरा प्रॉब्लम था. व्हाई शुड आई, अगला क्यों नहीं चेंज होता.
5: इट्स ऑल डिनायल मोड. और इस डिनायल मोड में हमारी शक्ति वेस्ट हो रही है. और उसने लिखा कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो यू विल बी क्रिएटिंग अ न्यू पाथ इन योर लाइफ. तो इसको अगर हम
4: फ्री भी कहता है ना, अपने आप को फ्री भी हो जाएंगे. आप
5: फ्री हो जाएंगे अपनी आंतरिक उलझनों से. जब भी एक्सेप्ट कितनी चीजों को हम करते हैं, जैसे हमने पहले देखा लोगों को एक्सेप्ट करना, फिर हमने देखा सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना. दो एनर्जीज हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको रेजिस्ट करेंगे. चेंज नहीं कर सकते हम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई व्यक्ति है, कोई बात है, कोई सीन है, कोई ट्रेजेडी भी हो गई है, या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या हम उसको रेजिस्ट करेंगे. हम उसको चेंज नहीं कर सकते.
4: एक्सेप्ट रेजिस्ट चेंज नहीं कर सकते. या एक्सेप्ट करेंगे या रेजिस्ट.
5: अच्छा, सपोज आपके अंदर कोई संस्कार है, ठीक है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ तो मेरा मन एक्सेप्ट किया मीन्स आई एक्सेप्ट दिस इज दिस, फुल स्टॉप. उसके ऊपर कोई और थॉट नहीं चला.

0: accept. Resist kiya? Kyun hai? Kaise hai? Aise to nahi hona chahiye, aise hona chahiye. Kamal hai, aise bhi koi hota hai. Achha, phir itni baar samjha diya, phir bhi aise hota hai. Chalo, pehle nahi tha sanskar, samjhane ke baad to theek ho jana chahiye na. This is resist. I feel ke resist karne se hum cheezon ko badal denge. No, humne resist karne se hame lagta hai ke cheeze theek ho jayenge, hum unko badal denge. Lekin resist karne se hum unko nahi badal sakte. सिचुएशन को भी नहीं बदल सकते. हम सिर्फ अपनी शक्ति को वेस्ट करते जाते हैं. वी थिंक ये करने से चेंज आ जाएगा बाहर. बाहर चेंज नहीं आता, अंदर चेंज आ जाता है कि हमारी बैटरी कम होने लगती है, हमारी पावर कम होने लगती है, हम अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं. तो हर बार जब अपने मन की स्थिति को चेक करें तो जस्ट चेक. This is just two words, Saradin. Am I accepting or am I resisting? Resisting means not approving of things as they are. जैसे आपने कहा ये location है, इसको अगर resist करते हैं ये चीज नहीं बदल जाएगी, मौसम भी नहीं बदल जाएगा, लोग नहीं बदल जाएंगे. हम सिर्फ सोच सोच के उसके बारे में अपनी शक्ति को waste करेंगे.
1: सिस्टर जैसे यहाँ से भी ट्रक गई, हमने पॉज किया, चली गई, फिर शूट कर अपने काम पे लग गए. लेकिन रियल लाइफ में वो जो ट्रक गई थी वो बाद में भी याद आती रहती है, वो गई क्यों थी. मैं तो पॉज
0: में इसलिए याद आती
1: नहीं, मैं तो पॉज कर गया, उसको जाने दिया.
0: लेकिन उस टाइम हम पॉज नहीं करते, इसलिए बाद में याद आती है. अभी जब ये ट्रक गई, पॉज किया, कहाँ पॉज किया? दो जगह पॉज किया. एक काम में पॉज किया कि काम रुका, दूसरा मन ने भी पॉज किया. मन ने कहा ट्रक जा रही है, वेट. तो मन ने भी पॉज किया.
1: वो पासिंग है सिस्टर,
0: पासिंग ही है.
1: अगर मेरी वाइफ या किसी का हस्बैंड ऐसे हो, वो पासिंग थोड़ी है, वो तो रोज का ट्रक का आवाज है.
0: तो वो तो और भी इम्पोर्टेंट है एक्सेप्ट करना, क्योंकि रोज ही
1: एक्सेप्ट की बात ही कर रहा हूँ. दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ट्रक गई, हम पॉज किए, हम अपने वापस अपने काम पे लग गए, अपनी ओरिजिनलिटी पे. ओके, वहां पर उसने कुछ बोला, उसकी आदत से वो मजबूर है, वो हो गया और मैं अपने काम पे लग गया. नहीं होते जाने के बाद भी, ये कब तक से
0: हूं? वो जाने के बाद क्यों होता है?
1: कब तक एक्सेप्ट करूं मैं ही करती रहूं?
0: जाने के बाद इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम जब पॉज वाला पीरियड था, उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया था. अभी देखो ये ट्रक गई, पॉज किया, काम रुका, लेकिन मन साइलेंट है.
1: वो गारंटीड थी कि चली जाएगी 3 सेकंड.
0: ठीक है, फाइन. लेकिन इसमें ये भी ऑप्शन थी कि वो 3-4 सेकंड में जब पास करती है ना, अगर हम पहले अनअवेयर थे, वो 3-4 सेकंड में हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट किया करते थे.
1: हाँ.
0: अभी शुरू किया, अभी ट्रक चला गया, कमाल
1: है. पता नहीं हमारे कैमरामैन को यही जगह क्यों मिली, थोड़ा रोड से दूर क्यों नहीं किया. ये वहां भी कर सकते थे.
0: रोज तो ट्रक जाती नहीं, आज पता नहीं क्यों ट्रक इस टाइम चली गई. अच्छा, अब एक गई है, शायद थोड़ी देर बाद दूसरी भी जाएगी. अच्छा, अगर बार बार ऐसे ही ट्रक जाती रही तो फिर काम कैसे होगा आज?
1: तो छोटे से लोकेशन ही बदल
0: दे. दिस इज इट, दिस इज रेजिस्टेंस. तो ऐसा नहीं है कि 3 सेकंड के सीन में भी हम पहले एक्सेप्टिंग थे.
1: ये पॉइंट तो नया है,
0: हम नहीं थे. ये अवेयरनेस है कि पहले हम उस 3 सेकंड में भी इतने सारे थॉट्स क्रिएट करके अपनी पावर को वेस्ट कर देते.
1: नहीं, undisturbed by that point. हाँ. वापस शुरू करते, ऐसा चेहरे से लगता भी नहीं कि यार डिस्टर्बेंस आ गया और मजबूरी हम शूटिंग कर रहे हैं.
0: अगर 3 सेकंड के सीन जब ट्रक पास हुआ उतनी देर में अगर थॉट्स क्रिएट की, तो फिर उसका इम्पैक्ट बाद में भी रहता है. कि बाद में भी जब हम दिन में बैठते ना, कमाल, आज तो ना सुबह सुबह ही ट्रक निकल गया उधर से.
1: नहीं, और हमको मालूम भी था, क्रू को भी जानना चाहिए. इतना भी नहीं सोचते, सुबह का टाइम है, कुछ भी लंबा
0: तो
1: चल
0: मतलब
1: सकता था.
0: लंबा चल सकता था वो भी. मतलब क्या होगा कि उस 3 सेकंड के सीन में मन ने क्या रजिस्टर किया और मन ने क्या रिकॉर्ड किया. अगर वो 3 सेकंड का सीन साइलेंटली क्रॉस हो जाता तो उसके बाद वो कभी रेफर नहीं होगा जीवन में.
1: यहाँ मैं आपको रोकूंगा. इसी तरह ये इसको एक्सेप्ट किया, इस तरह
0: तो इसका हमें डिफरेंस दिखा. ये डिफरेंस देखना बहुत इम्पोर्टेंट है. आपने कहा ट्रक आया, ट्रक गया, पता था, लेकिन तो भी उस 3 सेकंड के सीन में दो ऑप्शन थे. वन, नो थॉट्स,

0: No thoughts means, okay, let's just wait. It'll pass. This was the thought. And silent. Yahan nothing happened. The mind is ekdam silent. Second option tha, ke wo 3 seconds mein bahut sari thoughts create kar di. To yahan bahut sari recording ho gai. Agar recording ho gai, means thoughts bahut sari create ho gai, to baad mein, din mein, ya kai baar kuch dinon tak, us baat ki back reference ho gai. Matlab baar baar us baat ko refer karenge. कल सुबह भी जब शूटिंग शुरू करेंगे ना तो पहले कहेंगे देखो कोई ट्रक तो नहीं आने वाला सामने से इतना बैक रेफरेंस होगा बार बार उस सीन को क्योंकि उस 3 सेकंड में इतना रजिस्टर हो गया वो लेकिन अगर उस 3 सेकंड में कुछ रजिस्टर नहीं हुआ मतलब साइलेंटली उस 3 सेकंड को क्रॉस कर लिया उसके बाद जीवन में उस ट्रक को फिर से नहीं रेफर करेंगे क्योंकि यहां कुछ रजिस्टर नहीं हुआ हाउ मच इज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस
1: एक माँ एक छोटे से बच्चा समझो 1 साल भर का 1.5 साल का बच्चा है उसको कितना अच्छा एक्सेप्ट करती है वो कोई ऐसा वो नहीं होता रजिस्टर ये कल ये किया था इतना तंग किया कुछ नहीं
0: 1.5 साल का बच्चा है उसने दूध भी गिराया खाना भी किया इधर ये भी कर दिया वो भी कर दिया शी एक्सेप्ट विद नॉलेज नॉलेज क्या है कि 1.5 साल का बच्चा है ना तो ये सब तो करेगा ही वो ही चीज एग्जैक्टली वो ही चीज अगर वो बच्चा 5 साल की एज में करे वो ही बच्चा है वो ही माँ है वो ही रिश्ता है वो ही एक्ट है लेकिन 5 साल की एज में वो माँ वो एक्सेप्ट नहीं करेगी ना
1: उतना ही बोलेगी ना बेटा तुम बड़े हो गए नंबर ऑफ दिस
0: वो इतना नहीं बोलेगी आता भी नहीं गिरा दिया समझ में इतने बड़े हो गए खाना भी नहीं खाना आता फिर अगले दिन जब वो खाने बैठेगा अब ध्यान से खाना कल की तरह गिराना नहीं वापस तुम क्लमजी हो गए हो तुम्हारे हाथ से तो गिरता रहता है बहुत कुछ फर्क क्यों क्योंकि 1.5 साल की 1 साल की एज में मदर को पता है ये नेचुरल है इसको एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट क्या रजिस्टर ही नहीं होता ना कुछ एक्सेप्टेंस मीन्स नथिंग
1: तो होना ही है
0: नॉलेज ये नॉलेज है ना 5 साल की एज में ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज राइट कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे ही अगर मुझे नॉलेज है कि मेरा भी कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट है जो कभी भी सामने आ सकता है अगर मुझे नॉलेज है कि सामने वाले का भी कोई कार्मिक अकाउंट है जो कभी भी सामने आ सकता है इतनी सब जब नॉलेज है तो ये उतनी ही नॉलेज है जितनी उस माँ को थी कि वो 1 साल का बच्चा ऐसे ऐसे कर सकता है
1: मैं वही वापस आऊंगा एक मदर है उसके 1.5 साल के बच्चे को वो एक्सेप्ट करती है वही चीज पति को क्यों नहीं करती है
0: वो जिसको चूज करे जितना करना चाहे वो कर सकते हैं वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अगर हमारे अंदर एक्सेप्ट करने की शक्ति है
1: एक्सेप्टेंस में भी चॉइसेस हैं
0: हर चीज में ही
1: चॉइस आई एक्सेप्ट दिस आई डोंट एक्सेप्ट दिस
0: बिल्कुल
1: तो इसका मतलब है फिर वो मेरी गलतियां सपोजिंग मेरी बीवी निकाले फॉर एग्जाम्पल तो मतलब फिर मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही बच्चे वो कर रहे हैं
0: यस यस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे आपको रेजिस्ट कर रहे हैं
1: क्योंकि वो बच्चा वो बोलती है छोटा है वो तो करेगा ही आप तो बड़े हो
0: आप तो आत्मा हो आप तो अलग अलग संस्कार लेकर आए हो तो आई एक्सेप्ट कि आपकी जर्नी पे ये ग्रूव बने होंगे सिंपल यही तो शिफ्ट है ना एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस हमारी जीवन के अंदर कलयुग और सत्युग जितना अंतर ला सकती है इतना फर्क है इसके अंदर सपोज मेरे पास आत्मा की नॉलेज नहीं थी मुझे नहीं मालूम था इवन दो वर्ड सुना था मतलब यू नो वीव हर्ड दीज वर्ड्स लेकिन इतना क्लैरिटी से यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो आत्मा वर्ड सुना था लेकिन सारा दिन में आत्मा है ऐसा कभी याद नहीं रहा लंबी जर्नी पर है कितना कुछ हुआ होगा इस आत्मा के साथ क्या पता है क्या क्या देख कर आई है कोई आत्मा उस कारण से वो आत्मा ऐसी है उसके साथ तो कुछ भी नहीं याद रहता था सिर्फ क्या याद रहता था ये मेरे हस्बैंड है ये मेरी मदर है ये मेरा ब्रदर है ये मेरे बच्चा है ये याद रहता था हमें अब वो याद रहने से मतलब उतनी नॉलेज होने से क्या नॉलेज थी ये मेरा पेरेंट है ये मेरा भाई है तो पेरेंट कैसा होना चाहिए ये नॉलेज थी अब जैसे ही वो पेरेंट वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा होना चाहिए तो माइंड ने उस व्यक्ति को रेजिस्ट किया ये ऐसा क्यों है ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए तो माइंड ने रेजिस्ट किया क्योंकि माइंड ने एक नॉलेज जितनी माइंड को उस टाइम थी

0: जैसे कहेंगे ना नर्सरी क्लास में कितनी नॉलेज थी कि ये पेरेंट है, तो माइंड ने कहा पेरेंट ऐसे होना चाहिए। जब वो नहीं था हमने रेजिस्ट किया उसको बहुत ज्यादा। रेजिस्ट किया मतलब हम अंदर क्वेश्चंस क्वेश्चंस और क्वेश्चंस से ही फिल होते गए, पेरेंट ऐसे कैसे हो सकता है, कोई फादर भी कभी ऐसे बात करता है किसी से, ऐसे बिहेव करता है, पेरेंट ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे भाई को मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे हैं। दिस विल गो ऑन, दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब वही पेरेंट है, वही मैं हूँ, वही ब्रदर है, वही हस्बैंड है, लेकिन अभी एक लाइन ऑफ नॉलेज आ गई है अंदर बीच में, ये आत्मा है। अब भी सिर्फ पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देखकर आए हैं लाइफ के अंदर।
1: छोटी सी मेरी वाइफ मिस्टेक करे और मैं उससे जोर से चिढ़ूं, मेरा रिएक्शन अगर उसके उसकी गलती से सपोजिंग व्हाट एवर इट इज उसके एक्शन का मेरा रिएक्शन अगर 10 times ज्यादा हो तो इज दैट हेट्रेड?
0: नो, इट्स नॉट हेट्रेड, इट इज रेजिस्टिंग व्हाट द पर्सन इज डूइंग। आई एम रेजिस्टिंग दैट एक्ट ऑफ दैट पर्सन, I am resisting the sanskar of that person.
1: But here I am not resisting out of love for the child, not because of understanding.
0: No, it's because of knowledge.
1: Achha.
0: It is because of knowledge.
1: मैं प्यार को मिस कर दिया।
0: आप अपने आप को उसी बच्चे के साथ।
1: Okay.
0: 5 साल बाद देखेगा।
1: Okay, okay, okay. Right, right, right.
0: प्यार तो उतना ही है ना? आज suppose चलो ये तो grandchild है ना? Now look at your son and daughter. आपने उन्हीं की यही सारी छोटी छोटी चीजें या बड़ी बड़ी चीजें कुछ तोड़ दिया कुछ गिरा दिया वो सारी एक्सेप्ट की थी जब वो छोटे थे, किया था ना? तो प्यार चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमारी नॉलेज हमें कहती है छोटा बच्चा ऐसे कर सकता है, बड़ा बच्चा हो गया 30 साल का वो थोड़ी ऐसे कर सकता है। तो नॉलेज की लाइन क्या है अंदर, ये अभी लाइन हमें सिखाती है कि एक्सेप्ट करने से आप अपने मन में फ्रीडम को एक्सपीरियंस करेंगे, रेजिस्ट करने से आपका मन कंटिन्यूअसली इसको कहेंगे ना एक नॉटेड हो जाता है, बहुत गांठे बन जाती है अंदर सारी, क्योंकि क्यों है क्यों है क्यों है, तो उसको बार बार वो आंसर देना पड़ता है, बार बार वो आंसर देना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज बहुत जल्दी ऐसे स्लिप हो जाती। वी गो इनटू आवर ओल्ड प्रोग्रामिंग विच सेज नहीं बेटा तो ऐसा होना चाहिए, नहीं ये तो ऐसे होने चाहिए।
1: सिस्टर, जब मैं कुछ चीज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ फैमिली में तो मैं वो तो देखो भाई मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था एज अ फादर, मुझे तो बोलना ही था उस समय, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लेता?
0: बोलना तो अभी भी है,
1: फिर देश काल पात्र देख के बोलना ना।
0: देश काल पात्र पहले यहाँ ठीक है, बोलने के टाइम
1: दोनों का देखना है ना,
0: अपना अगर ठीक होगा ना।
1: अगला आदमी गुस्से में तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे आप कितना भी समझाओ थोड़ी समझेगा वो,
0: ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी वाइब्रेशन अगर ठीक रेडिएट हो जाएगी,
1: ये
0: हमारी स्थिति अगर ठीक होगी तो हमारा बोलने का तरीका भी कैसा होगा,
1: इसको कैसे ठीक रखें।
0: सी, रेजिस्टेंस की एनर्जी जब जाती है, सपोज आई रेजिस्ट व्हाट यू आर डूइंग अंदर कि क्यों है क्यों है क्यों है, एंड देन आई से समथिंग टू यू, तो आपका अहंकार जो है वो डिफेंसिव पे आ जाएगा, आप तुरंत डिनाई करेंगे उस बात को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेजिस्ट करके वो एनर्जी भेज दी है, तो रेजिस्टेंस की एनर्जी जाने से सामने वाले का भी उस बात को एक्सेप्ट करने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी है, अगर मैं आपको रेजिस्ट करूं फिर मैं जो राय दूंगी आप उसको रेजिस्ट करेंगे, डेफिनेट मैं अंदर आपको रेजिस्ट करूंगी मन में, बाहर भले अच्छे से बात करूंगी लेकिन आप फिर भी उस राय को रेजिस्ट करेंगे।
1: लास्ट टाइम जो आपने एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का जो बताया था तो हुआ यूं कि आज सुबह मैं जरा जल्दी उठ गया था, तो क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं किचन में गया, मैंने बोला मैं अपनी चाय खुद बना लूं, कहां किसी को उठाऊं थोड़ा जल्दी उठने से, तो मैं किचन में गया तो देखा कि दूध नंगा, ये इधर उसके ऊपर कवर नहीं, तो डू यू नो समथिंग, मेरे अंदर इतना भी गुस्सा नहीं है कि कितने अकल नहीं है कि दरवाजे खुले हैं और जंगल है इधर, कुछ भी कीड़ा आ सकता है, कुछ नहीं है। तो जैसे मैं पानी उबाल के अपना बनाने लगा था, एक कुकर एक लेडी आई तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला मुझे एक प्लेट देंगे खाने की, खाना खाने मैंने बोला प्लेट दे दीजिए, तो प्लेट लेकर उसके सामने मैंने दूध को कवर कर दिया, अपनी चाय बना के चला गया।

0: finished.
1: This,
0: now this quotation, ye quotation, ke accept kiya, us situation ko, man ko free kiya, right? And phir ye nahi hai ke situation ko aise ka aise chhod diya. This is very important. Kai baar hum kehte hain acceptance means phir accept kar le ke wo khana aise hi pada hoga. Phir usko wo dhakenge nahi. Nahi. एक्सेप्ट कर ले मीन्स अंदर उसके बारे में इतना सोच सोच के उस बात को रेजिस्ट नहीं करेंगे. जैसे ही एक्सेप्ट किया एनर्जी अच्छी गई एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर उस सिचुएशन को भी ठीक किया.
1: यहां तक थॉट आया कि बोलने के लिए कि यह जंगल है कीड़ा आ सकता है लेकिन मैं रुक गया. मैंने बोला लेट मी डू इट.
0: लेकिन अगर बोलना भी होता है तो देन इट
1: डजंट मैटर. बराबर होगा ना करके दिखा दिया.
0: सी हमारा जो रोल होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली में रोल डिमांड्स दैट वी हैव टू गिव एडवाइस. हैव टू वी नीड टू.
1: मन में आए कैसे करूं.
0: आज वो अलग चीज वैसे लेकिन एडवाइस राय देने से पहले एक्सेप्टेंस अंदर.
1: इतना डिफरेंस हुआ मुझे मेहनत करने में. नॉट मेहनत अवेयर बींग अवेयर
0: नेचुरली आ गया. अभी इतना छोटा सीन है ना अगर ये देखा जाए तो. लेकिन ये छोटा सीन अगर यहाँ एक ग्रूव क्रिएट कर दे ये लंबी चलेगी रिकॉर्डिंग सर.
1: ये बात मैं सिस्टर सोच रहा था कि मैं इतनी मोटी मोटी स्पिरिचुअलिटी की और ज्ञान की किताबें पढ़ता हूँ और फिर भी टेंस्ड रहता हूँ. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप बताते हैं ना प्रोग्राम में ये छोटी सी चीज पे आई एम फीलिंग सो डिफरेंट. आई फील कि मैंने कुछ सीखा आज.
0: यही तो सीख. अब इसको सारा दिन में यूज करते जाएंगे ऐसे.
1: और मेरी आत्मा की जो शक्ति आप बोले डिप्लीट होती डिप्लीट होने की जगह और चार्ज हो गई
0: बढ़ गई. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें अफर्म हुआ कि एक्सेप्ट करने की पावर मेरे अंदर है. मतलब हम ऐसे ही नहीं यूज कर रहे उसको सारा दिन.
1: यू
0: हैव वन मोर चॉइस. नाउ इन द सेम सिचुएशन पहले रेजिस्ट करते ना. आप पहले कभी ये बात आई होती तो आप रेजिस्ट करते ना.
1: मैं थोड़ा सा प्यार से बोलता लेकिन वर्ड्स अच्छे यूज कर लेते. मैंने बोला अभी देखी ना कचरा भी गिर सकती है भी मैं पी जाता. ये
0: इम्पोर्टेंट अंदर क्या करते.
1: अंदर तो मैं यहाँ तक शूटिंग तक आपको भी रस्ते में बोलते हैं वो थॉट चलती ही रहती.
0: बस दिस इज द डिफरेंस.
1: अगली बार मैं सोच समझ के उधर का दूध बात भी नहीं लगा.
0: दिस इज द डिफरेंस कि क्या करता है एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस अंदर के मन को. जैसे ये फ्रीडम वर्ड बहुत प्यारा है कि अंदर वी विल एक्सपीरियंस फ्रीडम व्हेन वी एक्सेप्ट अ सिचुएशन और अ पर्सन. एंड हम डिनायल मोड से हट जाएंगे. डिनायल मीन्स ये क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्यों नहीं है ये ऐसा. हमारे ये करने से वो वैसा बन नहीं जाएंगे. एक्सेप्टेंस की एनर्जी दूसरे के अंदर भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्रिएट करना शुरू करता है.
1: आई वुड रादर यूज द वर्ड फ्रीडम फ्रॉम पेन.
0: इट इज फ्रीडम फ्रॉम पेन फ्रीडम फ्रॉम कन्फ्यूजन फ्रीडम फ्रॉम वरी फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी. एवरीथिंग इज अ लॉट टू डू विद रेजिस्टेंस. ये दो वर्ड्स जो है ना इनको भी सारा दिन खेलना है इनके साथ. अपने आप को चेक करना है क्योंकि जब भी मीन्स वेन एवर हर बार चेक कर सकते हैं. जब भी हम गुस्सा हैं जब भी हम हर्ट हैं जब भी हम अपसेट हैं जब भी हम रिजेक्टेड फील कर रहे हैं जब भी हम जेलस हैं जब भी हम हेट नफरत कर रहे हैं किसी को हम किसी न किसी चीज को या संस्कार को रेजिस्ट कर रहे हैं. उस समय अगर हम बैठ जाएं हमें दिख रहा है कि आई एम वरीड या मैं टेंस्ड हूं या मैं गुस्सा मुझे दिख रहा है वो सारा. मैं सिर्फ चेक करूं कि मैं किस चीज को रेजिस्ट कर रहा हूं. व्हाट इज द थिंग हु इज द पर्सन व्हाट अबाउट दैट पर्सन. एंड धीरे धीरे जो सारी बातें हमें समझ में आई हैं धीरे धीरे आत्मा की संस्कार की कार्मिक अकाउंट की. कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ी चीज है एक्सेप्टेंस के लिए. तो धीरे धीरे हम अपने माइंड का स्विच रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाएं. दर्द भी हो रहा है तकलीफ भी हो रही है अंदर वो भी गई नहीं है हर्ट है. लेकिन अगर सिर्फ एक मंत्र की तरह भी बार बार बोलते जाएंगे ना आई एक्सेप्ट दिस संस्कार आई एक्सेप्ट दिस संस्कार.
1: बट ये सिस्टर मैं ये रोज देख रहा था एक हफ्ते से तब हुई थी तकलीफ. आई एक्सेप्ट जब से आपने ये लास्ट एपिसोड किया तब से मैं ये मेहनत कर रहा हूँ उस पर. और आज जाके ना दर्द हुई ना कोई तकलीफ हुई ना मेरा मुंह खुला लेकिन उल्टा मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त. आई फील कि विन विन लगता है कि मैं अपने मन पे जीता.
0: लेकिन अगर इसको हम बार बार बोले ना बार बार ये भी हर एक कर सकता है आज. कई क्योंकि जैसे ये छोटी बातें, कुछ बड़ी बातें होती हैं, कुछ बड़े दर्द होते हैं किसी सिचुएशन के, सिर्फ बोलते जाएं बार बार, सिर्फ बोलते जाएं। अभी कोई हीलिंग नहीं हो रही है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, नेवर माइंड, जस्ट कीप सेइंग इट एंड रिपीटेड एंड रिपीट, क्योंकि चलना तो है ही कुछ ना कुछ अंदर, ये रुकता तो है नहीं बोलने से, बोलता ही जाता है अंदर, लेकिन इसको क्या बोलना है, बोलते जाएं, आई एक्सेप्ट दिस पर्सन, आई एक्सेप्ट दिस पर्सन, आई एक्सेप्ट दिस पर्सन, फिर उसके अंदर आई एक्सेप्ट दिस संस्कार ऑफ दिस सोल, इसको बोलते जाएं, इसको लिखते जाएं, क्योंकि मन के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो रेजिस्ट करेगा या तो वो एक्सेप्ट की तरफ शिफ्ट होगा, धीरे धीरे होगा, मेहनत से होगा, मुश्किल से होगा, लेकिन होगा जरूर होगा। हम धीरे धीरे भी उसको बोलना शुरू करें ना, आई एक्सेप्ट, उतने दो क्षणों के लिए भी वो रेजिस्टेंस तो कम होगा, और ये करते करते धीरे धीरे वो शिफ्ट होगा, वो नहीं शिफ्ट होंगे, हमारा मन शिफ्ट होगा, फिर हम सोल्यूशन की तरफ वर्क करना शुरू करेंगे। सो राइट व्हेन थिंकिंग इज नॉट working the way we want, writing helps. Take that sanskar of the person, write again and again. I accept this sanskar. I accept this sanskar. I accept. Even if we are writing it 1,000 times, I accept this sanskar. इससे मन धीरे धीरे जो रो रहा है अंदर कि ये क्यों ऐसे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, वो दर्द अभी भी रहेगा, that I will heal. बट ये क्यों ऐसे हैं, कम से कम वो क्वेश्चंस धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स आर हीलिंग, देन वी विल मूव टूवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो एक्सेप्टेंस, लाइक व्हाट यू रेड, फर्स्ट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड इन द जर्नी।
1: मूविंग फॉरवर्ड पे सर एक मेडिटेशन कर।
0: श्योर, सिट बैक। कंफर्टेबल होके अपने आप को देखें। सारा दिन में कई चीजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं जो हमें पसंद नहीं, दे आर नॉट द वे आई वॉन्ट देम टू बी, दे आर नॉट द वे आई थिंक दे शुड बी, जैसा हम चाहते हैं, जैसे वो होने चाहिए, वैसे वो बात या वो आत्मा नहीं है। लेकिन आज आई एम टेकिंग माई माइंड टूवर्ड्स फ्रीडम, प्यार से, धीरे से, एक पावरफुल थॉट, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। बहुत धीरे धीरे इसको मन की सब कॉन्शियस लेयर में बीज डाल देना है। आई एक्सेप्ट दिस संस्कार ऑफ द सोल, आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, ये ही सही है, ये ऐसा ही होना है। I accept them as they are. Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: Acceptance is not weakness. It does not mean we are giving up. Accepting only means we understand our current situation. Acceptance allows us to be free from the shackles of denial and move forward in life, creating a new path and new life for ourselves. Whether it is a situation or people, we can either accept them or resist them. Resistance means not understanding things as they are. The mind questions the present situation or sanskar of people and expects them to change.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 6 अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसमें श्री कृष्ण का नृत्य प्रेम, आनंद और भक्ति का संगम बन जाता है। उसी का नाम है नृत्य माधुरी। सोचिए जरा, जब कान्हा मुरली की धुन पर नृत्य करते हैं तो केवल कदम ही नहीं छिड़कते, बल्कि वृंदावन की हर गली, हर कुंज, हर हृदय

जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमें नृत्य माधुरी का परिचय होना बहुत जरूरी है। कृष्ण का नृत्य केवल गति नहीं था, वह आत्मा की अभिव्यक्ति था। जब वे रासलीला में नृत्य करते तो वृंदावन की गोपियाँ उनके साथ लय से झूम उठती। उनका नृत्य भक्ति का उत्सव था, जिसमें हर जीव ईश्वर के प्रेम में डूब जाता। यही है नृत्य माधुरी, वह कला जिसमें हर कदम भक्ति का संदेश है, हर ताल में प्रेम का अनुभव है और गति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संगम है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक सुंदर और प्यारा

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने रासलीला रची तो यह केवल एक नृत्य नहीं था, यह दिव्य अनुभूति थी। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यह अद्भुत लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं और उनके आनंद को अपना आनंद बना देते हैं। राधा और श्री कृष्ण का नृत्य इस कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह नृत्य केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य संगम है। जब राधा और श्री कृष्ण एक साथ नृत्य करते हैं तो वह क्षण भक्ति का उत्सव बन जाता है। गोपियों की आंखों में प्रेम, उनके हृदय में भक्ति और उनके कदमों में लय सब मिलकर उस रास लीला को अमर बना देते हैं। इस कथा का अंश से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। हर ताल में छिपा है प्रेम, हर गति में छिपा है आनंद और हर लय में छिपा है भक्ति का अमृत। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, नृत्य माधुरी हमें यह सिखाती है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्याग देते हैं तो हम ईश्वर की लय में झूमने लगते हैं। कृष्ण का नृत्य हमें यह संदेश देता है कि सच्चा आनंद केवल ईश्वर के साथ एकत्व में है। जैसे रासलीला में हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है, वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है। उनकी लय हमें यह बताती है कि सुख दुख उतार चढ़ाव सब जीवन के नृत्य का हिस्सा है। जब हम इन सब को भक्ति और प्रेम से स्वीकार करते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। नृत्य माधुरी का दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन को केवल संघर्ष या मोह का जाल न समझे, बल्कि उसे ईश्वर के साथ नृत्य की तरह देखे। हर कदम में भक्ति, हर ताल में प्रेम, हर गति में आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही है नृत्य माधुरी का सार। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों श्रीमद् भागवत में एक श्लोक कहा गया है, रसे रम्य हरि वंदे। इस श्लोक का भावार्थ है कि रास लीला में श्री कृष्ण का नृत्य अद्वितीय और रमणीय है। ये नृत्य केवल कला नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव है। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला में नृत्य करते हैं, तो हर गोपियों को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यही है ईश्वर का दिव्य संदेश कि वह हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं और उनके आनंद में सहभागी बनते हैं। नृत्य माधुरी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का नृत्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हर ताल में प्रेम, हर गति में आनंद और हर लय में भक्ति का अमृत छिपा है। यह हमें बताता है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है और जब हम अहंकार व मोह को त्याग कर ईश्वर की लय में झूमते हैं, तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इस श्लोक का दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रेम और आनंद का उत्सव है, जहाँ हर जीव ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करता है। तो दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

तो श्रोताओ, यह थी छठी कला नृत्य माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की लय में नृत्य करने जैसा है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्याग कर भक्ति की धारा में बहते हैं तो जीवन स्वयं आनंद का उत्सव बन जाता है।

0: अब हमारी श्रृंखला का अगला अध्याय होगा वाद्य माधुरी, यानी श्री कृष्ण की वाद्य यंत्रों की मधुरता, वह संगीत जो केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संदेश है। मुरली की तान, मृदंग की लय और वीणा की मधुरता सब मिलकर कृष्ण की वाद्य माधुरी को अमर बना देते हैं। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण के वाद्य यंत्र केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति का साधन है जो हर हृदय को प्रेम और आनंद से भर देता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सुनते रहो, सुनाते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया, और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: तो मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर, सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वतंत्रता, लेखिका सुधा पुरी, पात्र परिचय यश, सैंडी, वेदांत, पंकज, उन्नति, आकाश, आदित्य प्रकाश, आदित्य।
3: बस स्टॉप।
4: अरे भाई, तुम लोग कभी भी मस्ती करना नहीं छोड़ोगे?
5: कभी नहीं, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।
4: हाँ, क्या स्वतंत्रता के मूड में आए हो तुम सब?
6: क्यों ना हो, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी से ही उस दिन का मूड सेट हो जाता है।
7: हाँ, और जानते हो जो तुमने कहा है वो सबसे पहले किसने कहा था?
8: हाँ, मैं जानता हूँ, बाल गंगाधर तिलक ने, पर स्वराज्य के लिए।
2: तो जरा बताओ तो सही, इनका आदर से क्या नाम लिया जाता है?
5: लोकमान्य।
4: बहुत जानकारी रखते हो तुम सब। ये हिंदुस्तान के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे।
9: दीदी, कहते हैं ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे।
4: हाँ, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। इनका यह कथन कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने आदर्श से लोकमान्य कहा जाता है।
10: मैंने कहीं पढ़ा था कि इन्हें हिंदुस्तान राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है।
9: पर दीदी, लोकमान्य का अर्थ क्या होगा?
4: पूरे संसार के लोगों द्वारा सम्मानित।
6: क्या वाकई ये लोगों को इतने अच्छे लगते थे?
4: जो भी व्यक्ति अपने देश की तरक्की के लिए काम करे वह सभी जगह सम्मानित होता है। सबसे पहले अपने देश को प्यार करोगे तभी तो संसार में किसी और को प्यार कर पाओगे।
7: समझ गए, वही प्रार्थना जो हम हमेशा स्कूल शुरू होने से पहले गाते हैं, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
4: मुझे ये प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, चलो एक बार गाते हैं। ये तुम्हारी विशेष प्रार्थना सभा में भी तो है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो।
8: हाँ, स्वतंत्रता दिवस की प्रार्थना सभा।

0: दीदी मुझे उस दिन एक स्पीच देनी है जिसमें किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के विषय में कुछ बताना है।
1: तो ठीक है ना, तुम लोकमान्य तिलक के विषय में कुछ लिख लो।
2: हाँ, इनसे अच्छा और कौन होगा, इन्होंने भारतीय समाज में कई सुधार लाने के प्रयत्न किए।
0: अच्छा बताओ ना दीदी, क्या क्या?
2: वे बाल विवाह के विरुद्ध थे, उन्होंने हिंदी को संपूर्ण भारत की भाषा बनाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा प्रारंभ की।
3: हाँ, वो इसलिए भी किया था ताकि लोगों तक स्वराज का संदेश पहुँचे, उस संदेश के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके।
2: बिल्कुल ठीक, भारतीय संस्कृति परंपरा और इतिहास पर लिखे उनके लेखों से भारत के लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत हुई।
4: दीदी हम चारों को मिलकर एक देशभक्ति गीत गाना, कौन सा गाया कि सब में देश के लिए गर्व की भावना जाग जाए?
2: सोचने दो। अरे सोचना क्या है, सारे जहाँ से अच्छा गाना तो गाओ।
5: हाँ ये तो बहुत अच्छा रहेगा, चलो सब मिलकर गाते हैं।

0: कितना मजा आया गाने में इसे।
1: इसे किसने लिखा है?
0: सारे जहाँ से अच्छा या तराना है हिंदी, उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गजल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी थी।
2: वाह क्या बात है,
3: आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में कितने प्यार से इसे हमारे देश भारत में गाया जाता है।
1: इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है।
0: इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। इस इकबाल की रचना बंगे दारा में शामिल है। एक मजेदार किस्सा मशहूर है।
4: क्या बताओ ना।
0: उस समय इकबाल लाहौर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। उन्हें लाला हरदयाल ने एक सम्मेलन की अध्यक्षता करने का निमंत्रण दिया। इकबाल ने भाषण देने के बजाय यह गजल पूरी उमंग से गाकर सुनाई। यह गजल हिंदुस्तान की तारीख में लिखी गई है और अलग अलग संप्रदायों के लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है। सितार वादक पंडित रविशंकर ने इसे सुरबद्ध किया था। जब भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो शर्मा ने इसे गीत की पहली पंक्ति कही।
2: चलो आप सब एक बार प्रार्थना सभा की तैयारी भी तो कर लो।
3: मुझे तो उस दिन बापू बन के जाना है और उनके कही हुई बातों को उनके स्टाइल में कहना है।
0: बापू के लिए तो कहा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका प्रमाण है महात्मा गांधी।
3: मेरे पास उनके कोट्स या कथनों की एक लिस्ट है। चलो सब एक एक करके पढ़ते हैं, फिर ये कार्यक्रम भी हम एक साथ ही प्रस्तुत कर देंगे। अच्छा।

0: लगेगा।
1: पर बापू कौन बनेगा?
2: सब बन जाना, मैं तो कहती हूँ अच्छा हो कि सारा देश ही बन जाए, पहनावे में, सोच में, आचरण में।
1: हाँ तो प्रैक्टिस कौन करेगा?
3: ये देखो लिस्ट, चलो शुरू करते हैं।
0: विश्वास, विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी है।
4: प्रयोजन में दृढ़ विश्वास, अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रूप को बदल सकता है।
3: शांति, शांति का कोई रास्ता नहीं है, केवल शांति है।
1: बदला, आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।
5: समय की बचत, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं, और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है।
6: प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़के तो उसकी कुछ बूंदे अवश्य ही आप पर पड़ती हैं।
7: विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़े, विश्वास को हमेशा तर्क से तोड़ना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है।
2: बापू ने शत्रुओं की आदत पर क्या कमाल की बात कही है।
6: क्या?
2: पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे।
0: उनके वस्त्र कितने साधारण हुआ करते थे ना?
2: हाँ, और विचार ऊंचे, बल्कि चरित्र के बारे में उन्होंने कहा है, व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं अपितु उसके चरित्र से आंकी जाती है।
4: आजकल प्रसन्न रहने के लिए कितनी सेल्फ हेल्प की किताबें हैं, पर खुशी पाने के लिए बापू की यह बात सबसे अच्छी लगती है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो।
2: चलो, आज काफी कुछ कर लिया है, काफी कुछ सोच लिया है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के लिए अब जरा सब खड़े होकर अच्छी तरह से राष्ट्रगान तो गाओ।

02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजी सनी के साथ।
1: ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें होती हैं इस एपिसोड में। हम लोग कुछ अल्फाबेट लेकर बातें करते हैं, तो आज भी हम लोग एल अल्फाबेट के बहुत सारे खूबसूरत गाने 50s एंड 60s के आपको सुनाने वाले हैं। जी हाँ, आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान हैं, विभा जी और अरुणा जी। तो चलिए इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बातें करते हैं। जी विभा जी बताइए।
2: नमस्कार, आपको ख्वाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार और आदर भरा नमस्कार।
1: जी विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आने से हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग जैसे कि एक इसमें एक ट्रेंड रखते हैं कि अल्फाबेट एल से ही हम लोग गाने सुनाएंगे, तो एल में ऐसे बहुत सारे गाने हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड गाने आज के शो में हम लोग सुनाने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उन सिलेक्टेड गानों में से सबसे पहला कौन सा एक गीत आपके जहन में आता है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं।
2: पहला गाना मैं ये कहूंगी कि इस पे थोड़ा सा पंजाबी सा रिदम भी है, लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। और इस गाने में हीरो ने ये ऑफिस का एटमोस्फेयर है और बड़ी नजाकत के

0: प्रेमी को तंज करते हुए कि ये मेरे को लारा मीन लारा लगा रहा है कि मेरे को एक इंसेंटिव दे रहा है कुछ करने के लिए, तो वो कर नहीं रहा। तो इस बाप के साथ वो गाना गा रही हैं। एटमोसफेयर बड़ा ऑफिस का है और बड़ा अच्छा एटमोसफेयर बना हुआ है। उसकी सहेलियां भी उसके साथ मिलके उसको गा रही हैं।
1: चलिए, मुझे लगता है कि आपको अपने ऑफिस की याद आ गई होगी गाना सुन के। अरुणा जी बताइए आप भी।
2: नमस्कार रमेश जी, नमस्कार विभा जी, आप दोनों ने मुझे इस प्रोग्राम में एज अ गेस्ट बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी एंजॉय कर रही हूँ। और आपने इस गाने के बारे में जो बताया, मैं भी अपनी जो भावनाएं हैं उसको रखना चाहती हूँ। जब मीना जी को दफ्तर का काम नहीं आता है और उसका मन थोड़ा सा चुलबुला सा हो जाता है, तो अपने सहभागी को अपने साथ जोड़कर एकदम मस्ती में इस गाने को गाती है।
1: तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, लारा लप्पा लाई रखदा। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है, पंजाबी इसमें फ्लेवर है, और गाना सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं एक जो मस्ती है वो आ जाती है। तो हम लोग इस गीत को सुनेंगे, और ये गीत लिखा है अजीज कश्मीरी ने, संगीतकार थे विनोद जी, और इसको इस फिल्म थे ये जो फिल्म है एक थी लड़के 1949 का एक फिल्म है, और जिसे रूप के शिरी ने खास डायरेक्ट किया था, और रूप के शहरी ने ही इसे निर्माण किया था, प्रोड्यूस किया था। इसके संगीतकार विनोद ईआर, जिसके बारे में मैंने बताया। इस फिल्म के जो पुराने कलाकार थे, जैसे कि आपने सुना भी होगा, मीना शौरी, मोतीलाल जौहर, कुलदीप कौर इसमें अच्छी तरह से काम किया था, ये मुख्य भूमिका में थे ये लोग। तो आइए सुनते हैं जिस गीत को विभाजी ने याद कराया है, उस गाने का लुफ्त उठाते हैं, और कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इस ऊपर वाली लाइन को बदल के देखें, भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार भी किया है? तो देखिए, ऐसा सोचने से आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो चलिए, बदलाव के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं ये खूबसूरत गाना आपके नाम।
3: जी थोड़ा सा एडवांस, ताकि कुछ चीजें और कपड़े खरीद लूं।
4: इन कपड़ों में क्या करा दी, कल नौकरी और आज एडवांस, ये सब दिल्ली में देखा जाएगा।
3: आप तो लारा लप्पा लगाते हैं।
4: लारा लप्पा?
3: जी अड्डी टप्पा।
4: ये लारा लप्पा और अड्डी टप्पा क्या करवा
3: है? पंजाबी लारा लप्पे का मतलब है ताल मटोल,
4: और अड्डी टप्पे का
3: अड्डी टप्पे खाम खा झगड़ा करना।
4: तो यू ही समझ लो, मगर एडवांस नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर देखा जाएगा।
3: बिमला से मिलने पैसे मांगे तो

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, बहुत ही प्यारा सा गीत विभाजी आपने याद कराया, लारी लप्पा, और बहुत ही खूबसूरत गाना ही है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये म्यूजिक एंड ये स्टाइल इसका जो है अलग है, और रिदम भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इस गीत के साथ हम थोड़ी देर के लिए मैच हो जाते हैं और कहीं न कहीं हमारे पूरे बॉडी के पार्ट जो है हिलने लग जाते हैं। तो आइए विभाजी, अब अगला गाना कौन सा आप चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं को सुनाए? हम 50s एंड 60s में से कोई एक गीत आप सुनाइए। एल वाला
2: ये अगला गाना मेरे पास है, लेके पहला पहला प्यार, भर की आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
1: वाह, क्या ये
2: जी। और जैसा आप कह रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, अगर इसी को हम उल्टा कर दें कि भगवान क्या कहेंगे, इसे मुझे ये लग रहा है भगवान क्या कहेंगे, इसको दिमाग में रखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ प्यार की बात हो रही है। लेके पहला पहला प्यार, तो ये प्यार का संदेश हमारे भगवान का

0: पेशा, तो इसमें बड़े अच्छी तरह पिक्चराइज किया हुआ कि हीरो हीरोइन के पीछे है और मस्ती से सड़क पे जा रहे हैं और बैकग्राउंड में जैसे बंजारे वो गाना गा रहे हैं लेके पहला पहला प्यार। और ये गाना सड़क पे होने के कारण इसमें सड़क की ब्यूटी और आसपास का अच्छा एटमॉस्फेयर दिखाया हुआ है और जिसमें हीरोइन को प्यार एक्सेप्ट करने का संदेश दिया गया है, वो प्यार जिसमें मुश्किल सा है, मुश्किल से बच पाना है, ये है पहला प्यार जिसमें कुमार है और अजीब सा नशा है। और ये इसको देख के बड़ा म्यूजिक बड़ा लाइवली म्यूजिक है, इसमें अगेन कुछ प्यार की भावना के साथ इसमें मचलने को मन करता है। ये बड़ा अच्छा सुंदर गाना।
1: अरुणा जी बताइए आप भी।
2: विभा जी, इस गाने के मतलब को बताया और क्या होता है इसमें, किस कारण से गाया जाता है ये गाना, तो मैं भी अपनी भावनाओं को यहाँ पे रखना चाहूंगी। ये किसका ख्याल, कौन सी खुशबू सता रही है, ये जो करार दिल में है, कहीं ये मोहब्बत तो नहीं, फिर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार।
1: बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया। और ये सीआईडी इस एल्बम से है, 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और जो गीत आपने बताया लेके पहला प्यार, ये गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और आशा जी और रफी साहब ने इसे आवाज दिया है। और बहुत ही प्यारा सा जो फ्लेवर है इस गाने को सुनने के बाद मिलता है और कहीं ना कहीं हमारी खुशी बढ़ती है। और ये ओपी नैयर का संगीत का भी जादू इस गाने को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो आइए इस गीत को सुनते हैं। और ये जो फिल्म है एक अंडरवर्ल्ड, जिसको डॉन कहते हैं आम भाषा में, ऐसे लोगों पर पिक्चराइज किया गया है। तो इस फिल्म के कलाकार थे देवानंद, वैदा रहमन, जॉनी वॉकर, शशि कला और महमूद अली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं गीत के पहले दो लाइन आपको जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप सही सोच रहे हो, अगर आप सही हो, तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, ख्वाबों के सफर में 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज का आनंद आप उठा रहे हैं और खुशी हो रहा है कि बहुत ही सुंदर गाने आप सुन रहे हैं। और विभा जी हमारे साथ हैं। विभा जी कैसे हैं आप?
2: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खूब मजे में हूँ और गानों को एंजॉय कर रही हूँ।
1: तो आज के हमने जो गाने का कलेक्शन है वो आपको दिया है, तो आप एक एक गाना हमें बताते जाइए। आप कौन सा गाना है आपके पिटारे में?
2: लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना।
1: ओह क्या बात है जी,
2: आंखों को पढ़ने की बात हो रही है। नंदा और देवानंद जिसे खेतों में गा रहे हैं और बड़ा लाइवली एटमॉस्फेयर है और दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं और अपनी ही तारीफ ढूंढ रहे हैं। नंदा का शरारती चेहरा और गाने में चार चांद लगा रहा है और गाने में शरारत के साथ साथ जान सी डाल दी है
1: जी,
2: और इसमें फुल मस्ती और शौकपन है इसमें। तो जैसे एक दूसरे के साथ सवाल करते हुए और ये सवाल यही है कि इन आंखों में किसका अफसाना है, और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में पड़ते हुए दुनिया से बेखबर होते हुए आगे जा रहे हैं और खूब झूम रहे हैं। ये गाना भी बहुत चुलबुला गाना है, मजा देने वाला गाना है।
1: अरुणा जी बताइए आप भी।
3: जी नमस्कार, आपने इस बात को बताया कि यहाँ पे क्या होता है, किस कारण से ये लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, ये जो गाना गाते हैं। यहाँ पे कोई ख्याल दिल से टकराती है, दिल का ना चाह कर भी खामोश रह जाती है, कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है, कोई कुछ ना कहकर भी सब बोल जाता है।
1: बहुत ही प्यारे प्यारे कनेक्शन आप सुना रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी ऐसे ऐसे गीत सुनकर कहीं न कहीं अपने आप को एक अलग दुनिया में फील कर रहे होंगे आज ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम को सुनकर। जिस गाने की आपने बात की है, ये तीन दिव्या एल्बम से 1965 में रिलीज हुई थी। देवानंद, नंदा, सिमी, गारिबार और कल्पना पर पिक्चराइज किया गया था। स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है और थोड़ा सा कॉमेडी वाला भी है। तो चलिए, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा तीन देवियों का ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। कहते हैं, जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखो, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुनाए हैं। मैं हूं आपका हम सफर सनी और हमारे साथ आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम को सजाने के लिए विभा जी हैं। विभा जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूं और खूब मजे के साथ प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चुलबुले गाने सुन रही हूं।
0: चलिए मैं एक गाना आपको और याद दिला देता हूं, शायद आप उस लाइन को पकड़ ले। लव इन टोक्यो 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। आशा पारेख, जॉय मुखर्जी, महमूद अली और प्राण पर पिक्चराइज किया गया था। इस फिल्म का एक गाना है जो एल अक्षर से शुरू होता है,
1: ले गई दिल गुड़िया जापान की। इसमें बहुत ही सुंदर गाना है, इसमें आपको चलो आपको लेके चलते हैं। ये जापान में फिल्माया गया था, टोक्यो शहर में।
0: जी जी जी।
1: और उसकी सड़कें, उसके ब्रिज और सारा ऐसे एटमोस्फेयर दिखाया गया इस फिल्म में। और जॉय मुखर्जी आशा परी का हाथ पकड़ते हुए भागते हुए ये गाना गा रहे हैं और बड़ा बिंदास गाना है। और जिसमें भागना, नाचना और अपने एक दूसरे का हाथ लेके उसमें डूब जाना, बहुत ही अच्छी तरह से इसको दिखाया गया। पूरा शहर और वहाँ के लोग, वहाँ का पहरावा और फुल मस्ती जैसे विदेशों में होता है, वो इस गाने में है। और ये जापान में फिल्माया गया था।
0: रिबा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी अब विदेश में पहुँच गए होंगे, टोक्यो में, जापान में। अच्छा, इस लव इन टोक्यो में जो स्टोरी बताया है वो बड़ा सिंपल सा स्टोरी है। जॉय मुखर्जी, जिसका नाम है अशोक, और उसकी माँ गायत्री देवी जो है वो एक लड़की को इसके लिए चुनती है जिसका नाम है सरिता, और वो उससे शादी करवाना चाहती है अशोक की। अब अशोक की शादी करने के दिन होती है एक और दूसरे लड़के से जिसका नाम है आशा। बस यहाँ इस कश्मकश में जो है चीजें बनती हैं और इस बीच अशोक जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपनी आंखें खो देता है। फिर कहानी में क्लाइमैक्स दूसरा बन जाता है। अरुणा जी, बताइए आप भी।
2: जी, आप जो बोल रहे हैं उस चीज को तो मैं एग्री करती हूँ। और इसमें यही होता है कि एक इंडियन को जापान की लड़की पसंद आ जाती है। हाँ जी, उसे वो दिल दे बैठता है और उसी से ही वो अब ये गाना गाते हैं, वो ले गई दिल गुड़िया जापान की वाली।
0: जिस गाने को आपने सुनाया, हसरत जयपुरी साहब के कलम से लिखा हुआ ये गीत मोहम्मद रफी साहब ने गाया है, शंकर जयकिशन साहब ने संगीत से संवारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ और कहते हैं, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है।

0: खबरों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत गाने एंजॉय कर रहे हैं और विभा जी के पास बहुत ही प्यारे कलेक्शन है। लव इन टोक्यो के बाद विभा जी आप कौन सा गाना आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को?
1: ये जैसे आपने कहा वक्त बदलता जरूर है, तो इसमें थोड़ा सा एक सैड गाना भी हम ले लेते हैं।
0: अच्छा।
1: वो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए।
0: याद करने वाले लेट ही आते हैं नहीं?
1: ये उदासी भरा गाना है जिसमें आशा पारेख मनोज कुमार को याद करते हुए और उनकी यादों में इतनी गुम है, उदासी के साथ वो गा रही है, काले कपड़े पहने हुए हैं, काली साड़ी में, और पूरा घर वाले सब परेशान है, उदासी का माहौल है। पर इसकी जो वर्डिंग है दिल को छूने वाली है, और इसमें है जो दिल जो मेरे को टच करती है, दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, एक सांस रह गई वो भी न टूट जाए। बहुत सुंदर गाना है।
0: अरुणा जी बताइए आप भी।
2: यहाँ पर वही बताया गया है जो आपने कहा विभा जी, किसी का इंतजार करते हैं हम तो एक एक पल हमारा एक एक साल की तरह लगने लगती है ना, तो उनका जो इंतजार करने का करने पर ये जो मुरझाया हुआ सा हो जाता है, तो किसी उसके जिसका इंतजार कर रहे हैं हम, तो जब वो आ जाते हैं तो हमारा मुरझाया हुआ फूल खिल जाता है जी।
0: बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया, दो बदन 1966 का इस एल्बम से ये गाना है। और यहाँ पर एक फैमिली ड्रामा है जिसमें जो है एक लड़की लड़के के पिताजी हैं और फिर एक लड़का है, तो इन तीनों के बीच में स्टोरी घूमती है और भावनाओं का खेल यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए शकील बदायूं साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर की आवाज में, रवि का संगीत है और दो बदन इस एल्बम का ये गाना है जिसमें कलाकार थे मनोज कुमार प्राण और आशा पारेख। कहते हैं कि दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, ख्वाबों के सफर में 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज का आनंद आप उठा रहे हैं और खुशी हो रहा है कि बहुत ही सुंदर गाने आप सुन रहे हैं। और विभा जी हमारे साथ हैं। विभा जी,
1: अब खत लिखने की बात करते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।
0: शायद ये फिर से वो पिछला जमाने में आप ले चल रहे हैं, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी है, लोग मैसेज करते, व्हाट्सएप करते हैं और भूल भी जाते हैं।
1: ईमेल तो चलती है ना?
0: हाँ, मेल तो अभी तो जैसे बहुत
1: वैसे लिख लेते हैं।
0: बहुत कम हो गया अभी तो ईमेल भी।
1: इसमें शशि कपूर का आशिकाना अंदाज दिखाया, वो बिल्कुल चुलबुले नाचते हुए जैसे उनकी अदाएं हैं, जिसमें वो अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं खत का सहारा लेकर, साथ ही अपने लफ्जों में अपने इजहार में नेचर को ऐड कर रहे हैं, जिसमें चांद सितारे और फूल हैं। ये अंदाज बहुत ही प्यारा है और उनका चुलबुलापन है इसमें और दिल की गहराइयों को छूता है।
0: जी जी,
1: खत का इंतजार तो शायद हर लड़की करती है और लड़के भी करते हैं। और इसको ये अपने टाइम में ये गाना बहुत चला था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। अरुणा जी बताइए आप भी।
2: ये वो लिखे जो खत तुझे वाला गाने में यही है कि जब हम प्यार करते हैं तो उनकी याद में सारी पेज भर जाती हैं जी, उनकी यादों में, और यादों से ही हम सारे चीजें लिख लेते हैं। और इससे होता भी क्या है कि हम अपने आप को एक प्यासा और उनको बारिश बना लेते हैं।
0: जी, बहुत ही प्यारा गीत है और हम लोग इसको सुनाएंगे जरूर हमारे श्रोताओं को। और खत की बात आती है तो जब आप कोई चीज लिखते हो तो उसमें आपके भावनाएं बनी रहती हैं। किसी के लिए लिखते हैं तो जब वो व्यक्ति उस खत को पढ़ता है तो कहीं न कहीं वो भावनाएं उनको स्पर्श हो जाती हैं। तो इसीलिए खत के साथ जो हमारा सुंदर रिश्ता है वो शायद आज के इस टेक्नोलॉजी में SMS में वो चीजें शायद नहीं हो पाती हैं, या फिर व्हाट्सएप या चैटिंग जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो भाव बहुत कम आ जाते हैं, कहीं ना कहीं उससे लुप्त होती जा रही है वो चीजें। और वो चीजें फिर से लाने के लिए हमें खत ही लिखना होगा। आपकी कलम चले, आपके भाव उसमें उतरे तो चीजें बनती हैं। और जैसे कि नीरज साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि लिख के जो खत तुझे हजारों रंग के सितारे बन गए, कितनी खूबसूरत लाइनें हैं। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाएंगे और हर शब्द को आप जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप आसमान सितारों के बीच अपने आप को पाएंगे। शशि कपूर, आशा पारेख और ओम प्रकाश और टुनटुन पर पिक्चराइज किया गया खानदान इस एल्बम का ये गाना है जो 1968 में रिलीज हुई थी। और मोहम्मद रफी साहब की खूबसूरत आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया मोहम्मद रफी साहब का, कमाल, बहुत ही खूबसूरत आवाज में आपने गाना सुनाया। विभा जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, एंजॉय कर रहे हैं।
0: अच्छा, आप एंजॉय इतना अच्छा कर रहे हो तो हमारे श्रोता कितने एंजॉय कर रहे होंगे वो तो मुझे SMS और फोन कॉल से पता चल ही जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप फोन न करें पर मैसेज करें ताकि हम तक पहुंचे, क्योंकि हम लोग ये प्रोग्राम प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम चला रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और विभा जी अब कौन सा गीत आप सुना रहे हैं?
1: अब खत के बाद अगला स्टेप ये देखते हैं वो क्या क्या रही है उसमें। आई थिंक ये यही कह रही है, ले चल मेरे जीवन साथी।
0: जी जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। और ये विश्वास 1969 के एल्बम से है और गुलशन बावड़ा साहब ने इस गीत को लिखा है। हेमलता की खूबसूरत आवाज, हेमलता और मुकेश जी की आवाज है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत जी। और इसमें कलाकार थे जितेंद्र, अर्पणा सेन, भरत भूषण, कामिनी कौशल और राजेंद्र नाथ ने काम किया है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, इसको आप देखेंगे तो पता चल जाएगा इसका स्टोरी। लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि ले चल मेरे जीवन साथी, इसमें क्या भाव है विभा जी?
1: ये गाना जितेंद्र और अर्पणा सेन इसमें पूरी मस्ती के साथ गा रहे हैं और इसमें शर्म भी है, मस्ती भी है, मोहब्बत भी है और अपनापन भी है, इन सब चीजों का मिश्रण है। और जिसमें प्यार है यहाँ की बात है, इसमें बस प्यार ही प्यार है पूरी, लाइक दुनिया का कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। चलते जा रहे हैं जंगल में अपने दो प्रेमी, अपने प्यार में मगन है और जन्मों के साथ होने का एहसास के साथ उगा रहे हैं कि जैसे वो इस जन्म की बात नहीं कि कई जन्मों से रिलेटेड हूँ, ऐसे हाथ में हाथ लेके मस्त गाना गा रहे हैं।
0: ओह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाने की तरफ आपने इशारा किया है। अरुणा जी बताइए आप भी।
2: ले चल वाले में तो जी आपने वही सही कहा है, कभी जुदा ना हो ये वादा जब हम करते हैं अपने प्रेमी से और एक अलग दुनिया में जब जाने की बातें करते हैं तो दोनों यही गुनगुनाते हैं।
0: चलिए सीधे गाना ही सुनते हैं। कहते हैं रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। वाओ, क्या खूबसूरत गाना आपने सुनाया विभा जी। चलिए अब आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं, कार्यक्रम के अंतिम छोर पे हैं। एक आखिरी खूबसूरत गाना मैं चाहूंगा कि आप उससे दो लाइन गुनगुना दीजिए।
1: ये गाना तो उदासी वाला है, लेकिन मेरे दिल के बड़े करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे ना मिला, हरियाली और रास्ता का गाना है ये। और इसमें बहुत ही उदासी है, माला सिन्हा है और मनोज कुमार दोनों का गाया हुआ है, ड्यूट सॉन्ग है। और इसमें मनोज कुमार बहुत ही उदास है और उसे एक सितारे को ढूंढ रहे हैं जो उनके करीब है, और वो देख रहे हैं कि लाखों तारे हैं आसमान पर लेकिन उनका जो सितारा है वो कहीं उनको नजर नहीं आ रहा। और दुनिया के लिए ये दिवाली मनाई जा रही है लेकिन उनको ये एहसास हो रहा है कि ये रोशनी औरों के लिए है, उनके जीवन में तो अंधेरा आ चुका है। और इसमें कहीं ना कहीं दर्द है, दर्द जुदाई का दर्द है, अपनों से बिछड़ने का दर्द है। तो ये गाना कहीं ना कहीं जाके मुझे टच करता है।
0: अरुणा जी बताइए आप भी।
2: लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे ना मिला, इस दुनिया में इतनी रोशनी है फिर भी सच्ची रोशनी नहीं मिलती। दुनिया में लाखों दिल हैं मगर सच्चा प्यार नहीं मिलता, और जब ये दोनों ही नहीं मिलता है तो हमारा दुख इस एक गाना बन जाता है।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ जो भाव है वो आपने सटीक बताया, और कहीं न कहीं ये आपके दिल के करीब है इसलिए आप इतनी अच्छी तरह से इसको डिफाइन कर पा रही हैं। तो आइए, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत गाना लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ है, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, हरियाली और रास्ता, जो 1962 में फिल्म रिलीज हुए थे।

0: चलिए साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जैसे कि हमने एल अक्षर वाले बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाए हैं,
1: इस प्रोग्राम में आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो चलिए, आशा करता हूँ आप इसी तरह एंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से अरुणा जी एंड विभा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
2: नमस्कार,
1: थैंक यू,
0: दीजिए इजाजत, सलाम, नमस्ते।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पिया के गाँव चली रे, पिया के गाँव चली रे, चली रे चली रे।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग ड्रिंकिंग वेयरिंग, लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग स्पीकिंग बिहेविंग, दैट्स माय लाइफस्टाइल।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे। एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन।

नजर में बिजली आता में शोले जनाब आली मैं सच के जावा जरा पलट के इधर तो देखो जरा पलट के।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सुमेधा दिवान मैडम यांनी सांगली येथून लिहिले, सुमेधा दिवान मैडम लिहित आहेत सांगली येथून, तो मी आणि या शीर्षकाखाली मैडम ने लिहिले, मस्त धुंद हवा तो आणि मी हवा, मस्त धुंद हवा तो आणि मी हवा, हातात हात हवा चहाचा कप हवा, हातात हात हवा चहाचा कप हवा। तर अप्रतिम चारोळी होती, पुढच्या चारोळीमध्ये सौ अनिता जगताप मॅडम लिहित आहेत कोल्हापूर येथून। सौ अनिता जगताप मॅडम यांनी कोल्हापूर येथून लिहिलंय की पावसासारखा तूही अचानक यावं असं वाटतं, पावसासारखा तूही अचानक यावं असं वाटतं, तुझ्या आठवणीत ही माझं मन पावसासारखंच दाटतं, तुझ्या आठवणीत ही माझं मन पावसासारखंच दाटतं। तर पाऊस आल्यानंतर सुख दुःखाचे अशंक्य क्षण जे आहेत ते डोळ्यासमोर तरळतात, मन दाटून येतं, त्याबद्दलचे भाव या रचनेमध्ये होते। पुढच्या चारोळीमध्ये सौभाग्यश्री अविनाश पाटील मॅडम लिहित आहेत सांगली येथून।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, मतलब बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था ना मन के लिए।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: एक कहानी सुनने के लिए।
1: हाँ हाँ आओ आओ।
0: लेकिन पता है पुराना स्तंभ जी, मैं ना कल टीवी देख रही थी।
1: अच्छा।
0: और टीवी पे चाइल्ड लेबर के बारे में दिखा रहे थे, कैसे छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है और उनका बचपन पढ़ाई लिखाई से महरूम ही रह जाता है।
1: हाँ, कुछ बच्चे अपना बचपन नहीं जी पाते मनो।
0: लेकिन पुराना संघ जी, कुछ एनजीओ भी इसके लिए कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि हर कोई तो एनजीओ नहीं खोल सकता, पर चाहते तो हम सब हैं कि हम कुछ करें।
1: पता है मनु, पीछे रोड के उस पार वाली बिल्डिंग में सुगंधा जी रहती हैं। उन्होंने अपने बिल्डिंग के वॉचमैन कमलेश चाचा के बेटे का स्कूल में दाखिला करवा दिया है और 2 साल से फीस, कपड़े, किताबें वही लेकर देती हैं। उसे पूरा स्कूल पास करवाने का निश्चय किया है सुगंधा जी ने।
0: बुरा मत मानिए पुराना स्तंभ जी, लेकिन उससे क्या होगा? बस एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर हम सबका भला थोड़ी कर सकते हैं।
1: मनु, उस एक बच्चे के जूते में कदम रख कर सोचो कि पढ़ाई कर पाना कैसा होता है। एक जीवन बनाना समाज को कोई छोटा योगदान नहीं। आगे जाकर यही बच्चा शायद हजारों की जिंदगी और संवार दे, अगर उसे पढ़ाई का अधिकार मिले।
0: मतलब एक बच्चे को पढ़ाना, ये तो कई लोग कर सकते हैं। वैसे कुछ ऐसे बच्चों को जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें मैं भी फ्री ट्यूशन तो पढ़ा ही सकती हूँ।
1: और उससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी।
0: कमाई?
1: हाँ, दुआओं की कमाई, क्योंकि जब पैसा काम नहीं आता मनु, तब दुआएं काम आती हैं। दुआएं कमानी भी बहुत जरूरी है।
0: ठीक कहा आपने। तो चलिए अब जल्दी से मुझे अगली कहानी सुना दीजिए, फिर मुझे कमाई भी तो करनी है दुआओं की ढेर सारी।
1: जरूर, चलो आज मैं तुम्हें वीर सावरकर की कहानी सुनाता हूँ। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणतया वीर सावरकर के नाम से ही विख्यात थे।
0: अच्छा।
1: वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। उनके पिता दामोदर पंत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे।
0: अच्छा।
1: जब विनायक 9 साल के थे, तभी उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया था।
0: ओ नो।
1: विनायक दामोदर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे। उन्हें हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। उन्होंने जीवन भर हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के लिए कार्य किया।
0: अच्छा।
1: वे अखिल भारत हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए।
0: ओह माय गॉड।
1: 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया। 1943 के बाद दादर मुंबई में रहे। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही पढ़ाकू थे वो। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी।
0: ओह, बचपन में ही कविताएं?
1: फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। जब वे विलायत में कानून की शिक्षा हासिल कर रहे थे, तभी 1910 ईस्वी में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए। बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1940 ईस्वी में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आजादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई।

0: वो कौन सी?
1: जो मित्र मेला के नाम से जानी है। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए।
0: अच्छा।
1: जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई।
0: अरे वाह।
1: इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया।
0: अच्छा।
1: हाँ, जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई। परंतु इसके छपने की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे।
0: फिर क्या हुआ?
1: बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस तक पहुंच गई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया।
0: अच्छा।
1: मई 1909 में इन्होंने लंदन से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं दी गई। लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई।
0: अच्छा।
1: जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम हॉट कर्जन वाइली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था।
0: अच्छा।
1: 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु 8 जुलाई 1910 को एसएस मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सिवरहोल के रास्ते से भाग निकले।
0: अच्छा।
1: 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया।
0: अच्छा, ऐसा भी हुआ था?
1: हाँ। इस तरह सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए दो बार आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली और एक अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ, देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की।
0: क्या बात है, सावरकर जी की कहानी तो एकदम अनोखी लग रही है।
1: हाँ, सभी वीरों की गाथा ऐसी ही है, अनोखी।
0: लेकिन उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देना है, क्योंकि आपने ही कहा था ना कि देश के हित के लिए किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, इसलिए अपना योगदान जितना हो सके हमें जरूर देना है।
1: हाँ, बड़ी समझदार हो गई हो मनु।
0: आपसे ही तो सीखा है सब। लेकिन अब मेरी बारी है इसे इम्प्लीमेंट करने की। थ्योरी तो हो गई, लेकिन अब प्रैक्टिकल भी तो करना है।
1: मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
0: अच्छा पुराना स्तंभ जी, अब मैं चलती हूँ। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें पढ़ाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू करना है। थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 6 अध्याय में। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कला जिसमें श्री कृष्ण का नृत्य प्रेम, आनंद और भक्ति का संगम बन जाता है, उसी का नाम है नृत्य।

का माधुरी सोचिए जरा, जब कान्हा मुरली की धुन पर नृत्य करते हैं तो केवल कदम ही नहीं छिड़कते बल्कि वृंदावन की हर गली हर कुंज हर हृदय आनंद से झूम उठता है। गोपियों के साथ रासलीला बाल्यकाल की चंचल क्रीड़ाएं और भक्ति के साथ उनका नृत्य, यही है नृत्य माधुरी का सार। यह कला हमें बताती है कि ईश्वर का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति का उत्सव है। हर लय में छिपा है प्रेम, हर ताल में छिपा है आनंद और गति में छिपा है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संदेश। तो आइए आज के इस अध्याय में हम डूब जाए उस माधुरी में जो श्री कृष्ण के नृत्य को अमर बना देती है। तो दोस्तों इसी गीत के साथ हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, तो सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

हर साल में प्रेम का अनुभव है और गति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संगम है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं हम एक सुंदर और प्यारा दूसरा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने रासलीला रची तो यह केवल एक नृत्य नहीं था, यह दिव्य अनुभूति थी। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। ये अद्भुत लीला हमें बताती है कि ईश्वर हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं और उनके आनंद को अपना आनंद बना देते हैं। राधा और श्री कृष्ण का नृत्य इस कला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह नृत्य केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का दिव्य संगम है। जब राधा और श्री कृष्ण एक साथ नृत्य करते हैं तो वो क्षण भक्ति का उत्सव बन जाता है। गोपियों की आंखों में प्रेम, उनके हृदय में भक्ति और उनके कदमों में लय सब मिलकर उस रासलीला को अमर बना देते हैं। इस कथा का अंश से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर का नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। हर ताल में छिपा है प्रेम, हर गति में छिपा है आनंद और हर लय में छिपा है भक्ति का अमरूद। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, नृत्य माधुरी हमें यह सिखाती है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्याग देते हैं तो हम ईश्वर की लय में झूमने लगते हैं। कृष्ण का नृत्य हमें यह संदेश देता है कि सच्चा आनंद केवल ईश्वर के साथ एकत्व में है। जैसे रासलीला में हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है, वैसे ही जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे साथ है। उनकी लय हमें यह बताती है कि सुख दुख उतार चढ़ाव सब जीवन के नृत्य का हिस्सा है। जब हम इन सब को भक्ति और प्रेम से स्वीकार करते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। नृत्य माधुरी का दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन को केवल संघर्ष या मोह का जाल न समझे, बल्कि उसे ईश्वर के साथ नृत्य की तरह देखे। हर कदम में भक्ति, हर ताल में प्रेम, हर गति में आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही है नृत्य माधुरी का साथ। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों श्रीमद् भागवत में एक श्लोक कहा गया है, रसे रम्य हरि वंदे। इस श्लोक का भावार्थ है कि रास लीला में श्री कृष्ण का नृत्य अद्वितीय और रमणीय है। यह नृत्य केवल कला नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का उत्सव है। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला में नृत्य करते हैं, तो हर गोपियों को लगता था कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यही है ईश्वर का दिव्य संदेश कि वह हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं और उनके आनंद में सहभागी बनते हैं। नृत्य माधुरी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का नृत्य आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। हर ताल में प्रेम, हर गति में आनंद और हर लय में भक्ति का अमृत छिपा है। यह हमें बताता है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है और जब हम अहंकार व मोह को त्याग कर ईश्वर की लय में झूमते हैं, तभी सच्चा आनंद प्राप्त होता है। इस श्लोक का दर्शन हमें यह प्रेरणा देता है कि भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रेम और आनंद का उत्सव है, जहाँ हर जीव ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करता है। तो दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

का हर क्षण ईश्वर की लय में नृत्य करने जैसा है। जब हम अपने अहंकार और मोह को त्याग कर भक्ति की धारा में बहते हैं तो जीवन स्वयं आनंद का उत्सव बन जाता है। अब हमारी श्रृंखला का अगला अध्याय होगा वाद्य माधुरी, यानी श्री कृष्ण की वाद्य यंत्रों की मधुरता, वह संगीत जो केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य संदेश है। मुरली की तान, मृदंग की लय और वीणा की मधुरता सब मिलकर कृष्ण की वाद्य माधुरी को अमर बना देते हैं। तो श्रोताओ, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कृष्ण के वाद्य यंत्र केवल संगीत नहीं बल्कि भक्ति का साधन है जो हर हृदय को प्रेम और आनंद से भर देता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सुनते रहो, सुनते रहो रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिय आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। आपके साथ आरजे संजय। दोस्तों, 21 मई का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन 1991 में तमिलनाडु में एक आत्मघाती बम हमले में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ये हमला श्रीलंका के अलगाववादी संगठन द्वारा किया गया था। राजीव गांधी के समेत 15 लोग मारे गए, 43 लोग घायल हुए। यह घटना भारत के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक आतंकवादी हमला माना जाता है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी कारण भारत सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित किया। सरकारी संस्थानों और विद्यालय में शपथ दिलाई गई, हम आतंकवाद और हिंसा का विरोध करेंगे। तो दोस्तों, आज हम राजीव गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान हमें प्रेरणा देता रहेगा। आइए हम सब मिलकर शांति, प्रेम और एकता का मार्ग अपनाइए। तो चलो सुनते हैं इसी के साथ एक सुंदर सा गीत।

प्रिय दोस्तों, हम बात करेंगे 12 मार्च 1993 की उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इस दिन मुंबई शहर में एक के बाद एक कई स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके हुए, चारों ओर अफरा तफरी मच गई, लोग भय और असुरक्षा से घिर गए। इन धमाकों में सैकड़ों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र ठहर गया और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस घटना का उद्देश्य समाज में भय और अस्थिरता फैलाना था, लेकिन इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया और लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध किया। 12 मार्च हमेशा याद दिलाता है कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे।

प्रिय दोस्तों, हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2001 की उस घटना की जिसने लोकतंत्र की नींव को हिला दिया। उस दिन संसद भवन परिसर में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। 5 हमलावर नकली पहचान पत्र और वाहन स्टिकर का उपयोग कर परिसर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस समय कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी, लेकिन भवन में सैकड़ों लोग मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और बहादुरी से लड़ते हुए हमलावरों को रोक दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और सभी हमलावर मारे गए। ये हमला लोकतंत्र पर सीधा आघात था और देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चेतावनी साबित हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर संगीत।

आज हम बात करेंगे 26 नवंबर 2008 की उस घटना की जिसने पूरे समाज को गहरे दर्द में डाल दिया। उस दिन मुंबई शहर के कई प्रमुख स्थानों पर एक के बाद एक हमले हुए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरा होटल में लंबी मुठभेड़ चली। कैफे में निर्दोष लोग निशाना बने। धार्मिक क्षेत्रों पर बंधक संकट पैदा हुआ और विले पार्ले में टैक्सी में विस्फोट हुआ। चारों ओर गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और अफरा तफरी का माहौल। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से मोर्चा संभाला और लंबी लड़ाई के बाद हमलावरों को परास्त किया। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक सुंदर गीत।

14 फरवरी 2019 की उस घटना की जिसने पूरे देश को गहरे दर्द में डाल दिया। उस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। एक वाहन में विस्फोटक भरकर टकरा गया था और चारों ओर धमाके की गूंज फैल गई। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और कई घायल हुए। ये घटना देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। पूरे समाज में शोक और आक्रोश का माहौल था। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर सा गीत।

प्रिय श्रोताओ, इन घटनाओं की स्मृति हमें यह याद दिलाती है कि हिंसा और आतंक का कोई स्थान नहीं है। हमें मिलकर शांति का दीप जलाना है, प्रेम का संदेश फैलाना है और एकता की शक्ति को बनाए रखना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन सभी को जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। प्रिय दोस्तों, रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से इन सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

सेंग लाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

0: शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में,

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो,
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों का अपना महत्व है। उनमें से एक त्योहार है होली का त्योहार। होली हमारे जिंदगी में अनेक रंग लेकर आती है। बड़े छोटे सभी बड़े खुशी से होली का त्योहार मनाते हैं। होली के पहले दिन होलिका दहन भी किया जाता है। परमात्मा कहते हैं ये होलिका दहन हमारे अंदर के दुश्मनी, नफरत, विकार

आदि संस्कारों के दहन का प्रतीक है। जिस प्रकार होली में हम अपने अपने मतभेद भूलकर सभी को रंग लगाते हैं, उसके पहले दिन होलिका दहन करके हम अपने अंदर की नफरत को, नाराजगी को, अपने अंदर के हर एक कमी कमजोरियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे दिन सभी को अपने समान समझ खुशी से रंग लगाते हैं। होली के दिन ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई अपना है ना कोई दुश्मन है, सभी होली के रंग में रंग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, जब अपने अंदर की नाराजगी को, नफरत को, दुश्मनी को भुलाकर सच्चे रूप में होली मनाएंगे, तभी वास्तव में हम होली हंस बन जाएंगे। होली भी होली हंस बनने का ही प्रतीक है। परमात्मा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे होली हंस बनो। जैसे हंस मोती चुगता है कंकड़ नहीं, ऐसे हमें हंस बुद्धि बनना है। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। होली हंस अर्थात कंकड़ और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर रत्न धारण करने वाले। परमात्मा कहते हैं, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले बनो। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले नहीं बनो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना है। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हैं, जो व्यर्थ है उनको बदलना है। परमात्मा कहते हैं, अपनी वृत्ति को हंस वृत्ति बना लो। हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण के वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो, उनकी अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। अर्थात कोई कैसे भी वृत्ति से आपके पास आए, लेकिन आपके मन में उसके प्रति कल्याण की ही भावना हो, आप अपनी भावना से उसके मन के भाव को भी बदल दो, ये है हंस वृत्ति। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, a new way of responding, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां बांटो।
2: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि अपनी दृष्टि को होली हंस दृष्टि बना लो। होली हंस दृष्टि अर्थात सदा हर मनुष्य आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो, कैसा भी हो लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण कर लो। परमात्मा कहते हैं कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसके कर्म कैसे भी हो, लेकिन कभी भी उस आत्मा के प्रति हमारे मन में नफरत घृणा ना हो। हम उसे नफरत की दृष्टि से घृणा की दृष्टि से ना देखें, बल्कि उसे शक्तिहीन कमजोर अपने संस्कारों के परवश निर्बल आत्मा समझकर उस पर

रहम करे, उसे आत्मिक दृष्टि से, स्नेह की दृष्टि से ही देखे। इसे ही कहते हैं होली हंस दृष्टि। परमात्मा कहते हैं अपने आप को हंस मुख स्थिति में स्थित कर लो, अर्थात अपने मुख से कभी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के प्रति व्यर्थ बोल या नकारात्मक बोल ना निकले। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी का दिल दुखाया जाए या किसी भी आत्मा को दुख का अनुभव हो। हमारे मुख से ऐसे कोई भी बोल ना निकले जिससे किसी को दर्द हो। परमात्मा कहते हैं हमारा हर एक बोल दूसरों को सुख देने वाला हो। इसी को कहते हैं हंस मुख स्थिति। परमात्मा कहते हैं कि जब हम होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि और मुख ये सब जब होली हंस की तरह पवित्र बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देने लगता है। परमात्मा कहते हैं कि साधारणता को छोड़ हमें होली हंस की तरह श्रेष्ठता को ही चुनना है। परमात्मा कहते हैं होली हंस बुद्धि बनाने के लिए परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि यह राइट है या रॉन्ग है। अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तभी ही ज्यादा व्यर्थ समय जाता है, और व्यर्थ लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ सही सोच रही हूँ, जो मैंने कहा वही सही है, इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति समय की शक्ति वाणी की शक्ति सभी चली जाती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले क्या सही है क्या गलत है इसे परखना सीखो, तभी ही होली हंस बुद्धि बन पाओगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो आप यह नहीं सोचो कि ये तो है ही बुरा, ये तो है ही ऐसा। परमात्मा कहते हैं गिरे हुए को और नहीं गिराओ, उसे आधार देकर ऊपर उठाने की कोशिश करो। इसी को ही कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भी भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करना है। परमात्मा कहते हैं जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो, स्वपरिवर्तन करने की कोशिश करते हो, तब आपका प्रभाव औरों पर भी पड़ेगा और वो भी खुद को बदलने की कोशिश पहले स्वयं को बदलने के लिए प्रयत्न करना है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM।

0: खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुते हो, परमात्मा कहते हैं होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली मनुष्य आत्मा। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल के और स्वच्छता स्वरूप होंगे। परमात्मा कहते हैं तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ रहे। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो साफ हो लेकिन मन से साफ न हो स्वच्छ न हो तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर ही परमात्मा राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात पवित्रता है। परमात्मा कहते हैं जो तन मन संबंध से पवित्र है वही वास्तव में होली हंस है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस मूर्ति से इस शरीर को स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखना है। परमात्मा कहते हैं कि तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। परमात्मा कहते हैं देहभान में स्वच्छता नहीं होती लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छता पवित्रता की खुशबू आती है। परमात्मा कहते हैं तन के साथ साथ मन को भी स्वच्छ और पवित्र रखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का नहीं कहेंगे। मन को पवित्र बनाने के लिए परमात्मा हमें मंत्र देते हैं मन मना भव अर्थात अपने मन को एक परमात्मा में लगाना। इसी से ही हमारा मन पवित्र बनेगा। परमात्मा कहते हैं और अगर किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता है, इसे पवित्रता नहीं कहेंगे। परमात्मा हमें दिल की स्वच्छता रखना भी सिखाते हैं। दिल की स्वच्छता अर्थात सभी के प्रति कल्याण की भावना हो। जब हम औरों के कल्याण की भावना से उन्हें परमात्मा का परिचय देते हैं उनकी सेवा करते हैं तो इसी को दिल की स्वच्छता कहा जाता है। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। सेवा में भी सच्चाई सफाई हो। हमारे दिल में औरों के कल्याण की ही भावना हो। परमात्मा कहते हैं कि संबंध में भी स्वच्छता पवित्रता हो। हमें स्वयं से भी संतुष्ट रहना है और औरों से भी। अगर हम खुद से नाराज रहेंगे या औरों से भी नाराज रहेंगे तो ये भी स्वच्छता नहीं है, ये भी संबंधों में पवित्रता नहीं है। नाराजगी अस्वच्छता का प्रतीक है और संतुष्टता स्वच्छता का पवित्रता का प्रतीक है। परमात्मा कहते हैं खुद से

संतुष्ट रहो और औरों से भी संतुष्ट रहो। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसीलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकर दोनों को परखता है फिर निर्णय करता है, उसके बाद ही मोती ग्रहण करता है और कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया गया है। परमात्मा कहते हैं परमात्मा ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। परमात्मा कहते हैं पवित्रता को धारण करने के लिए पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस में सबसे पहली विशेषता है परखना अर्थात पहचानना। परमात्मा कहते हैं आपको भी हर मनुष्य आत्मा को परखना है और उसके अंदर की विशेषताओं को

विशेषताओं को परख लोगे तभी तो अपने अंदर धारण कर पाओगे और वही वास्तविक अर्थ में होली हंस बनना है। परमात्मा कहते हैं, परखने की शक्ति यथार्थ होगी, श्रेष्ठ होगी तो निर्णय भी यथार्थ होगा। परमात्मा कहते हैं, अपने मन में उठने वाले हर संकल्प को भी परखना है कि ये संकल्प सही है या रॉन्ग है। जो समर्थ संकल्प होंगे वो आत्मा की शक्ति बढ़ाएंगे और जो निगेटिव व्यर्थ संकल्प होंगे वो हमें शक्तिहीन बनाएंगे। परमात्मा कहते हैं, सबसे पहले अपने संकल्पों को परखना सीखो। परमात्मा कहते हैं, जो समर्थ संकल्प होंगे उन्हें अपने जीवन में धारण करो, अर्थात अपने कर्मों में लाओ, और जो व्यर्थ निगेटिव संकल्प होंगे उन्हें रिजेक्ट करना सीखो, अर्थात उन्हें ज्यादा महत्व ना देते हुए उन्हें नकारना है। परमात्मा कहते हैं, एक सुंदर बगीचे का निर्माण करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और उसी जगह जंगल का निर्माण करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो अपने आप उगाते हैं। परमात्मा कहते हैं, इसी प्रकार मन में श्रेष्ठ संकल्प चलाने पड़ते हैं, उनका निर्माण करना पड़ता है। साधारण और व्यर्थ संकल्पों के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हमें अपने व्यक्तिमत्व का निर्माण करना है तो हमें रचयिता बनना होगा और श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करना होगा। परमात्मा हमें होली हंस बनने की शिक्षाएं देते हैं। श्रुति हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

विनायक दामोदर सावरकर अदम्य साहस के प्रतीक, अद्भुत कर्मयोगी, विलक्षण क्रांतिकारी, अद्वितीय वक्ता और बेहद प्रतिभाशाली साहित्यकार। लेखन का गुण तो मानो सावरकर को जन्मजात मिला था। जिंदगी के हर मोड़ पर अलग अलग घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने काव्य की रचना की थी। 1906 में वे मुंबई छोड़कर विलायत चले गए। उद्देश्य था बैरिस्टर बनना। उनके विलायत प्रवास के दौरान उनके प्रथम पुत्र प्रभाकर की मृत्यु हो गई। प्रभाकर की उम्र उस वक्त मात्र 4 साल की थी। यूरोप में जब सावरकर को पुत्र की मृत्यु की खबर दी गई तो उन्होंने अपने दर्द को बयां करने के लिए एक बार फिर लेखन का सहारा लिया और एक गीत की रचना कर डाली। उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम ना था, सारा घर ले गया घर छोड़कर जाने वाला। आइए सुनते हैं एक पिता के मन की व्यथा का उद्गार इस मार्मिक गीत में।

अंग्रेजी हुकूमत ने सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई थी। वे ऐसे राजनीतिक बंदी थे जिन्हें दो जन्मों का कारावास मिला था। जब वे अंडमान की जेल में बंद थे तो उनके पास लिखने के लिए कागज और कलम की सुविधा न थी, मगर दृढ़ निश्चय वाले सावरकर ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। उन्होंने जेल की दीवारों पर कीलों, कांटों और यहां तक कि नाखूनों से विपुल साहित्य का सृजन किया। उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियां उनके सहबंदी भी कंठस्थ कर लेते और फिर वो सारे देशवासियों तक पहुंचा दी जाती। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आइए सुनते हैं अंडमान की जेल में सावरकर द्वारा लिखित एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे अमित चक्रवर्ती और मेहर हाजरा। संगीतकार थे तापसी श्रीधर नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरे जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद
2: विथ ब्रह्मकुमारीज. नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
3: थैंक यू सो मच.
2: हम लोग एक्सेप्टेंस की और टॉलरेंस की बात कर रहे थे शक्ति की. तो उसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर करना था एक पॉइंट.

0: तो रहेगी नहीं. एक्सेप्टेंस अलाउज टू यू टू बी फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ डिनायल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, क्रिएटिंग अ न्यू पाथ एंड अ न्यू लाइफ फॉर योरसेल्फ.
1: सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम. इसकी इतनी गहराई है इस लाइन के अंदर कि एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि आप गिव अप कर रहे हैं किसी चीज पर. एक्सेप्टेंस जस्ट मीन्स कि जो डिनायल मोड में आप चल रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो सकता है, इसको चेंज होना ही पड़ेगा इस बात को.
0: या मैं क्यों मानू, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, ये मेरा प्रॉब्लम था, व्हाई शुड आई, अगला क्यों नहीं चेंज होता.
1: डिनायल मोड, और इस डिनायल मोड में हमारी शक्ति वेस्ट हो रही है. और उसने लिखा कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो यू विल बी क्रिएटिंग अ न्यू पाथ इन योर लाइफ. तो इसको अगर हम
0: फ्री भी कहते हैं ना, अपने आप को फ्री भी हो जाएंगे, आप
1: फ्री हो जाएंगे अपनी आंतरिक उलझनों से. जब एक्सेप्ट कितनी चीजों को हम करते हैं, जैसे हमने पहले देखा लोगों को एक्सेप्ट करना, फिर हमने देखा सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना. दो एनर्जीज है, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको रेजिस्ट करेंगे. चेंज नहीं कर सकते हम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई व्यक्ति है, कोई बात है, कोई सीन है, कोई ट्रेजेडी भी हो गई है, या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या हम उसको रेजिस्ट करेंगे. हम उसको चेंज नहीं कर सकते.
0: एक्सेप्ट रेजिस्ट, चेंज नहीं कर सकते. या एक्सेप्ट करेंगे या रेजिस्ट.
1: अच्छा, सपोज आपके अंदर कोई संस्कार है, ठीक है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ तो मेरा मन एक्सेप्ट किया मीन्स आई एक्सेप्ट दिस इज दिस, फुल स्टॉप. उसके ऊपर कोई और थॉट नहीं चलेगी. अब एक्सेप्ट, रेजिस्ट किया, क्यों है, कैसे है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कमाल है, ऐसे भी कोई होता है. अच्छा, फिर इतनी बार समझा दिया फिर भी ऐसे होता है. चलो पहले नहीं था संस्कार, समझाने के बाद तो ठीक हो जाना चाहिए ना. दिस इज रेजिस्ट. आई फील कि रेजिस्ट करने से हम चीजों को बदल देंगे ना. हम कहते रेजिस्ट करने से हमें लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, हम उनको बदल देंगे, लेकिन रेजिस्ट करने से हम उनको नहीं बदल सकते, सिचुएशन को भी नहीं बदल सकते. हम सिर्फ अपनी शक्ति को वेस्ट करते जाते हैं. वी थिंक ये करने से चेंज आ जाएगा बाहर. बाहर चेंज नहीं आता, अंदर चेंज आ जाता है कि हमारी बैटरी कम होने लगती है, हमारी पावर कम होने लगती है, हम अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं. तो हर बार जब अपने मन की स्थिति को चेक करें तो जस्ट चेक, दिस इज जस्ट टू वर्ड्स सारा दिन, एम आई एक्सेप्टिंग और एम आई रेजिस्टिंग. रेजिस्टिंग मीन्स नॉट अप्रूविंग ऑफ थिंग्स एज दे आर. जैसे आपने कहा ये लोकेशन है, इसको अगर रेजिस्ट करते हैं ये चीज नहीं बदल जाएगी, मौसम भी नहीं बदल जाएगा, लोग नहीं बदल जाएंगे, हम सिर्फ सोच सोच के उसके बारे में अपनी शक्ति को वेस्ट करेंगे.
0: सिस्टर जैसे यहाँ से भी ट्रक गई, हमने पॉज किया, चली गई, फिर शूट कर अपने काम पे लग गए. लेकिन रियल लाइफ में वो जो ट्रक गई थी वो बाद में भी याद आती रहती है, वो गई क्यों थी. मैं तो
1: बाद में
0: कर
1: इसलिए
0: गया.
1: याद आती
0: नहीं
1: है.
0: मैं तो पॉज कर गया, उसको जाने दिया.
1: लेकिन उस टाइम हम पॉज नहीं करते, इसलिए बाद में याद आती है. अभी जब ये ट्रक गई, पॉज किया, कहाँ पॉज किया, दो जगह पॉज किया, एक काम में पॉज किया कि काम रुका, दूसरा मन ने भी पॉज किया. मन ने कहा ट्रक जा रही है, वेट, तो मन ने भी पॉज किया.
0: वो पासिंग है सिस्टर,
1: पासिंग ही है.
0: अगर मेरी वाइफ या किसी का हस्बैंड ऐसे हो, वो पासिंग थोड़ी है, वो तो रोज का ट्रक का आवाज है.
1: तो वो तो और भी इम्पोर्टेंट है एक्सेप्ट करना, क्योंकि रोज ही
0: एक्सेप्ट की बात ही कर रहा हूँ. दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ट्रक गई, हम पॉज किए, हम अपने वापस अपने काम पे लग गए, अपनी ओरिजिनलिटी पे. ओके, वहां पर उसने कुछ बोला, उसकी आदत से वो मजबूर है, वो हो गया और मैं अपने काम पे लग गया. नहीं होते जाने के बाद भी, ये कब तक से हूं?
1: वो जाने के बाद क्यों होता है,
0: कब तक एक्सेप्ट करूं, मैं ही करती
1: रहूं? जाने के बाद इसलिए

0: है क्योंकि उस टाइम जब पॉज वाला पीरियड था उस टाइम एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी देखो ये ट्रक गई, पॉज किया, काम रुका, लेकिन मन साइलेंट है,
1: वो गारंटीड थी कि चली जाएगी 3 सेकंड
0: ठीक
1: में।
0: है फाइन। लेकिन इसमें ये भी ऑप्शन थी कि वो 3-4 सेकंड में जब पास करती है ना, अगर हम पहले अनअवेयर थे, वो 3-4 सेकंड में हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट किया करते थे, अभी
1: हाँ
0: शुरू किया, अभी ट्रक चला गया, कमाल है,
1: पता नहीं
0: कितनी
1: हमारे
0: मेहनत करी।
1: कैमरामैन को ये इस जगह क्यों मिली, थोड़ा सा रोड से दूर क्यों नहीं किया, ये वहां भी कर सकते थे, राइट।
0: रोज तो ट्रक जाती नहीं, आज पता नहीं क्यों ट्रक इस टाइम चली गई। अच्छा अब एक गई है, शायद थोड़ी देर बाद दूसरी भी जाएगी। अच्छा अगर बार बार ऐसे ही ट्रक जाती रही तो फिर काम कैसे होगा
1: तो
0: आज?
1: छोड़ते तो लोकेशन ही बदल देते।
0: दिस इज इट, दिस इज रेजिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि 3 सेकंड की सीन में भी हम पहले एक्सेप्टिंग थे,
1: ये पॉइंट तो नया है
0: हम
1: मेरे लिए।
0: नहीं थे। ये अवेयरनेस है कि पहले हम उस 3 सेकंड में भी इतने सारे थॉट्स क्रिएट करके अपनी पावर को वेस्ट कर देते हैं।
1: नहीं, अनडिस्टर्ब बाय दैट पॉइंट वापस शुरू करते, ऐसा चेहरे से लगता भी नहीं कि यार डिस्टर्बेंस आ गया और मजबूरी हम शूटिंग कर रहे हैं।
0: अगर 3 सेकंड की सीन जब ट्रक पास हुआ उतनी देर में अगर थॉट्स क्रिएट की, तो फिर उसका इम्पैक्ट बाद में भी रहता है कि बाद में भी जब हम दिन में बैठते ना, कमाल है आज तो ना सुबह सुबह ही ट्रक निकल गया उधर से।
1: नहीं, और हमको मालूम भी था, क्रू को भी जानना चाहिए, इतना भी नहीं सोचते, सुबह का टाइम है, कुछ भी लंबा
0: तो
1: चल सकता था
0: मतलब
1: वो
0: हाँ
1: भी।
0: लंबा चल सकता था वो भी। मतलब क्या होगा कि उस 3 सेकंड के सीन में मन ने क्या रजिस्टर किया और मन ने क्या रिकॉर्ड किया? अगर वो 3 सेकंड का सीन साइलेंटली क्रॉस हो जाता तो उसके बाद वो कभी रेफर नहीं होगा जीवन में।
1: यहां मैं आपको रोकूंगा, इसी तरह ये इसको एक्सेप्ट किया, इस
0: पर
1: तरह
0: इसका हमें डिफरेंस दिखा, ये डिफरेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा ट्रक आया, ट्रक गया, पता था, लेकिन तो भी उस 3 सेकंड के सीन में दो ऑप्शन थे। वन, नो थॉट्स। नो थॉट्स मीन्स ओके, लेट्स जस्ट वेट, इट विल पास, दिस वॉज द थॉट, एंड साइलेंट। यहां नथिंग हैपेंड, द माइंड इज एकदम साइलेंट। सेकेंड ऑप्शन था कि वो 3 सेकंड में बहुत सारी थॉट्स क्रिएट कर दी, तो यहां बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो गई। अगर रिकॉर्डिंग हो गई मीन्स थॉट्स बहुत सारी क्रिएट हो गई, तो बाद में दिन में या कई बार कुछ दिनों तक उस बात की बैक रेफरेंस होगी, मतलब बार बार उस बात को रेफर करेंगे। कल सुबह भी जब शूटिंग शुरू करेंगे ना, तो पहले कहेंगे देखो कोई ट्रक तो नहीं आने वाला सामने से, इतना बैक रेफरेंस होगा बार बार उस सीन को, क्योंकि उस 3 सेकंड में इतना रजिस्टर हो गया वो। लेकिन अगर उस 3 सेकंड में कुछ रजिस्टर नहीं हुआ, मतलब साइलेंटली उस 3 सेकंड को क्रॉस कर लिया, उसके बाद जीवन में उस ट्रक को फिर से नहीं रेफर करेंगे, क्योंकि यहां कुछ रजिस्टर नहीं हुआ। हाउ मच इज द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस?
1: एक माँ एक छोटे से बच्चा, समझो 1 साल भर का 1.5 साल का बच्चा है, उसको कितना अच्छा एक्सेप्ट करती है वो। कोई ऐसा वो नहीं होता रजिस्टर, ये कल ये किया था, इतना तंग किया, कुछ नहीं।
0: 1.5 साल का बच्चा है, उसने दूध भी गिराया, खाना भी किया, इधर ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। शी एक्सेप्ट विद नॉलेज। नॉलेज क्या है कि 1-1.5 साल का बच्चा है ना, तो ये सब तो करेगा ही। वो ही चीज, एग्जैक्टली वो ही चीज अगर वो बच्चा 5 साल की एज में करे, वो ही बच्चा है, वो ही माँ है, वो ही रिश्ता है, वो ही एक्ट है, लेकिन 5 साल की एज में वो माँ वो एक्सेप्ट नहीं करेगी ना।
1: उतना ही बोलेगी ना, बेटा तुम बड़े हो गए, नो मोर ऑफ दिस।
0: नो, इतना नहीं बोलेगी, आता भी नहीं, गिरा दिया, समझ में, इतने बड़े हो गए, खाना भी नहीं खाना आता। फिर अगले दिन जब वो खाने बैठेगा, अब ध्यान से खाना, कल की तरह गिराना नहीं वापस, तुम क्लमजी हो गए हो, तुम्हारे हाथ से तो गिरता रहता है बहुत कुछ। फर्क क्यों? क्योंकि 1.5 साल की 1 साल की एज में मदर को पता है ये नेचुरल है, इसको एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट क्या, रजिस्टर ही नहीं होता ना कुछ। एक्सेप्टेंस मीन्स नथिंग,
1: तो होना ही है
0: नॉलेज, ये नॉलेज है ना। 5 साल की एज में ऐसा नहीं होना चाहिए, विच इज राइट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर मुझे नॉलेज है कि मेरा भी कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट है जो कभी भी सामने आ सकता है, अगर मुझे नॉलेज है कि सामने वाले का भी कोई कार्मिक अकाउंट है जो कभी भी सामने आ सकता है, इतनी सब जब नॉलेज है, तो ये उतनी ही नॉलेज है जितनी उस माँ को थी कि वो 1 साल का बच्चा ऐसे ऐसे कर

0: फिर देश काल पात्र देख के बोलना है।
1: देश काल पात्र पहले यहाँ ठीक है बोलने के टाइम,
0: दोनों का देखना है।
1: अपना अगर ठीक होगा ना,
0: आदमी गुस्से में तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे आप कितना भी समझाओ थोड़ी समझेगा वो,
1: ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी वाइब्रेशन अगर ठीक रेडिएट हो जाएगी,
0: ये
1: हमारी स्थिति अगर ठीक होगी तो हमारा बोलने का तरीका भी कैसा होगा,
0: इसको कैसे ठीक रखें।
1: सी, रेजिस्टेंस की एनर्जी जब जाती है, सपोज आई रेजिस्ट व्हाट यू आर डूइंग अंदर कि क्यों है क्यों है क्यों है, एंड देन आई से समथिंग टू यू, तो आपका अहंकार जो है वो डिफेंसिव पे आ जाएगा, आप तुरंत डिनाई करेंगे उस बात को क्योंकि मैंने ऑलरेडी रेजिस्ट करके वो एनर्जी भेज दी है। तो रेजिस्टेंस की एनर्जी जाने से सामने वाले का भी उस बात को एक्सेप्ट करने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक्सेप्टेंस की एनर्जी भेजी है, अगर मैं आपको रेजिस्ट करूं फिर मैं जो राय दूंगी आप उसको रेजिस्ट करेंगे, डेफिनेट मैं अंदर आपको रेजिस्ट करूंगी मन में, बाहर भले अच्छे से बात करूंगी लेकिन आप फिर भी उस राय को रेजिस्ट करेंगे।
0: लास्ट टाइम जो आपने एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस का जो बताया था, तो हुआ यूं कि आज सुबह मैं जरा जल्दी उठ गया था, तो क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो मैं किचन में गया। मैंने बोला मैं अपनी चाय खुद बना लूं, कहां किसी को उठाऊं थोड़ा जल्दी उठने से, तो मैं किचन में गया तो देखा कि दूध नंगा, ये इधर उसके ऊपर कवर नहीं, तो डू यू नो समथिंग, मेरे अंदर इतना भी गुस्सा नहीं है कि कितने अकल नहीं है कि दरवाजे खुले हैं और जंगल है इधर, कुछ भी कीड़ा आ सकता है, ये कुछ नहीं है। तो जैसे मैं पानी उबाल के अपना बनाने लगा था, एक कुकर एक लेडी आई, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला मुझे एक प्लेट देंगे खाने की, तो खाना खाने में मैंने बोला प्लेट दे दीजिए, तो प्लेट लेके उसके सामने मैंने दूध को कवर कर दिया, अपनी चाय बना के चला गया,
1: फिनिश्ड। तो ठीक किया राइट, एंड फिर ये नहीं है कि सिचुएशन को ऐसे का ऐसे छोड़ दिया, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार हम कहते हैं एक्सेप्टेंस मीन्स अंदर उसके बारे में इतना सोच सोच के उस बात को रेजिस्ट नहीं करेंगे, जैसे ही एक्सेप्ट किया एनर्जी अच्छी गई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर उस
0: सिचुएशन।
1: लेकिन अगर बोलना भी होता है तो देन इट
0: डजंट मैटर, बराबर हो गया ना, करके दिखा दिया।
1: सी, हमारा जो रोल होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली में, रोल डिमांड्स दैट वी हैव टू गिव एडवाइस, हैव टू, वी नीड टू।
0: मन में आए कैसे करूं,
1: आज वो अलग चीज वैसे, लेकिन एडवाइस राय देने से पहले एक्सेप्टेंस अंदर।
0: इतना डिफरेंस हुआ मुझे मेहनत करने में, नॉट मेहनत, अवेयर, बीइंग अवेयर,
1: नेचुरली आ गया। अब इतना छोटा सीन है ना अगर ये देखा जाए तो, लेकिन ये छोटा सीन अगर यहाँ एक ग्रूव क्रिएट कर दे, ये लंबी चलेगी रिकॉर्डिंग सर।
0: ये बात मैं सिस्टर सोच रहा था कि मैं इतनी मोटी मोटी स्पिरिचुअलिटी की और ज्ञान की किताबें पढ़ता हूँ और फिर भी टेंस्ड रहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप बताते हैं ना प्रोग्राम में, ये छोटी सी चीज पे आई एम फीलिंग सो डिफरेंट, आई फील कि मैंने कुछ सीखा आज,
1: यही तो सीख लिया। अब इसको सारा दिन में यूज करते जाएंगे ऐसे,
0: और मेरी आत्मा की जो शक्ति आप बोले डिप्लीट होती, डिप्लीट होने की जगह और चार्ज हो गई,
1: बढ़ गई, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें अफर्म हुआ कि एक्सेप्ट करने की पावर मेरे अंदर है, मतलब हम ऐसे ही नहीं यूज कर रहे उसको सारा दिन।
0: वी हैव वन मोर चॉइस
1: नाउ इन दिस सेम सिचुएशन, पहले रेजिस्ट करते ना आप, पहले कभी ये बात आई होती तो आप रेजिस्ट करते ना।
0: मैं थोड़ा सा प्यार से बोलता लेकिन वर्ड्स अच्छे यूज कर लेते, मैंने बोला अभी देखी ना कचरा भी गिर सकती है भी, मैं पी जाता ये।
1: इम्पोर्टेंट अंदर क्या करते,
0: अंदर तो मैं यहाँ तक शूटिंग तक आपको व्यस्त है, वो बोलते हैं वो थॉट चलती ही रहती,
1: बस दिस इज द डिफरेंस।
0: अगली बार मैं सोच समझ के उधर का दूध बाद भी नहीं लगा,
1: दिस इज द डिफरेंस कि क्या करता है एक्सेप्टेंस और रेजिस्टेंस अंदर के मन को। जैसे ये फ्रीडम वर्ड बहुत प्यारा है कि अंदर वी विल एक्सपीरियंस फ्रीडम व्हेन वी एक्सेप्ट अ सिचुएशन और अ पर्सन, एंड हम डिनायल मोड से हट जाएंगे। डिनायल मीन्स ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये ऐसा, हमारे ये करने से वो वैसा बन नहीं जाएंगे। एक्सेप्टेंस की एनर्जी दूसरे के अंदर भी एक्सेप्टेंस की एनर्जी क्रिएट करना शुरू करता है।
0: आई वुड रादर यूज द वर्ड फ्रीडम फ्रॉम पेन,
1: इट इज फ्रीडम फ्रॉम पेन, फ्रीडम फ्रॉम कन्फ्यूजन, फ्रीडम फ्रॉम वरी, फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, एवरीथिंग इज अ लॉट टू डू विद रेजिस्टेंस। ये दो वर्ड्स जो है ना,

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

अपने हाथों से ही मैं डोली में तुझे बिठाऊं। उस दिन मुझको छोड़ के तू ऐसी दुनिया में जाए, हर एक लड़की जहाँ सवा बचाओ के फिर ना आए। लुटा रहेगा बेचारा तेरा मामा, लुटा रहेगा।

नटखट बंटी। पात्र परिचय। पापा के रूप में सैंडी, मम्मी के रूप में कृष्णा, बंटी के रूप में आदित्य और नरेटर शशिकांत। बंटी के पापा घर के फिजूल खर्चों से बहुत परेशान थे।

0: बिजली का बिल, फोन का बिल, केबल का बिल, पेपर का बिल, ओ मेरी तो पूरी तनख्वाह इन बिलों में चली जाती है।
1: हाँ पापा, और मेरी स्कूल की फीस में भी तो काफी खर्चा होता है।
0: हाँ बेटा, कल्चर एक्टिविटी चार्ज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, ना जाने क्या क्या चार्ज देने पड़ते हैं।
1: पापा, एक आइडिया है खर्च बचाने का।
0: वो क्या है?
1: पापा, मैं अपने स्कूल से नाम कटवा लेता हूँ, काफी खर्च बच जाएगा।
0: चुप रहो शरारती बंटी, जब देखो तो पढ़ाई से बचने का तरकीब सोचते रहते हो।
1: सॉरी पापा, मैं कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ खर्च कम करने की।
0: ये हुई ना बात, खर्च बचाना ही है तो फिजूल खर्च बचाओ, ना कि जरूरत की चीजों की कटौती करके स्कूल जाना ही छोड़ दो।
1: पापा, ये फिजूल खर्च क्या होता है?
0: फिजूल खर्च मतलब बेवजह के खर्च, जैसे बगैर जरूरत के सामान खरीदना, टीवी फालतू चलाना, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए गाड़ी की सवारी और मुफ्त में पेट्रोल को बेकार जलाना।
1: पापा बस, मैं समझ गया, आज से इस घर में फिजूल खर्च बंद।
2: वाह बंटी, बहुत समझदार हो गई हो। मैंने गलती से गैस खुला छोड़ दिया था, तुमने फौरन बंद कर दिया।
1: हाँ मम्मी, आखिर फिजूल खर्च बचाना है।
0: बंटी, जाओ गोपाल के साथ मेरे स्कूटर पर और लॉटरी से मेरे कपड़े प्रेस करा लाओ।
1: नहीं पापा, स्कूटर से पेट्रोल जलेगा और लॉन्ड्री में प्रेस कराने से खर्च बढ़ेगा, मैं घर पर ही आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ।
3: पापा ऑफिस जाते वक्त अपना नया शर्ट पहन रहे थे, तभी चीख उठे।
0: ओ नो, ये मेरे नए शर्ट रोशनदार कैसे बन गए?
1: सॉरी पापा, प्रेस करते वक्त प्रेस जड़ा ज्यादा गर्म हो गई थी।
0: भाई बंटी, खर्च बचाने की तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारा काम नहीं है, इस तरह तो तुम और भी मुसीबत बढ़ा दोगे।
2: बंटी जरा देख कर आना, काम वाली बाई क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं है?
1: नहीं मम्मी, बाई को तो मैंने मना किया है, वो क्या है कि फिजूल खर्च बचाना है।
2: ओ नो, फिजूल खर्चे के चक्कर में ये लड़का जीना ही हराम कर देगा। बंटी आज से तुम खुद की फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करो, ना कि घर बार को डिस्टर्ब करो।
3: रात को बंटी महाराज अंधेरे में बैठकर टीवी का प्रोग्राम देख रहे थे।
2: अरे शरारती बंटी, क्या तुमने होमवर्क कर लिया और ये अंधेरे करके टीवी क्यों देख रहे हो?
1: ओ मम्मी, आपने ये तो कहा था कि खुद की फिजूल खर्चे पर कंट्रोल करो, इसलिए अंधेरा करके बिजली का बिल बता रहा हूँ।
3: मम्मी ने समझाया कि अंधेरे में टीवी देखने से आंखें खराब होती है, और इस तरह बंटी को फिजूल खर्च क्या है ये समझाने में मम्मी पापा को काफी मेहनत लगी।

वही तो कमाल की बात है लता जी की कि वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी कलाकार है, मगर वो कभी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचती कि मैं, हाँ मैं तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं लता मंगेशकर हूँ, तो मैं कोई भी वक्त कोई भी गाना किसी भी तरह गा लूँ। हम सबके लिए उन्होंने गाया, मेरे से पहले वालों के जेनरेशन के लिए भी गाया और आज तक गा रही हूँ। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती हैं।

0: کھیت ذرا یہ کھولو کھیت ذرا یہ کھولو
1: کھولو
0: پریم پہلی

0: पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।
1: लंबी कल में बाल अवारा पैंट का बना पजामा, अरे लंबी कल में बाल अवारा पैंट का बना पजामा, कान का बापू बाल ना खाकर

खर्चूंगी। अरे आओ कमेटी वालों लगाओ इनसे टैक्स खर्चूंगी। भारी पेटी कोट के ऊपर कब्जा करके लूंगी, अरे कब्जा करके लूंगी। तौबा तौबा आग की छोरी बन गई एक ड्रामा, एक सुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, ऐसी लगती जैसी लगी हो डबल रोटी को टांगे, और डबल रोटी को टांगे ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा।

क्यों ठीक है जवाब तो दे। अरे मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने। अच्छा ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू तू जाने। अरे दुनिया वाले क्या जाने ये तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।

0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

1, 2, 3, 4. La la la la. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1, 2, 3.

چل کے تیری چل کے تیری آنکھوں سے

0: चलो चलो घंटे बज गए, चलो चलो।
1: क्यों बिल्लू कैसे लगा?
2: बहुत अच्छा
1: लगा ना।
0: चल चल जाओ जाओ जाओ।

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी।

चलोगे आत्म लोगे रूठ के हमसे हाँ हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी चलोगे आत्म लोगे रूठ के हमसे।

तू क्या समझ रहा है बे? मैं शराब पी है साले, धुआं खींच के अभी जा।

छुप के किसी को भी कुछ बताना चलेगा, ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। गोरी ओ गोरी, फिर न कहना आवाज दी प्रेम कर ले, ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। आ तेरे बालों में

तो है वो छुई मुई, अपने आंचल से खुद तप रही है, एक चंपा के मदहोश डाल।